सुप्रभात। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 16वीं तिथि तदनुसार आज 6 जून सन 2026 दिन शनिवार है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:55 हो रहे हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत सामान्य मार्ग से निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह के निवेश सीमाओं का पालन नहीं करना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2025 में अमेरिका से 3,567 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगिट बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगहारा में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था

0: सस्ता ही है। मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो। जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है। मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार, विज्ञापनों के माध्यम से
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: हमारे पास तन, धन, विद्या, बुद्धि, शक्ति, बल, पद, ऐश्वर्य आदि जो कुछ है सब भगवान का है। सब उन्हीं से मिला है और सब उन्हीं की सेवा के लिए है। उनकी सेवा में लगने पर ही सबकी सार्थकता है एवं हमारे जीवन का भी इसी में सफलता है।

ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रातः के अभिवादन के साथ आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। अब से कुछ ही पलों में।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus.
1: For details, log on to www.ddindia.com.
3: गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो, क्योंकि तुम्हारा वर्तमान चल रहा है।

रमणीय श्री वृंदावन धाम में कमल नयनन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण प्रेम मूर्ति गोपिकाओं को बांसुरी बजा बजा कर अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। गोप कन्याओं की आंखें उनकी सुंदर सांवरे मुख कमल पर लगी हैं और भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनका हृदय उत्सुक हो रहा है। उनके शरीर के आभूषण जगमगा रहे हैं। वे जब प्रेम गर्भित दृष्टि से मुस्कुराकर श्री कृष्ण की ओर देखती हैं, तो उनके लाल लाल अधरों पर दांतों की उज्जवल किरणें नाच रही हैं। भगवान श्री कृष्ण का मुख चंद्रमा के समान खिले हुए नील कमल के समान शोभायमान हो रहा है। सिर पर मुकुट में मयूर पिच्छ लगा हुआ है और वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह और कौस्तुभ मणि पहने हुए हैं। उनके सुंदर शरीर पर पीतांबर फहरा रहा है।

यदि शिव दिन रात भगवान विष्णु के नाम का जाप किया करते हैं तो भगवान विष्णु भी शिव की पूजा करते समय नियमित कमलों की संख्या पूर्ण ना होने पर अपने नेत्र तक चढ़ा देते हैं। एक होने पर भी भिन्न भिन्न साधकों की रुचि भगवान के भिन्न भिन्न रूपों की होती है।

भगवान विष्णु, राम और कृष्ण की ही भांति भगवान शिव के भी अनेकों मंत्र हैं। वास्तव में विष्णु और शिव में कोई भेद नहीं है। शिव के हृदय में विष्णु हैं और विष्णु के हृदय में शिव हैं।

0: भक्ति की शरण ही आत्मज्ञान की प्राप्ति है। ये थी हमारी आज की प्रातःकालीन वंदना। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन बिंदु।
1: आज समर्पण का स्वरूप क्या होना चाहिए, प्रायः हम इसे समझ नहीं पाते। और मुझे लगता है हनुमान जी की कथा, राम जी की कथाएं हम श्रवण करते रहते हैं, तो हनुमान जी के जीवन चरित्र में एक दर्शन मिलता है कि एक बार हनुमान जी महाराज अयोध्या में राघवेंद्र सरकार के सभा में विराजमान थे और राघवेंद्र सरकार हनुमान जी की तरफ देख रहे थे। और जब हनुमान जी राम जी की तरफ देखते तो हनुमान जी को देखता हुआ देख करके राम जी के नेत्र दूसरी तरफ मुड़ जाते। यह घटना कई दिनों से माता जानकी जी देख रही थीं। एक दिन अंतःपुर में उन्होंने पूछा प्रभु से कि क्या कारण है कि आप हनुमान जी को देखते हो और हनुमान जी जब आपकी तरफ देखते हैं तो आप अपनी नज़र क्यों फेर लेते हो। तो राघवेंद्र सरकार ने कहा उसका इतना ऋण है कि आज तक जीवन में उसने इतने बड़े बड़े काम

0: की और मेरे लिए किए, फिर भी उसने जीवन में कोई अपेक्षा नहीं रखी। तो मैं सोचता हूँ कि मैंने उसे कुछ नहीं दिया जिसने मेरे लिए सब कुछ किया। तो जानकी जी ने कहा, तो आप उनसे कहिए कि क्या चाहिए आपको। तो राघवेंद्र सरकार ने कहा, मैं कई बार पूछा और हनुमान ने कहा कि मेरे समर्पण को द्रव्य से तौलने की, चाहे पद से तौलने की आवश्यकता नहीं, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मुझे अंतर मन में यह भाव बार बार उदित होता है कि मुझे हनुमान को कुछ देना चाहिए। तो जानकी जी ने कहा, जब वह कुछ नहीं लेते, चाहे आप कुछ नहीं दे पा रहे हो, तो एक सरल सहज उपाय है कि एक पत्र में आप कह दो, लिख दो कि हनुमान मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। अगले दिन सभा लगी, फिर प्रभु आसन पर विराजमान हुए और एक पत्र जानकी जी का कहा मान करके, और एक पत्र में उन्होंने लिखा कि हनुमान तुम्हारे ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो सकता। हनुमान जी आए, हनुमान जी के हाथ में उन्होंने धीरे से वह पत्र दे दिया। हनुमान जी ने पढ़ा कि मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। तो हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए और हनुमान जी ने कहा, प्रभु देखिए, आपकी कृपा मेरे समर्पण के दिव्यता को और श्रेष्ठ कर देता है कि प्रभु आप कहते हो कि हनुमान तुम्हारे कारण ही सुग्रीव को किष्किंधा का साम्राज्य मिला और विभीषण को लंका का साम्राज्य मिला, और दूसरे की बात छोड़ दो, मुझे अयोध्या का राज्य भी तुम्हारे कारण मिला। लेकिन प्रभु अयोध्या का राज्य, किष्किंधा का राज्य, चाहे लंका का, एक एक राज्य, एक एक पद प्राप्त हुआ, लेकिन नाथ पूर्ण समर्पण का भाव और आपके प्रति समर्पण का भाव मेरा था कि आप मुझे प्राप्त हो गए। कहने का आशय इस हनुमत चरित्र का मात्र इतना है कि जब आपका समर्पण शुद्ध होगा, जीवन में किसी के प्रति, किसी कार्य के प्रति अगर समर्पित हैं आप, समर्पण है, तो निश्चित है उस समर्पण का फल आपको प्राप्त होगा। अगर समर्पण में अशुद्धि है, तो आप कोई कार्य कर रहे हो, पूर्ण समर्पित नहीं हो, तो आपको वह फल प्राप्त नहीं हो सकता जिस फल की आप कामना कर रहे हो। बिना मांगे हनुमान जी को जो प्राप्त हुआ, केवल एक समर्पित भक्त के कारण हनुमान जी महाराज चतुर्दिक पूज्य हुए, और मुझे लगता है कि संपूर्ण विश्व में हनुमान जी महाराज की पूजा इसलिए होती है कि जिन्होंने केवल रामानास्ति परायणम परतरम रामस्य दासोस्मि हम रामे चित्तलदम सदा बहुत मे भो राम मामुद्र, जिन्होंने राम के अलावा कुछ समझा ही नहीं, इतना समर्पण, इतना अद्भुत समर्पण, अगर ऐसा ही हमारे जीवन में भी समर्पण का भाव बने, तो मुझे लगता है कि हमारा भी जीवन, उस जीवन में वो प्राप्त हो सकता है कि जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। तो सबसे पहले हम विचार करें कि जिस कार्य के प्रति, चाहे जिस संबंधों के प्रति, जिससे हम कुछ अपेक्षा रखे हुए हैं, क्या हमारा समर्पण दिव्य है, क्या हम पूर्ण रूप से समर्पित हैं कि नहीं है। आज पूर्ण समर्पण का ही देन है कि राघवेंद्र सरकार हनुमान जी महाराज से पूछते हैं कि तुम्हें बताओ क्या चाहिए। यह समर्पण का स्वरूप अद्भुत हनुमान जी के चरित्र से आपको प्राप्त होता है। तो जीवन में समर्पण का स्वरूप दिव्य रखिए, निश्चित है जो आप चाहते हैं आपको प्राप्त होगा।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन बिंदु। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं आज प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। कार्यक्रम विवरण।

संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम श्रोताओं आज आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे। युवा भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुन सकेंगे रात्रि 8:15 पर। हिंदी कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:00। आज वार्ता होगी गोरखनाथ मंदिर का पौराणिक महत्व। फिल्म संगीत का कार्यक्रम 7:31 पर। आज कलाकार होंगे जतिन ललित। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रादेशिक संगीत में आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत 7:10 पर। कार्यक्रम देश हमार शाम 7:00।

युवा अपना कार्यक्रम युवा वाणी सुन सकेंगे 5:25 पर। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ 5:10 पर और 5:05 पर युवा वाणी का कार्यक्रम।

किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती किसानी आप सुनेंगे 1:50 पर, तथा महिलाएं अपना कार्यक्रम सुन सकेंगी 2:15 पर। कार्यक्रम नारी जगत।

दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 साल पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने। संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन सकेंगे सुबह 11:30 पर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस से आज का संगीतमय प्रसंग।

पिता के वचन की मर्यादा का पालन करने के लिए श्री राम को वन गमन करना था, किंतु सीता को वन जीवन के कष्ट भोगने देना राजा दशरथ को स्वीकार्य न था। अतः उन्होंने मंत्री सुमंत्र से ये कहा था, यदि दो चार दिनों में वन में घूम फिरकर राम वापस लौटने को तैयार न भी हों तो वो सीता को अवश्य लौटा लाएं। श्री राम ने कई प्रकार से सीता को अयोध्या वापस लौट जाने की सीख दी, किंतु सीता का एक ही उत्तर था, हे करुणामय और परम ज्ञानी, आप विचार कर देखें, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे हो सकती है। मंत्री सुमंत्र से उन्होंने कहा, आप पिता और ससुर के समान मेरे हितैषी हैं, आपकी बात का खंडन करना मुझे शोभा नहीं देता, किंतु अत्यंत आर्त होकर मैं आपके सम्मुख आई हूँ। पति के चरण कमलों के अभाव में जगत के सभी नाते रिश्ते मेरे लिए व्यर्थ हैं।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज का संगीतमय प्रसंग। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
1: संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details, log on to www.ddindia.com।
6: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
7: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
6: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
7: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
8: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब
3: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं संस्कृत में समाचार तथा हिंदी में समाचार तथा इंग्लिश न्यूज हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
4: वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की दर से बढ़ी है। दमण में कल 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न

0: विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर आगे बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी, सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 50 गीगावाट अकेले गुजरात की है। वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमरीका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना का कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया की विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 942,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगाहारा में कल सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत की अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं मिलीजुली आवाजों में देश कान।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मिली जुली आवाज़ों में देश कान। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से।
1: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन

0: अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम महाअभियान का किया शुभारंभ। प्रदेश में 2741 करोड़ रुपए की स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना भी हुई शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में वायुयुग ग्रीन कमांड 2026 का किया शुभारंभ। कहा, गन्ना आधारित बायोप्लास्टिक का इस्तेमाल।

0: आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। बलिया का सुरहाताल प्रदेश का 13वां रामसर साइट घोषित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्धि पर जताई खुशी और वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक समाप्त। अंतिम दिन ब्रिक्स सदस्य देशों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को मजबूत बनाने पर दिया जोर। अब समाचार विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत कल बड़ी संख्या में पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व बैंक के सहयोग से 2,741 करोड़ रुपए की लागत वाली देश की पहली एयर शेड आधारित उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना यूपी कैंप का शुभारम्भ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री की मौजूदगी में विश्व बैंक और प्रदेश सरकार के बीच MOU का हस्तांतरण हुआ। इससे पहले मुख्यमंत्री ने लखनऊ की कुकरेल रेंज में पौधरोपण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महर्षि चरक औषधि वन की भी स्थापना की। यहां उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 35 करोड़ पौधरोपण वृक्ष के अंतर्गत एक पेड़ माँ के नाम पौधरोपण महाभियान 2026 की शुरुआत करते हुए इसके लोगों का भी अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक अभियान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें और पेड़ लगाकर प्रकृति का संरक्षण करने का संकल्प लें।
1: 5 संकल्प हम सबको इस अवसर पर लेने होंगे। 1, हर नागरिक एक पेड़ माँ के नाम पर अवश्य लगाएगा, कम से कम 1 पेड़, यह हर नागरिक का दायित्व है। 2, पेड़ लगाना ही नहीं, उसकी सुरक्षा का दायित्व भी लेना है, हर एक ओर से उसे बचाना है। 3, जल संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। 4 संकल्प होना चाहिए, सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह रोके, उससे भी हमें पर्यावरण को होने वाले नुकसान के साथ हमें वो करना पड़ेगा। और अंतिम जो संकल्प है वह प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली को अपनाना।
0: इस अवसर पर श्रावस्ती स्थित गुलरा केन नाला को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में विकसित किए जाने की भी घोषणा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ के अपने 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का शुभारंभ किया। यह पहल पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायोप्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए की गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में गन्ने के मूल्य में अच्छी बढ़ोतरी की गई है और बायो इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गन्ना आधारित बायोप्लास्टिक के इस्तेमाल से न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण होगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम होगा।
1: यूपी में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना थके डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रही है। अन्नदाता किसानों के चेहरे पे खुशहाली ला रही है। बहन और बेटियों के स्वावलंबन के लिए कार्य कर रही है। व्यापारी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। बेहतरीन कनेक्टिविटी के माध्यम से आज हर जनपद विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बलरामपुर में 294 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश की पहचान निवेश और सुरक्षा के माहौल के लिए हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार हर जनपद के समग्र विकास के लिए काम कर रही है।
1: यूपी में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना थके डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रही है। अन्नदाता किसानों के चेहरे पे खुशहाली ला रही है। बहन और बेटियों के स्वावलंबन के लिए कार्य कर रही है। व्यापारी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। बेहतरीन कनेक्टिविटी के माध्यम से आज हर जनपद विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहाताल को देश का 100वां रामसर साइट घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी ने प्रदेश की इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्रभूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि भारत ने पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और आर्द्रभूमि सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। श्री योगी ने कहा कि यह उपलब्धि विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुरहताल प्रदेश का 13वां रामसर साइट है। लखनऊ में विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में वन राज्य मंत्री डॉ अरुण कुमार सक्सेना ने सुरहताल के रामसर साइट बनने का प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा। वाराणसी में आयोजित ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का कल समापन हो गया। आखिरी दिन ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को और मजबूत बनाने पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब समेत 11 देशों ने भाग लिया। संस्कृति मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव अमिता प्रसाद सरभाई ने बताया कि बैठक में भारत की मूल्यवान धरोहरों को वापस लाने पर चर्चा हुई। इस दौरान विकास और संस्कृति के समन्वय के साथ आगे बढ़ने को लेकर भी मंथन हुआ।
1: हमेशा यही कोशिश रही है सरकार की और स्पेशली संस्कृति मंत्रालय की कि तो हमारे जो भी स्टोलन आर्टिफैक्ट्स हैं या जो स्मगल करके ले गए जाए गए या उसके पहले कॉलोनियल टाइम्स में ले जाए गए उनको कैसे वापस लाया जाए क्योंकि वो हमारी धरोहर, तो उसी के ऊपर चर्चा हुई है और कैसे डेवलपमेंट और कल्चर साथ साथ हो, विरोधाभास ना हो उसमें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र ने एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर कल से विशेष अभियान की शुरुआत हो गई है। अभियान के तहत प्रदेश में भी 21 जून तक सभी जनपदों के प्रभारी मंत्री और जनप्रतिनिधि समाज के प्रबुद्ध वर्ग के साथ संवाद स्थापित करेंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि चौपालों का आयोजन कर जन समस्याओं का निस्तारण करेंगे। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में वृक्षारोपण कर समेकित जन कल्याण और जन जागरूकता अभियान का शुभारम्भ किया। अभियान के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है।
2: भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने 5 जून से 21 जून के बीच में कार्यक्रम निर्धारित किया है। एक पेड़ माँ के नाम, यही कहूंगा 12 वर्ष नहीं, इसी तरह 2047 जो उनका सपना है कि 2047 में हमारा विश्व में देश हमारा बहुत आगे रहे, पूरी दुनिया को दिशा दे और आगे बढ़े और गरीबों की सेवा करते रहे।
0: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ में अकादमी सम्मान समारोह में वर्ष 2021 से 2024 तक के लिए चयनित कलाकारों को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित इस समारोह में 51 विशिष्ट कलाकारों को संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कलाओं के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए यह सम्मान प्रदान किए गए। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आंधी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज भी पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कुछ जनपदों में तेज हवा और बारिश का अनुमान जताया है। पूर्वी जनपदों में बिजली गिरने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम महाभियान का किया शुभारंभ। प्रदेश में 2741 करोड़ रुपए की स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना भी हुई शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में वायुयुद्ध ग्रीन कमांड 2026 का किया शुभारंभ। कहा, गन्ना आधारित बायोप्लास्टिक का इस्तेमाल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। बलिया का सुरहाताल प्रदेश का 13वां रामसर साइट घोषित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्धि पर जताई खुशी। और वाराणसी में ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक समाप्त। अंतिम दिन ब्रिक्स सदस्य देशों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को मजबूत बनाने पर दिया जोर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को

0: समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।

0: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब चलते हैं गीत और संगीत के कार्यक्रम के सफर पर और सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पूर्वा सुहानी अब से कुछ ही पलों में।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
2: So easy.
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं फिल्म कुछ ना कहो से ये गीत। आवाज दी है उदित नारायण ने और कविता कृष्णमूर्ति ने।

0: احساس.
1: श्रोताओं आइए अब सुनते हैं बॉडीगार्ड फिल्म से ये गीत। आवाजें दी हैं एश किंग और क्लिंटन सेरेजो ने। गीतकार हैं नीलेश मिश्रा और संगीतकार हैं प्रीतम।

आइए सुनते हैं काइट फिल्म से ये गीत, आवाज दी है केके ने, संगीतकार है राजेश रोशन और गीतकार नसीम फराज़।

सुनते हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से ये गीत। आवाजें दी हैं कुमार शानू और लता मंगेशकर ने, संगीतकार हैं जतिन ललित और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

अब सुनिए राजनीति फिल्म से ये गीत, आवाज दी है अंतरा मित्रा, प्रीतम चक्रवर्ती, मोहित चौहान ने। गीतकार हैं प्रीतम,

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरवा सुहानी अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार प्रभात का आज का अंक तथा अंग्रेजी में मॉर्निंग न्यूज और उर्दू में खबरनामा हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
2: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7,00,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1,50,000 से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की।

0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
1: With Nepal, we have an expansive agenda.
2: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपने इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: Partnership that we have with Nepal.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
4: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
3: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
5: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
6: Claims by Pakistan would not change this fundamental reality.
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
7: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इजराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इजराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
0: केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोईकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोईकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने

0: ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञान आनंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञान आनंद ने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देशबंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3,00,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमेरिका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान। इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संग SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञान आनंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi asserts Indian economy remains exceptionally strong despite global economic crisis. Reserve Bank of India eases regulatory norms for foreign portfolio investors in government securities to attract investment. More than 9.42 lakh farmers to join Khet Bachao Abhiyan for balanced fertilizer use and sustainable farming. India slams Pakistan for abusing its temporary membership of UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir. IMD forecasts extremely heavy rainfall in northern districts of Keralam until June 9th. And Indian Grandmaster R. Pragyanan's Scripps history becomes first Indian to win Norway chess title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a robust 7.7% growth in the fiscal year 2025-26, despite a global economic crisis. Addressing a large gathering after launching a series of

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारतीय महीशत आलमी इक्तसादी बुहरान के बावजूद गैर मामूली तौर पर मजबूत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरमाए को रागिब करने के लिए सरकारी तमस्सुकात में गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों के लिए जाब्तों में नरमी की है।

0: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के 90 साल पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम हिट्स सुपर हिट्स अब से कुछ ही पलों में।
1: नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

हिट्स सुपर हिट्स कार्यक्रम में श्रोताओं आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी प्यारी होस्ट अमृता। सुरों की इस दुनिया में आपका स्वागत है जिसने पीढ़ियों को जोड़ा, भावनाओं को आवाज़ दी और हर दिल में संगीत की लौ जलाए रखी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आकाशवाणी के 90 वर्षों का वो गौरवशाली सफ़र जहां रेडियो सिर्फ एक माध्यम ना बनकर हर घर का सदस्य बन गया है। कभी खेतों में काम करते किसानों के साथ, तो कभी जवानों के हौसलों के साथ, तो कभी माँ की लोरी में, तो कभी प्रेम के मधुर गीतों में। आकाशवाणी ने फिल्म संगीत को सुनाया ही नहीं बल्कि उसे जन जन तक पहुंचाकर भारतीय संस्कृति की धड़कन बना दिया है। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। फिल्म है जो जीता वही सिकंदर, सुर दिया है उदित नारायण और साधना सरगम ने।

जनसंचार के एक सशक्त माध्यम के रूप में रेडियो का महत्व सर्वविदित है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी रेडियो को एक शक्तिशाली जन माध्यम मानते थे। रेडियो स्टेशन में जब गांधी जी सन 1947 में पहली बार गए थे तो उन्होंने अनायास ही कह दिया था कि मैं रेडियो में शक्ति देखता हूँ। देश की लगभग 90% से भी अधिक जनसंख्या आज रेडियो के प्रसारणों में रुचि लेती है। रेडियो हमारा एक पुराना मित्र है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में विकास की दृष्टि से रेडियो को की काफ़ी अलग महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के अपने ध्येय के साथ रेडियो का विस्तार हुआ है। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। फिल्म है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मखमली आवाज़ दी है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने।

रेडियो की आवाज़ में एक अपनापन होता है जो सीधे दिल तक पहुंचता है। शायद यही वजह है कि आज भी रेडियो सुनना एक भावनात्मक अनुभव लगता है। समय बदल गया है, लेकिन संगीत का उत्साह कभी कम नहीं हुआ। नई पीढ़ी आई, नए गीत आए, और आकाशवाणी हर दौर में कदम से कदम मिलाता हुआ चलता रहा। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। फिल्म है मोहब्बतें, आवाज़ दी है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने।

एक दौर था जब लोग ट्रांजिस्टर लेकर छतों पर बैठ जाया करते थे और उन्हें इंतज़ार होता था अपनी पसंद के गीत का, और जैसे ही पसंदीदा गीत बजता चेहरे खिल उठते। आकाशवाणी ने संगीत को इंतज़ार का मिठास दी है। मौसम बदलते रहे, वक्त बदलता रहा, लेकिन कुछ हमेशा दिल के करीब रहा, तो वो है रेडियो की आवाज़, जो कभी सुबह की चाय बनी तो कभी रातों की तन्हाई। फिल्म संगीत को घर घर पहुंचाने में आकाशवाणी का योगदान किसी इबादत से कम नहीं, क्योंकि कई बार लोगों ने फिल्मों से पहले गीतों से प्यार किया और वो गीत रेडियो की बदौलत दिलों तक पहुंच गई। आइए सुनते हैं ऐसे ही प्यारा सा गीत। फिल्म है कुछ कुछ होता है, आवाज़ दी है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

90 वर्षों के इस खूबसूरत से सफर में आकाशवाणी ने हर पीढ़ी की भावनाओं को आवाज दी है। 90 वर्षों से यह रिश्ता यूं ही दिलों में गूंज रहा है और आने वाले वर्षों में भी यूं ही गुनगुनाता रहेगा, मीठी धुन और खूबसूरत यादों के साथ। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम हिट्स सुपर हिट्स अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की हलचल हमारे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

आवाज में जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर बब्बू सारंग के मार्गदर्शन में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में चिकित्सकों ने तंबाकू के सेवन से होने वाली गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, हृदय रोग और फेफड़ों की समस्याओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी और लोगों को इससे दूर रहने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर प्राधिकरण की सचिव सुश्री योगेश शिवा ने जोर देकर कहा है कि नशे की लत न केवल इंसान के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है बल्कि उसके परिवार, आर्थिक स्थिति और सामाजिक जीवन को भी बुरी तरह से प्रभावित करती है। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। फिरोजाबाद के विकास भवन सभागार में माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के जनपद स्तरीय मेधावी छात्र छात्राओं के लिए एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस गौरवमयी कार्यक्रम का मुख्य अतिथि सदर विधायक मनीष ससीजा, मेयर कामनी राठौर और ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर लक्ष्मी नारायण यादव के साथ प्रशासनिक स्तर पर जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी शत्रुघ्न वैश एवं अपर जिलाधिकारी मोहन लाल गुप्ता ने मेधावियों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। समारोह में जिले के टॉप 10 में स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को 21,000 रुपए का चेक, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किया गया। फिरोजाबाद में शासन के निर्देशों पर 1 जून से 30 जून 2026 तक भूमि विवादों के पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान के लिए

0: एक विभिन्न का अभियान शुरू किया गया है। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार पिछले एक वर्ष में आए एक भूमि विवाद को दोबारा खोला गया, जिसके निस्तारण से शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं थे। इनमें जसराना, फिरोजाबाद, शुकावास, सिरसागंज और टूंडला के मामले शामिल हैं, जिन्हें पुनः स्थलीय सत्यापन के लिए उप जिलाधिकारियों को पोर्टल पर भेज दिया गया है। अभियान के तहत केवल कागजी कार्रवाई न करके राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीमें मौके पर जाकर साक्ष्यों के आधार पर अवैध कब्जे हटाने, पट्टे राजस्व अभिलेखों में सुधार, रास्ता, पैमाइश व वरासत से जुड़े विवादों का स्थायी समाधान करेंगी। साथ ही प्रत्येक सप्ताह विकास खंड स्तर पर न्याय पंचायत वार ग्राम चौपालों में भी आयोजित की जाएंगी। फिरोजाबाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें जिले के स्वास्थ्य योजनाओं और चिकित्सा सुविधाओं की व्यापक समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने खराब प्रदर्शन करने वाले प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों की जवाबदेही तय करने, स्वास्थ्य केंद्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और बेहतर काम करने वाले कर्मियों को सम्मानित करने की बात कही। मौसम विभाग की हीट वेव अलर्ट को देखते हुए उन्होंने सभी सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कूलर, ORS, घोल और ठंडे पानी से युक्त कूलिंग सेंटर सक्रिय करने तथा सरकारी डॉक्टर द्वारा बाहर की दवाएं लिखने पर पूरी तरह से रोक लगाकर फार्मिस्ट काउंटर पर दवाओं की सूची प्रदर्शित करने के कलेक्टर निर्देश दिए हैं। फिरोजाबाद में पर्यटन विकास को गति देने के उद्देश्य जिलाधिकारी ने दो महत्वपूर्ण पर्यटक गए स्थलों का निरीक्षण कर विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। जिलाधिकारी सबसे पहले सिरसागंज में 24.24 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन आर संस्कृत संकुल पहुंचे, जहां उन्होंने मल्टीपर्पज हॉल में सुव्यवस्थित स्टेज बनाने और भवन की मजबूती व तकनीकी सटीकता सुनिश्चित करने के लिए किसी प्रतिष्ठित संस्था के इसका स्ट्रक्चर ऑडिट कराने के निर्देश दिए।
1: फिरोजाबाद जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं जौनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राहुल यादव का।
2: जौनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम जौनपुर में सामूहिक आयोजन कर सुना गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक ने कहा कि जनपद के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक व अस्मरणीय क्षण बन गया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात से सीधे जौनपुर से लाइव जुड़े। राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ सीधे जुड़ने और जौनपुर का मान बढ़ाने के लिए वह उनका धन्यवाद करते हैं। जनपद के प्रत्येक नागरिक के लिए अत्यंत प्रेरणादायक व गौरवपूर्ण है। इससे स्थानीय स्तर पर विकास, सांस्कृतिक और जन भागीदारी की एक नई ऊर्जा मिलेगी। जौनपुर के जिलाधिकारी सैमुअल पाल के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में जन समस्याओं को त्वरित व प्रभावी निस्तारण तथा जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित गांव की समस्या गांव में समाधान कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड महाराजगंज के ग्राम पंचायत बिरवा में मुख्य विकास अधिकारी धू खड़िया की अध्यक्षता में जन चौपाल का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि जन चौपाल में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में ग्रामीणों की समस्याओं और शिकायतों का गंभीरता सुना गया तथा उनके गुणवत्तापूर्ण और संबंधपूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा का अनुरूप प्रत्येक पात्र व्यक्ति तथा योजनाओं को लाभ पहुंचाना तथा ग्रामीणों की समस्या को स्थानीय स्तर पर प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाए। शासन स्तर पर विभिन्न कोर्ट से लंबित वादों के लिए निस्तारण के आधार पर मई की रैंकिंग जारी की गई। मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अवस्थ ने कहा कि शासन स्तर कर जारी रैंकिंग में जनपद को प्रदेश में पहला स्थान मिला। यहाँ 5 कोर्ट मिलकर कुल 250 वादों को कम से कम निस्तारण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष सभी 5 कोर्ट से कुल 466 वादों का निस्तारण किया गया, जबकि मैनपुरी में 407 वाद हल किए गए, जबकि तीसरे स्थान पर आजमगढ़ जनपद रहा जहाँ 418, बलिया में 147, गाजीपुर में 160, मऊ जनपद को अलग अलग कोर्ट में कुल 187 वाद निस्तारित किए गए। जौनपुर जिले के रामपुर क्षेत्र के सदिरंगन गांव में 33/11 केवीए क्षमता के विद्युत उपकरण का निर्माण कराया जाएगा। इससे 7.92 करोड़ खर्च किया जाएगा, जिसकी स्वीकृति शासन की ओर से मिल गई। नए उपकरण बनने से 50 गांव और 21,000 से अधिक उपभोक्ताओं को निर्विरोध निर्बाध बिजली की मिलेगी। वर्तमान में सदिरंगन के आसपास के क्षेत्रों के रामपुर पावर हाउस से बिजली आपूर्ति की जाती है। इससे उपकरण पर लोड लीक होने से बिजली टिपिंग फॉल्ट और लो वोल्टेज की समस्या से उपभोक्ता परेशान थे। इसके मद्देनजर अपना दल एस के विधायक मड़ियाओं के विधायक डॉक्टर आर के पटेल ने नए उपकेंद्र के निर्माण के लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव भेजा था, जिसकी स्वीकृति मिल गई है। रामपुर के सदरनगंज में 33/11 केवी का उपकेंद्र बनने के लिए जगह चिन्हित कर लिया गया। इसके निर्माण में 7,92,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। ग्रामीणों का कहना कि इसके बिजली आपूर्ति स्थिरता आएगी और क्षेत्रीय विकास में गति मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब सभी लाभार्थी किसानों के लिए वर्ष में एक बार ई केवाईसी करना अनिवार्य कर दिया गया। कोई भी किसान निर्धारित अवधि में ई केवाईसी नहीं करता तो किस्त अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। ऐसे किसान जिन्होंने 2000

0: 25 से मार्च 2026 के बीच पीएम किसान योजना में ई केवाईसी नहीं कराई है वह 30 जून के पूर्व अपनी ई केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें, जिससे योजना को आगामी किस्त प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। जानकारी देते हुए उप परियोजना निदेशक आत्मा कृषि प्रसार डॉक्टर रमेश यादव ने बताया कि ई केवाईसी पूरे होने के बाद ही किस्त जारी की जाएगी। किसान घर बैठे स्वयं फैक्सियल ई केवाईसी कर सकते हैं। उप परियोजना निदेशक आत्मा कृषि प्रभार ने बताया कि योजना का अधिक पारदर्शी, प्रभावी, वास्तविक पात्र किसानों को सीमित रखने के उद्देश्य वार्षिक ई केवाईसी अनिवार्य कर दी गई। पीएम किसान मोबाइल ऐप से किसान घर बैठे अपने स्वयं फैक्सियल ई केवाईसी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसान निकटतम जनसेवा केंद्र पर जाकर अपना बायोमेट्रिक ई केवाईसी भी कर सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड व आधार से लिंक मोबाइल नंबर आवश्यकता होगी। जौनपुर के निगोह से जरौना तक जाने वाली 7.5 किलोमीटर लंबी सड़क चौड़ीकरण के लिए मछलीसर से सभा विधायक रागनी सोनकर ने भूमि पूजन किया। विधायक ने कहा कि लंबे समय से इस मार्ग के चौड़ीकरण की मांग की जा रही थी। सड़क सक्रिय और जर्जर होने के कारण राहगीरों को आवागमन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। 11 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाली यह सड़क 5.5 किलोमीटर चौड़ी होगी। सड़क किनारे पूर्ण होने के बाद निगोह, जरौना सहित आस पास के कई गाँव के लोगों को आगमन में काफी सुविधा मिलेगी, साथ ही साथ क्षेत्र के व्यापार और विकास में गति मिलने की उम्मीद है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल कार्यक्रम समाप्त हुआ।
3: अब वक्त है उड़ान का, अब वक्त है पहचान का, अब वक्त है अपने हुनर को आवाज देने का। जुड़िए नई उड़ान से, जहां सपनों को मिलता है आगाज और मेहनत को मिलती है आवाज।
4: तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया।
3: हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर। नई उड़ान, आगाज हर हुनर का, आवाज हर मेहनत की।
5: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तरपत्रोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTUUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें, वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं देशगान।

मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं मिलीजुली आवाजों में देश का।

0: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब पेश एक खिदमत है उर्दू कार्यक्रम हमारे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
1: आपका दोस्त आसिफ इकबाल और मेरे साथ हैं शमसुल आरिफीन।
2: आदाब दोस्तों। जब भी उर्दू शायरी में बेहद आसान अल्फाज में दिल को छू लेने वाली बात करने का जिक्र आएगा, एक नाम सबसे पहले जहन में उभरेगा, डॉक्टर बशीर बद्र। वो शायर जिसने गजल को महलों और दरबारों से निकालकर आम इंसान के घर की दहलीज पर ला खड़ा किया।
1: आज की इस महफिल में हम गुफ्तगू करेंगे पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद्र साहब की जिंदगी और उनकी शायरी के बारे में। बशीर साहब का ही एक बेहद मशहूर शेर है, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आइए आज के इस प्रोग्राम को बशीर साहब की यादों के नाम करते हैं, सुनते हैं उनका एक बेहद खूबसूरत कल।

0: 15 फरवरी 1925 को जन्मे बशीर बद्र साहब का असली नाम सैयद मोहम्मद बशीर था। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी की और सालों तक कॉलेज में पढ़ाया, लेकिन उनकी असली पहचान बनी उनकी शायरी।
1: एक दौर था जब गजल में बहुत भारी भरकम अरबी फारसी के लफ्ज इस्तेमाल होते थे। आम इंसान को उसे समझने के लिए डिक्शनरी खोलनी पड़ती थी। ऐसे दौर में बशीर बद्र साहब ने आम फहम यानी वो जुबान चुनी जो हम और आप रोज बोलते हैं।

दोस्तों, शायर के दिल में जो दर्द होता है अक्सर वो ज़माने के दिए जख्मों से ही निकलता है। बशीर बद्र साहब मेरठ में यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और वहीं उनका अपना एक खूबसूरत आशियाना था, लेकिन साल 1987 के मेरठ दंगों ने उनकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया।

जी और उनका घर उनकी सालों की मेहनत से जमा की गई किताबें, उनकी अनमोल लिखी हुई गजलें, सब कुछ उस आग में जलकर राख हो गई। इस हादसे ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। वो मेरठ छोड़कर भोपाल आ गए, लेकिन उस आग की तपिश उनके अशार में हमेशा के लिए दर्ज हो गई।

0: लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में।
1: एक और गजल में उन्होंने कुछ यूं इरशाद किया, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा, हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा।
0: कितनी सच्चाई से मुझसे जिंदगी ने कह दिया, तू नहीं मेरा तो कोई दूसरा हो जाएगा, और मैं खुदा का नाम लेकर पी रहा हूँ दोस्तों, जहर भी इसमें अगर होगा दवा हो जाएगा।
1: सब उसी के हैं हवा खुशबू जमीनों आसमां, मैं जहां भी जाऊंगा उसको पता हो जाएगा।
2: मेरी जिंदगी भी मेरी नहीं, ये हजार खानों में बट गई।

0: मुझे एक मुट्ठी जमीन दे, ये जमीन कितनी सिमट गई।
1: मुरादा फरमाइए शेर।

जहां मेरा नाम लिखा गया वहीं रोशनाई उलट गई। तेरी याद आए तो चुप रहूं, जो मैं चुप रहूं तो गजल कहूं।

मुझे सिसकियों ने जगा दिया, मेरी कच्ची नींद उछट गई। चंशेर और दूसरी गजल के जैसे मैंने अर्ज किया था, अल्लाह फरमाई। कहीं चांद राहों में खो गया,

0: रात कैसे चमक गई।
1: बशीर बद्र सिर्फ दर्द के ही नहीं बल्कि मोहब्बत और रोमानियत के भी बेताज बादशाह हैं। उनके रोमांटिक शेर आज भी नौजवानों की डायरियों और सोशल मीडिया के स्टेटस की जान हैं। जब वो मोहब्बत की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई रेशम जैसी छुअन हो।
2: सुनिए उनका ये सदाबहार शेर।
3: अजीब शख्स है, नाराज होके हंसता है, मैं चाहता हूँ खफा हो तो वो खफा ही लगे। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पर बैठे हो वो टूट भी सकती है। मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी ना मिला।
1: और ये शेर तो आपने यकीनन सुना होगा, हर उस इंसान की दास्तान है जो किसी की आंखों में खो जाता है। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ, उसने मुझे छूकर नहीं देखा।
2: आइए सुनते हैं बशीर साहब का ये रुमानी अंदाज।

वक्त का पहिया घूमता रहा और ढलती उम्र के साथ साथ बशीर साहब को अल्जाइमर बीमारी ने घेर लिया। जिस शायर के अशार को पूरी दुनिया याद रखती है, वो शायर धीरे धीरे अपने ही शेर भूलने लगा।

0: और 28 मई 2026 को ईद उल अजहा के दिन आप इस दुनियाए फानी को छोड़कर अपने रब से जा मिले। उर्दू अदब से बद्र का मंजर चला गया, अल्फाजो मोहब्बत का कलंदर चला गया, अशार जिसके आज भी जिंदा है दोस्तों, दुनिया को छोड़कर वो सुखनवर चला गया।
1: तो दोस्तों, आकाशवाणी लखनऊ इस बुलंद शायर को खिराज अकीदत पेश करता है। हम फिर अगले प्रोग्राम में आपके साथ होंगे। आसिफ इकबाल और शम्सुल आरफिन को दें इजाजत।
2: आदाब। आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से उर्दू प्रोग्राम नशर किया जा रहा था।
3: जोश को मिले दिशा, मेहनत को मिले मान, कला को विस्तार मिले, परंपरा को मिले नई उड़ान।
4: कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए।
3: सुनिए नई उड़ान, जहां गाने हो, बातें हो, योजनाएं हो और हर खबर लाए विकास और अवसर की जानकारी। श्रोताओं के दिल कहें, नई उड़ान निभाएगा असली यारी। हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर गूंजे सफलताओं की आवाज।
5: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और
2: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज तथा FM 100.1 MHz पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत अब से कुछ ही पलों में।
6: संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
7: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
8: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
7: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
8: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
7: डायल कीजिए 8700014242।
8: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
9: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
10: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना। नींव से लेकर

0: लीटर 76। भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के कलाकार थे मेहंदी हसन। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी नागरिकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यह यात्रा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने

0: में सहायक होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बिम्स्टेक दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने कहा कि बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में साझा समृद्धि, संपर्क और सुगमता को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत एकजुटता और आपसी सहयोग की भावना के साथ बिम्स्टेक सदस्य देशों के साथ सहयोग को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
1: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कई दशकों बाद दुर्लभ जंगली बिल्ली कैराकल दिखाई दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे वन्यजीव संरक्षण की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत कूनो राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव संरक्षण का एक सफल मॉडल बनकर उभरा है और कैराकल की वापसी इसी का प्रमाण है। खेलों में भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेज होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.1 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाते गुनगुनाते, अब से कुछ ही पलों में।
3: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
4: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
3: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
4: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
3: हमारा फोन नंबर है 2202-4075 या 2288-6016 और STD कोड 022।
4: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
5: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
6: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
7: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
6: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
7: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
6: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
7: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
6: For details, log on to www.ddindia.com।
8: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। नौ दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
9: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
8: आकाशवाणी

सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कयामत से कयामत तक फिल्म से ये गीत। आवाज़ दी थी अलका याग्निक और उदित नारायण ने। आइए अब सुनते हैं सुल्तान फिल्म से ये गीत। आवाज़ दी है राहत फतेह अली खान ने, संगीत दिया है विशाल शेखर ने और गीतकार हैं इरशाद कामिल।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं मर्डर टू से ये गीत। गीतकार हैं सैयद कादरी, संगीतकार हैं हर्षित सक्सेना।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे हर्षित सक्सेना की आवाज में ये गीत, फिल्म है मर्डर 2। आइए अब सुनते हैं किस्मत कनेक्शन फिल्म से ये गीत। आवाज दी है मोहित चौहान और श्रेया घोंसाल ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ओम शांति ओम फिल्म से ये गीत, शुरू से सजाया था केके ने। गीतकार थे विशाल और संगीतकार विशाल शेखर। आइए अब सुनते हैं सलाम इश्क फिल्म से ये गीत, आवाज दी है सोनू निगम ने।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं आई हेट लव स्टोरी फिल्म से ये गीत। आवाज़ दी है विशाल शेखर और श्रेया घोषाल ने, सोना महापात्रा ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन का हिस्सा होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोलना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए सत्र आयोजित होंगे। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
3: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बता।

0: Biggie.
1: Claims by Pakistan would not change this fundamental reality.
2: आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए लिंगमनेनी रमेश को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में ये घोषणा की गई। लिंगमनेनी रमेश आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कई दशकों बाद दुर्लभ जंगली बिल्ली कैराकल दिखाई रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे वन्यजीव संरक्षण की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत कूनो राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव संरक्षण का एक सफल मॉडल बनकर उभरा है और कैराकल की वापसी इसी का प्रमाण है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान के साथ खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तर पूर्वी भारत कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग।

लोक रंग में आज की कलाकार हैं नूरजहां बेगम।

0: लोक रंग कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं नूरजहां बेगम को, और अब वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल। कल भी।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक,
4: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
3: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
4: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
3: हमारा फोन नंबर है 220-24075 या 228-6016 और STD कोड 022।
4: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
5: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
6: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
7: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
6: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
7: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
6: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
7: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
6: For details log on to www.ddindia.com।

नूरजहां बेगम के स्वर में आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि, बस कुछ ही क्षणों में।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: जन कल्याण जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

श्रोताओं, गीतांजलि कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फिल्म संगीत की इस मधुर दुनिया में हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म रोग से ये गीत, जिसे गाया है केके ने।

केके की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत। म्यूजिक था MM किरावनी का, बोल नीलेश मिश्रा के। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गीतांजलि। संगीत हमारे जीवन की भावनाओं को स्वर देता है और फिल्मी गीत उन भावनाओं को और भी रंगीन बना देते हैं। इसी क्रम में प्रस्तुत है फिल्म तुमसा नहीं देखा से ये गीत, जिसे गाया है उदित नारायण और श्रेया घोषाल ने। संगीत है नदीम श्रवण का और बोल समीर के।

मर्डर फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में, संगीत अनु मलिक का और बोल साईद कादरी के। श्रोताओं, संगीत के इस सुरीले सफ़र में अब हम बढ़ रहे हैं अगले पड़ाव की ओर। हर गीत अपने साथ कुछ यादें, कुछ भावनाएं और कुछ अनमोल एहसास लेकर आता है। आइए सुनते हैं एक और शानदार फिल्मी गीत और आनंद लेते हैं उसकी मधुर प्रस्तुति का।

0: नमस्कार, ये आकाश।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202-4075 या 2288-6016 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH service DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV channels और radio channels, cable की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात direct to home की और direct to heart?
5: ये सारे channels होंगे free to air, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात direct to heart की।
5: दूरदर्शन DTH service DD Direct Plus.
4: For details, log on to www.ddindia.com.
2: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है नाटक जिसका नाम है आरंभ।

आज मैं 25 वर्ष की हो गई। लगता ही नहीं कि बीच से कुछ गुजर गया, कि उम्र के इतने वर्षों में कुछ नया झोंका आ गया, या कुछ याद रह जाने वाले क्षण बीत गए। कभी कभी मिलने वाला एकांत अच्छा लगता है, लेकिन जब वही एकांत मजबूरी बन जाए तब। दूसरों की नजर में भरा बुरा घर है हमारा, मम्मी पापा मैं, कितना छोटा और सरल परिवार और कितना उलझा जटिल और घुटा घुटा परिवार, कोई कल्पना कर सकता है यहां की मानसिक एक रास्ता की, रूप की, खालीपन की। जब हम लंदन से लौटे थे, लोगों की निगाहों में हम फॉरेन रिटर्न थे, बिल्कुल कच्चा कोमल मन था मेरा उस समय, बड़ा उछल हुआ था मन में भारत आने का, अपनी जमीन पर अपनी मिट्टी की गंध के बीच आने का। लेकिन वो उछा कितने दिन टिक पाया, कुछ ईर्ष्या करते, कुछ ताने कसते, कुछ गलत समझते हमें, और कुछ मेरी उन्मुखता को घूर घूर कर देखा करते। आज भी मैं भूल नहीं पाती हूं कॉलेज के वे दृश्य, जिन्हें देखकर मैं असामान्य हो जाती थी और घर आकर मम्मी पापा के सामने प्रिफर करती थी।

0: कॉलेज जैसे मुझे एक्सेप्ट नहीं करता। लड़कियां मेरी स्मार्टनेस पर हंसती हैं, मेरी हेयर स्टाइल की नकल बनाती हैं और कहती है मैं जानबूझकर अंग्रेज बनती हूँ। फुलिश।
1: अच्छा अच्छा, चिल्लाओ मत।
0: क्यों न चिल्लाऊं? बोलिए बोलिए, क्यों न चिल्लाऊं? अब अगर मैं 16 साल लंदन में रही हूं तो इसमें मेरा क्या दोष? मैं तो फालतू अंग्रेजी और अंग्रेजी पर झाड़ने में बिलीव भी नहीं करती।
1: तो फिर इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? कुछ दिनों बाद तुम्हें उन्हें देखने की और उन्हें तुम्हें देखने की आदत पड़ जाएगी। हर नयापन आदमी को चौंकाता है रितु।
0: ये नयापन नहीं है मम्मी, ना ये चौंकना है। आप तो अपनी मैच्योरिटी से सब देखती हैं, मुझसे ये बिहेवियर सेम नहीं होता। अजीब मेंटालिटी है, दूसरों के चलने फिरने, उठने बैठने, पहनने ओढ़ने में इतनी दिलचस्पी। छी, कोई कल्चर है ये? अपना दिमाग भी गंदा करते हैं और दूसरों का भी। पर्सनालिटी पर कितना खराब असर पड़ता है।
1: तुम कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो। मैं भी ऐसी ही थी। समय ने सब कुछ सिखा दिया। देखो रितु, यहां सबके पास समय बहुत है दूसरों में इंटरेस्ट लेने का।
0: सिर्फ लड़कियां ही नहीं, टीचर्स भी मेरी क्रिटिक हैं, मेरा मजाक बनाती हैं, क्लास में मुझे जलील करती हैं। समझती हैं मैं अपनी स्मार्टनेस में अपनी स्टडीज पर ध्यान नहीं देती हूँ।
1: तो एडजस्ट करना सीखो। तुम्हें एडजस्टमेंट की बिल्कुल आदत नहीं है, इसीलिए तो तुम्हारे टीचर्स ने भी मुझसे शिकायत की है।
0: शिकायत आपसे? जानती हूं आप प्रिंसिपल और टीचर्स के बीच बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया कि मेरे खिलाफ कंप्लेंट की जाए। आई हेट दिस एटीट्यूड। पापा भी कुछ नहीं करते, न बोलते हैं। हाउ हेल्पलेस एम आई।
1: पापा कब बोलते हैं, कब कुछ किया है उन्होंने? स्वभाव से सुस्त, बेपरवाह, कभी कोई दिलचस्पी आज तक उन्हें किसी में हुई? संबंधों का कोई अर्थ नहीं है उनके लिए, इसलिए उनके पास मत करो, मत करो।

0: छिड़िए भटिया खाना। कितनी बार कहा है मत भेजा करो मुझे इस कॉलेज में।
1: क्या हुआ, क्या बीच में ही चली आई?
0: हाँ हाँ चली आई, कौन पढ़ सकता है वहां। लड़कियों को घूर घूर कर देखने, पुसर पुसर बातें करने और रिमार्क पास करने के अलावा कोई काम भी है? ये मैनर्स है? How stupid!
1: बात क्या हुई?
0: बताने को कुछ भी नहीं हुई, पर

ऐसे तीव्र द्वंद के क्षण एक बार नहीं अनेक बार आए। पापा और मम्मी के बीच की दरार ने मुझे भी घर में पूरी आत्मीयता, पूरा लगाव नहीं महसूस होने दिया। घर कभी घर सा नहीं लगा। इन्हीं दरारों के बीच मैं बड़ी होती गई, कॉलेज से निकली, बीए, एमए एक रूटीन की तरह पूरा कर डाला, और उसके बाद खालीपन ने, सन्नाटे ने घेर लिया। एक अस्तित्वहीन निरुद्देश्य ढोई जाती जिंदगी, अजीब सा मिजाज बनता गया मेरा। गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, एक कॉम्प्लेक्स मुझ में खलबता गया।

0: यहाँ क्या हो रहा है? ये कमरे का अंधेरा, कोना, और तू? घर का एक कोना तेरे पापा ने संभाल लिया है, एक तू संभाल ले?
1: क्या करूं? एक लड़की को जो कुछ पूरा कर लेना होता है कर चुकी। तो 3 सालों से इन दीवारों को देख रही हूं, एक रूटीन से ज्यादा अपने बारे में और क्या सोचते हैं मुझे?
0: क्यों नहीं सोचना है, कौन सोचेगा? और
1: तुमने अपने बारे में क्या सोचा था?
0: मत बात उठाओ मेरी, मत कुरे दो मुझे, मेरे अतीत को, मेरे बीते हुए कल को मेरे ही उठे में रह दो।
1: हमेशा यही कह देती हो,
0: चुप कर देती हो मुझे।
1: सच्चाई को बदल नहीं दोगी तो?
0: मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी अपने बल पर बनाओ, मत समेटो अपने को इन कोनों में, इन दीवारों और अंधेरों में। सोचो, सोचो तुम्हें क्या करना है।
1: क्यों? मुझे भी वही करना है जो सारी यंग जेनरेशन को करना होता है। एक बंधे रूटीन में बहते रहना, पढ़ो लिखो और शादी कर लो। हमारी सोसाइटी ने यही नियम बनाए हैं ना?
0: रिसर्च क्यों नहीं कर लेती?
1: रिसर्च? मुझे नहीं करना है रिसर्च। रिसर्च फायदा? सारी लाइफ एक रिसर्च ही तो है। तुमने क्या कर लिया सिवाय इसके कि मुझे डांट लेती हो, पापा को उल्टा सीधा कह लेती हो, गुस्सा, फटकार, करवाहट के अलावा मैंने तुम में कभी कुछ नहीं देखा।
0: रितु, खामोश हो जाओ। मैं कहती हूँ,
1: एकदम सूखा हुआ स्नेह का सोता।
0: चुप हो जाओ, कुछ मालूम नहीं है तो आम लोगों की तरह दूसरों की टीका टिप्पणी मत करो, और दूसरों की हंसी उड़ाकर अपनी मूर्खता मत टपकाओ, समझी?
1: लेकिन मैं सीरियसली जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों है? क्यों है ये ठंडापन, ये रूखापन, ये जड़ता? अब तो तुम मुझसे बात कर सकती हो एक समान लेवल पर आकर। टीनेजर नहीं हूं अब कि कहती रहो तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा।
0: नहीं बोलना चाहती थी क्योंकि आज तक मैंने किसी को कुछ,
1: ये कोई बहुत बड़ा आदर्श नहीं है। परत दर परत अगर चीजों को छिपाकर, दबाकर कोई आदर्श पालता है तो लानत है उस पर।
0: मुझे भी लगता है बता ही देना चाहिए। शादी के बाद ससुराल आने पर मुझे पता लगा कि मुझे अपने पति के बारे में सारी गलत खबरें दी गई थी, झूठ बोला गया था। पति बेकार था, जीविका ढूंढने को ताकत ही नहीं थी उसमें। दहेज के बहाने तरह तरह की मांगें शुरू की गईं। एक नफरत ने मेरे अंदर जन्म लिया। छोटा सा तंग घर था, दिमाग भी इतने ही तंग थे। ये बेकारी, ये झूठ, ये मांगें, ये घुटन मुझे असह्य होती थी। लेकिन फिर भी मैंने अपने को एडजस्ट किया, परिवार में पूरी दिलचस्पी ली, और उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी, न घर में, न बीवी में, न बच्चों में। घर चलाने के लिए नौकरी की मैंने, लेकिन हम एक दूसरे से उलझते ही रहे। हौसले और बढ़ते गए। मेरे जीवन का आरंभ ही गलत हुआ था।
1: हमेशा यही बात की दोहराती रहती हो, बोर हो गई हूँ सुनते सुनते। दरअसल तुम्हारे मन में वही एक बात बैठ गई, चुभ गई कि तुम्हें धोखा दिया गया है और इसीलिए

0: समझौता कभी नहीं हो सका।
1: समझौते की कोई परिभाषा नहीं होती और मुहावरा बहुत सोच समझकर बनाया गया है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। चलो, तुम अपनी उम्र को क्यों थकाती हो? जाओ, कुछ दिन अपनी मामी के पास रहाओ। दिल्ली में मन शायद बदल जाए।

और मैं दिल्ली आ गई मामी के पास। वहाँ सारी सुविधाएं थीं, टेलीविजन, मैगजीन्स, किताबें, म्यूजिक, और दिल्ली जैसा महानगर तेज रफ्तार में बहती भागती जिंदगी। किसे किसके लिए फुर्सत है, मैं अपने को रमा नहीं पाई। जो अकेलापन पहले लगता था वही अब भी लगता था। सिर्फ जगह बदली थी, अचानक कुछ ऐसा घट गया कि सारा माहौल ही बदल गया। एक ताजे झोंके की तरह वो मेरी जिंदगी में आया, वो यानी अनूप। बस स्टैंड पर हुई उससे भेंट अपने आप ही फिर रुकी नहीं। कभी लाइब्रेरी, कभी मार्केट, कभी कहीं, और समय बड़ी तेजी से यूं फिसलता चला गया कि पता ही नहीं चला।

0: बड़ी फ्रेश लग रही हो।
1: सच?
0: घूमना बहुत अच्छा लगता है।
1: कितना अच्छा मौसम है, खुली ताजी हवा और ये चहकते हुए पंछी, देखो देखो कितने तरंग में बह जा रही है, और आवाज भी वैसी ही है, बेहिचक बेमिसाल।
0: हाँ ऋतु, इनके फड़फड़ाते हुए पंख, आगे बढ़ने की इच्छा और जीने की इच्छा, ये भरपूर कोशिश का इशारा करते हैं।
1: बहुत अच्छा लगता है ना यूं अनजान उड़ान में बहना, कितना रोमांटिक है।
0: ऋतु, तुम कविता लिखती हो?
1: कविता? और मैं मैं कुछ नहीं लिखती लिखती कविता लिखना बहुत ऊंची चीज है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता।
0: तुमने कभी अपने अंदर झांक कर देखा है? अरे ये क्या हो गया?

0: बहुत बड़ी बहुत महान बात कही है, आप भी कभी वाल्मीकि जैसी। जो मुझसे कभी किसी ने नहीं कही ऐसी महान बात का मुझसे कोई रिश्ता नहीं है अनु।
1: फिर वही बात, बात महान नहीं होती, बात कही गई बात को करके दिखाना महान होता है।
0: फिलोसफी?
1: फिलोसफी नहीं, वास्तविकता है ये। रितु, रितु।
0: सॉरी अनूप, मैं अपने अतीत को, अपने वर्तमान को हंसी में उड़ा देना चाहती थी।
1: रितु, अतीत

0: अगर दुखदाई है तो आगे के लिए तैयार करता है। उसे पाल कर रखोगी तुम?
1: मैं खुद यकीन नहीं करती बोझ हटोने में। मैं मम्मी से कहती भी रही हूं, लेकिन लेकिन कहना आसान होता है, वही बात जब अपने साथ होती है तो।
0: तुम हमेशा अपने मम्मी का जिक्र करती हो।
1: पापा की भूमिका मैंने पूरी तरह महसूस ही नहीं की है। एक पराईपन का एहसास, बल्कि उनके होते हुए भी उनके ना होने का एहसास, कितनी भयावह स्थिति है।
0: तुमने कभी उनसे, मेरा मतलब है, बात करने की कोशिश की?
1: नहीं, पहले थोड़ी बहुत बात भी होती थी, लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे मेरी फ्रेंड्स के सामने बुरी तरह जलील कर दिया था।
0: फिर
1: उसके बाद से मैं समझ ही नहीं पाई मुझे क्या हो गया।
0: ये अधूरापन तुम्हें, मैं बहुत ही जल्दी समझ गया था। अक्सर तुम्हारी बातों से मुझे लगता रहा कि तुम बड़ी डरी डरी सी, सशंकित सी रहती हो।
1: मुझे हमेशा लगता है जैसे जैसे मैं बहुत असुरक्षित हूँ। हाँ, लोग सब पर संदेह होता है। अजीब सा शक अनूप, अजीब सा शक।
0: लेकिन मुझे मुझे देखकर क्या क्या लगता है तुम्हें?
1: नहीं, तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं लगा।
0: क्यों? संदेह, शक, ये सब नहीं होता मुझ पर?
1: बिल्कुल नहीं, शुरू से नहीं हुआ अनूप। ये कितनी अजीब बात है।
0: कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अचानक बनते हैं, लेकिन बहुत गहरे बनते हैं, बहुत गहरे, बहुत अपने।
1: मैं अपने अंदर बहुत बड़ा चेंज महसूस कर रही हूं अनूप, जैसे जैसे एक नई पर्सनालिटी अनजाने में धीरे धीरे जन्म ले रही हो। मैं नहीं जानती वो क्या है, क्या होगी, पर अपनी जिंदगी, अपने वर्तमान और भविष्य के लिए मैंने सोचना शुरू किया है। और मुझे अच्छा लगता है, बिल्कुल नया अछूता अनुभव।
0: रितु, मेरी तरफ देखो, क्या दिखता है इन आंखों में?
1: गहरा, बहुत गहरा, अथाह सागर।
0: प्यार ही प्यार है मेरे पास, अथाह प्यार, और कुछ नहीं।
1: मुझे और चाहिए क्या अनूप?
0: रितु,
1: और इस तरह मैं और अनूप खड़ी बातें के एक खालीपन जैसे भर गया, एक ठूठ में जैसे ताजी भीनी सुगंध बिखेरता फूल खिल गया। चेहरे का रूखापन एक अजीब सी कांति में बदल गया। मैंने जाना कि प्यार के बिना जीवन एक रेतीली जगह है, पहचानो, खोजो। हर आदमी के अंदर एक कलाकार छिपा होता है, उसे बाहर आने दो। और मैंने अपनी जिंदगी के बारे में खुद फैसला करने की अनोखी ताकत

0: अपने अंदर पाई एक लगातार गहराता जाता आत्मविश्वास।
1: क्या सोच रहे हो? अच्छा तो नाराज हैं आप?
0: क्यों नहीं आए दिन?
1: नहीं आए, हमारी मर्जी।
0: नहीं, साफ साफ बताओ क्यों नहीं आए?
1: अरे भाई तुम रोमांटिक नाइट नहीं कि बिना पेशी के बस प्यार के गीत गाता रहूं, फंस गया काम में?
0: बता नहीं सकती थी।
1: देखना चाहता था तुम्हारा रिएक्शन। आज तुम्हें तुमसे बड़ी सीरियस बात करने आया हूं।
0: कैसी बात?
1: डर गई? आदत नहीं छूटी।
0: हमेशा आशंकित रही हूं अपने भविष्य के लिए।
1: अब भी कैसे बोलती हो? तुम बहुत बदल गई हो रितु।
0: अनूप, एक सवाल मेरे मन में उठता रहता है।
1: क्या?
0: तुमने मुझ में क्या देखा?
1: ओ,
0: देख क्या रहे हो?
1: देख रहा हूं ये सवाल अभी तुम क्यों पूछ रही हो? कुछ सवालों का कोई जवाब नहीं होता रितु।
0: भागते हो तुम, सवालों से कतराती हो अनूप।
1: ऐसे सवाल मेरे मन में आते ही नहीं। और रिश्ता तो रितु अपने आप बन जाता है, बस बन गया।
0: हाँ, सब कुछ अपने आप घटित हो गया।
1: इसीलिए मैं आज तुम्हारे पास एक इरादे के साथ आया था। चना, अब हम शादी कर लें?
0: शादी? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन पता नहीं क्यों शादी की बात सुनते ही मुझे पापा और मम्मी का चेहरा याद आ रहा है।
1: सारी मधुरता की नींव प्यार है रितु। हाँ, आधार नींव है, वो नहीं है तो चेहरे अलग अलग दिखते हैं।
0: जिस अंदरूनी यात्रा से मैं गुजर रही हूं उस अनुभव से अब मुझे लगता है कि पापा का एबनॉर्मल होना एक दुर्घटना नहीं है, शायद वो प्रेम के रूखेपन से जन्मी परिणति है। मां की कठोरता का भी यही रहस्य लगता है अब मुझे। सारी उम्र उन्होंने खोखले संबंधों को ढोया और अपनी अस्मिता को दबा डाला।
1: रितु, मैं तुम्हें तुम्हारे अतीत से मुक्त करना चाहता हूं। सिर्फ, हाँ, उसे सिर्फ उतना याद रखो कि वो तुम्हें ताकत दे सके, बस। सुनो, मां से नहीं पूछूंगी।
0: मम्मी ने कहा था अपनी जिंदगी अपने आप बनाओ और फिर अपने मन में अब भी लिख सकती हूं अनूप, लेकिन मैं तुम्हारे साथ शादी के बाद भी एक मित्र जैसे रह सकूंगी ना?
1: स्त्री पुरुष में अंतर वाला भाव मुझे बिल्कुल नापसंद है। समाज के पुराने ढांचे में अपने से कहीं जरूरी से बदलना है रितु।
0: मैंने कभी सोचा भी नहीं था अनूप, मेरी जिंदगी का भी ये खूबसूरत मोड़ आएगा। हम इस मोड़ को नया रूप दे पाएंगे ना?
1: उल्लास ही उल्लास भरा है मेरे अंदर। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे कितना ले पाती हो और कितना बढ़ा पाती हो।
0: कहाँ जा रहे हो? खड़े क्यों हो गए?
1: जिंदगी की लंबी राहों को अपनी बाहों में पालने के लिए।
0: मुझे साथ नहीं लोगे?
1: इसीलिए तो खड़ा हूं। ऐसे धीरे धीरे सोच सोच कर जल्दी जल्दी और जल्दी और जल्दी और जल्दी

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक जिसका शीर्षक था आरंभ।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
0: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आपका स्वागत है फिल्म संगीत के कार्यक्रम गाने सुहाने में। श्रोताओं, यह अवसर अत्यंत गौरव और हर्ष का है, क्योंकि देश की प्रतिष्ठित प्रसारण संस्था आकाशवाणी अपने गौरवशाली सफर के 90 वर्ष पूर्ण करने जा रही है। 9 दशकों की इस यात्रा में आकाशवाणी ने केवल समाचार, संगीत और मनोरंजन का ही प्रसारण नहीं किया, बल्कि देश की संस्कृति, भाषा, साहित्य और लोक परंपराओं को जन जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण दायित्व भी निभाया है। बदलते समय और तकनीक के अनेक पड़ावों के बीच आकाशवाणी ने अपनी विश्वसनीयता, गुणवत्ता और जन सरोकारों की परंपरा को निरंतर बनाए रखा है। तो आइए आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने की इस सुखद बेला में सुनते हैं बॉर्डर फिल्म से ये गीत।

आकाशवाणी की सफलता का सबसे बड़ा आधार उसके श्रोता हैं। 9 दशकों से श्रोताओं ने इस माध्यम पर अपना विश्वास बनाए रखा है। यही विश्वास आकाशवाणी की सबसे बड़ी पूंजी और सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो इसी के साथ आइए श्रोताओं, सुनते हैं सपने फिल्म से ये गीत।

कुमार सानू की आवाज़ में डुप्लीकेट फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का यह विशेष कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप सभी श्रोताओं को हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने वर्षों से अपना स्नेह, विश्वास और सहयोग बनाए रखा है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: जिंदगी बहुत कीमती है उससे तो सस्ता ही है
2: मैं आशुतोष राणा मैंने जाना फिर ये माना नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम RHL गोल्ड टीम टिसरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा जानो फिर मानो

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार थे मेहंदी हसन। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें हमारे लखनऊ केंद्र से। प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा में 516 करोड़ रुपए के 262 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संघ की बुनियाद रखा। उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों के मुस्तफदीन को सर्टिफिकेट और चेक दिए। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में रियासत की डबल इंजन वाली हुकूमत ने रियासत के हर जिले को तरक्की दी है। उन्होंने कहा कि रियासत अब मुल्क और दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रही है। वजीर आला ने कहा कि आज गोंडा में शुरू किए जाने वाले प्रोजेक्टों से जिले की तरक्की और अवामी सहूलियात को वुसअत मिलेगी।
1: उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों की भांति ही गोंडा के नौजवानों के सामने भी पहचान का संकट आ खड़ा हुआ। आज मैं कह सकता हूं, पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और पिछले 9 वर्षों में डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए जिन कार्यक्रमों को अपने हाथों में लिया है, आज उसके परिणाम आप सबके सामने देखते हुए बन रहे हैं।
0: महाकुंभ 2025 ने मरकजी हुकूमत के जरिए ऐलान करदा नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2026 में गोल्ड अवार्ड जीता है। इस साल मरकजी हुकूमत ने नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स के तहत 11 गोल्ड अवार्ड्स, 6 सिल्वर अवार्ड्स और 1 ज्यूरी अवार्ड का ऐलान किया। महाकुंभ 2025 को मुल्क की बेहतरीन ई गवर्नेंस ईजादात में से एक तस्लीम किया गया है। महाकुंभ गोल्ड अवार्ड हासिल करने वाले इदारों को 10 लाख की रकम मिलेगी और सिल्वर अवार्ड हासिल करने वाले इदारों को 5 लाख मिलेंगे। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2026 की रस्मी पेशकश की तकरीब जयपुर में 29वीं कौमी ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुनक्किद की जाएगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल बलरामपुर में 294 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि रियासत अब अपनी सरमायाकारी और सलामती के माहौल के लिए पहचानी जाती है। उन्होंने कहा कि रियासत की डबल इंजन वाली हुकूमत हर जिले की मजमूई तरक्की के लिए काम कर रही है।
1: यूपी में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना थके डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रही है। अन्नदाता किसानों के चेहरे पर खुशहाली ला रही है। बहन और बेटियों के स्वावलंबन के लिए कार्य कर रही है। व्यापारी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। बेहतरीन कनेक्टिविटी के माध्यम से आज हर जनपद विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा है।
0: रियासत के वजीर तवानाई ए के शर्मा ने पीएम सूर्य घर पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वजीर आजम की तरगीब पर मुल्क में सोलर तवानाई में तेजी से तौसी हो रही है। वाराणसी में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश मुल्क में अव्वल

0: मुकाम पर है और वाराणसी मुल्क में सोलर तवानाई में 11वें मुकाम पर है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में मरकज में एनडीए हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने पर एक खसूसी मुहिम कल शुरू हुई। मुहिम के एक हिस्से के तौर पर रियासत के तमाम अजला के इंचार्ज वजरा और अवामी नुमाइंदे 21 जून तक समाज के रोशन ख्याल तबकों के साथ बातचीत करेंगे। वो अवामी मसाइल के हल के लिए देही इलाकों में रात के चौपाल का भी एहतमाम करेंगे। इस तनाजुर में काबिनी वजीर ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में दरख्त लगाकर एक मरबूत अवामी फलाह बहबूद और बेदारी मुहिम का आगाज किया। मुहिम के बारे में मालूमात फराहम करते हुए रियासत के जल शक्ति के वजीर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि वजीर आजम मोदी की क्यादत में दुनिया भर में मुल्क की इज्जत में इजाफा हुआ है। नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ में एकेडमी अवार्ड तकरीब में 2021 से 2024 के लिए मुंतखब फनकारों को एजाज से नवाजा। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी के जेर एहतमाम तकरीब में 51 मुमताज फनकारों को मौसिकी रक्स ड्रामा और लोक फनून में नुमाया खिदमात के लिए एजाज से नवाजा गया। वाराणसी मुनक़दा ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप का दो रोजा इजलास कल इख्तिताम पजीर हुआ। आखिरी दिन ब्रिक्स के रुकन ममालिक के नुमाइंदों ने सकाफती ताउन और बाहिमी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम बनाने की जरूरत पर जोर दिया। हिंदुस्तान की सदारत में होने वाली इस अहम मीटिंग में ब्राजील, रूस, चीन, जनूबी अफ्रीका और सऊदी अरब समेत 11 ममालिक ने शिरकत की। सकाफत की वजारत के एडिशनल सेक्रेटरी अमिता प्रसाद सरभाई ने कहा कि मीटिंग में हिंदुस्तान के कीमती विरसे की वापसी पर तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान तरक्की और सकाफत के मुत्तखफा तफहूम के साथ आगे बढ़ने के तौर पर भी तबादला ख्याल किया गया। बलिया के जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी सुराताल को मुल्क के सवा रामसर साइट करार दिया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि यह मुल्क के कुदरती माहौल खास तौर पर उसकी आबी जमीन के तहफ्फुज के लिए हिंदुस्तान की गैर मुतजलजल अजम की अक्कासी का था। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वजीर आजम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हिंदुस्तान ने माहौलियाती तहफ्फुज, हयाती तनू के तहफ्फुज और वेटलैंड के तहफ्फुज के शोबों में काबिल जिक्र तरक्की की है। मुजफ्फरनगर जिले के छपर थाना इलाके में दिल्ली देहरादून कौमी शाहरा पर एक सड़क हादसे में 3 अफराद की मौत हो गई। हादसा उस वक्त पेश आया जब मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद ट्रक से टकरा गए, मौके पर ही हलाक हो गए। आंसू वाकये के बाद पुलिस और इंतजामी अहलकार जाए वकूफ पर पहुंचे। पुलिस सुप्रिंटेंडेंट संजय कुमार ने कहा कि मरने वालों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाके की खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं लता चंदोला।

प्रेम केवल शब्दों का मोहताज नहीं होता, वह तो हृदय की ऐसी अनुभूति है जिसे मनुष्य तो मनुष्य, वृक्ष पशु पक्षी भी समझ लेते हैं। जब तुम्हारा मन सच्चे स्नेह से भरा हो तो तुम्हारी मौन उपस्थिति भी संसार में करुणा और अपनापन बिखेर देती है। इसी सुविचार के साथ मैं लता चंदोला आ गई आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम नारी जगत को लेके। तो सबसे पहले आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके ही कार्यक्रम में आपका स्वागत। बहनों, आज अपने कार्यक्रम में जो हम सबसे पहले बातें करेंगे वो जो विषय है वो है हमारी भाई महिलाएं और उनकी डिजिटल सुरक्षा। क्योंकि आज के समय में बहनों ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर स्टॉकिंग और जो भी जो OTP स्कैम जो जितने भी हो रहे हैं उन सारी चीज़ों के लिए हमारी ड्यूटी बनती है कि हम आपको सजग करें। आज के डिजिटल युग में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट हमारी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। ऑनलाइन बैंकिंग, सोशल मीडिया, खरीदारी और संचार जैसी सुविधाओं ने जीवन को आसान तो बनाया ही है, लेकिन इसके साथ ही साइबर अपराधों का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में महिलाओं के लिए डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक होना बहुत आवश्यक होता है। ऑनलाइन फ्रॉड आज एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। ठग लोग जो हैं, जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं, वो लोग बैंक के अधिकारी, कुरियर वाले एजेंट या किसी भी कंपनी के प्रतिनिधि बनकर आपको फ़ोन करते हैं और आपकी व्यक्तिगत जानकारी को लेने की कोशिश करते हैं। याद रखें कि कभी भी बैंक जो होता है वो फ़ोन पर आपका OTP, ATM पिन या पासवर्ड नहीं पूछता। ऐसी किसी भी कॉल या संदेश पर कभी भी भरोसा ना करें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही घातक हो सकता है। साइबर स्टॉकिंग भी महिलाओं के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुकी

0: का है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति यदि सोशल मीडिया या ऑनलाइन माध्यमों से लगातार किसी महिला की गतिविधियों पर नज़र रखता है, और जैसा कि हम बहनें थोड़ा सा अपनी जो व्यक्तिगत जानकारियां हैं वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा दे देते हैं, और अनचाहे मतलब वो देने के कारण जो लोग जो हैं वो जान जाते हैं कि भाई हम इनको किस तरीके से ठग सकते हैं या किस तरीके से इनको परेशान कर सकते हैं। तो कभी-कभी क्या होता है, वो संदेश ऐसे भेजने लगते हैं या आपको परेशान करते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले उन हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनको ब्लॉक करें और संबंधित प्लेटफॉर्म पर हम शिकायत करें। भाई ओटीपी स्कैम से बचने के लिए कभी भी अपना ओटीपी किसी के साथ साझा ना करें। कई बार भाई ठग जो होते हैं वो आकर्षक ऑफर देते हैं, पुरस्कार नौकरी के लालच भी देते हैं, या कभी भी ऐसे लाचार व्यक्ति बनकर आपका फ़ोन मांगते हैं, तो उससे क्या होता है वो आपका ओटीपी साझा कर लेते हैं और आपका जो अकाउंट है वो पूरा खाली हो सकता है। तो इसी पर एक छोटी सी मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि भाई मुझे भी किसी ने ये बताई थी बात। तो एक बार क्या हुआ, एक लड़का जो था रास्ते में जा रहा था, वो बहुत ज़्यादा दीनहीन बन के लोगों से उनका फ़ोन मांग रहा था कि अंकल मेरा फ़ोन जो है किसी ने चोरी कर लिया है, और अभी अभी बाइक से वो आया था आदमी और मैं फ़ोन पर बात करता हुआ अपने पिताजी से जा रहा था और उसने मेरा फ़ोन जो है छीन लिया और वो चला गया। तो मुझे अपना फ़ोन दे दीजिए, मैं अपने पापा को बता सकूं कि जो है मेरा फ़ोन चोरी हो गया। तो कुछ लोग तो समझ गए, समझदार थे, वो लोग जान रहे कि इस तरह की परेशानियां आजकल होती हैं, इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। तो उन्होंने क्या किया कि मना कर दिया, लेकिन एक व्यक्ति थे जो बेचारे की दीनहीन अवस्था को देख कर उन्होंने उसको फ़ोन दे दिया। फ़ोन देने के बाद उस लड़के ने अपने जो भी थे उनको कॉल करी और उससे कहा कि पिताजी मेरा फ़ोन जो है अभी अभी जो है एक बाइक सवार आदमी जो है चुरा के ले गया, खींच के ले गया है, और मैं जो हूँ परेशान हूँ और ये किसी अंकल के मैं फ़ोन से बात कर रहा हूँ। तो उसने पिताजी ने पता चला कि वहाँ उधर से क्या कहा कि क्या तुमने जो है वो जो आपकी बाइक से आपका फ़ोन लेके चला गया उसका तुमने नंबर देखा था? तो उसने कहा हाँ हाँ नंबर देखा था, और कुछ नंबर उसमें बता दिया, जैसे 567 बता दिया, 8910 बता दिया, कुछ भी बता दिया, और बता दिया वो एक्चुअली में क्या था, वो था ओटीपी। थोड़ी देर बाद वो बच्चा जो है उनको फ़ोन दे के थैंक यू कह के चला गया, और थोड़ी ही देर बाद वो जो व्यक्ति थे जिन्होंने सहायतार्थ अपना जो फ़ोन उस बच्चे को दिया था वो सारा का सारा अकाउंट उनका खाली हो गया। तो इस तरह की चीज़ें जो घटनाएं घटित होती हैं, इस चीज़ों को भी हमें ध्यान देना चाहिए। डिजिटल सुरक्षा के लिए कुछ सरल उपाय जो हैं हम आपको बहनों बताएंगे, जैसे मजबूत और अलग अलग जो पासवर्ड का उपयोग करें, और दो स्तरीय सुरक्षा की सक्रिय रखें, यानी कि किसी अकाउंट में लॉगिंग करने के लिए केवल पासवर्ड ही नहीं बल्कि एक अतिरिक्त सुरक्षा जांच भी जरूर रखें। सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी सीमित रूप से साझा करें, केवल विश्वसनीय वेबसाइट और ऐप्स का ही प्रयोग करें, किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। बहनों अगर इस तरह की चीज़ें हम करेंगे तो हम जो है अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। भाई अभी तक हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जो मौजूद थी, जो कि अभी आप तक आपको कार्यक्रमों का विवरण दे रही थी, चलिए उनसे भी थोड़ा सा पूछती हूँ कि क्या उनके साथ भी कोई ऐसी सोशल मीडिया से रिलेटेड कि कहीं कोई फ्रॉड कॉल या कोई फेक कॉल या फेक कोई चीज़ ऐसी आई है, या उन्हों वो क्या चीज़ ऐसा करती हैं कि जिससे जो है वो अपने आप को बचाती हैं। तो हमारी जो दोस्त हैं वो हैं अपर्णा। अपर्णा थोड़ा सा बताएंगी आपको। भाई अपर्णा जी, क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है क्या?
1: लता जी सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। और मेरे साथ तो नहीं, लेकिन मेरे एक रिलेटिव थे जिन्होंने ऑनलाइन कोई शॉपिंग की थी जो उन्हें रिटर्न कर लिया था, उसके बाद उन्हें पेमेंट वापस नहीं मिला था। उसके लिए उन्होंने वेबसाइट पे दिए गए नंबर पे किसी कॉल किया, और कॉल करने के बाद उस पे उनसे ओटीपी मांगी गई और एप्स डाउनलोड करवाए गए। इस मतलब पूरे प्रोसेस में उनके अकाउंट से 40,000 रुपए चले गए थे। उसके बाद उन्होंने हालांकि फिर कुछ कॉल वगैरह भी किया, लेकिन वो पैसा उनका वापस नहीं।
0: और अभी आप बता भी रही थी कि शायद उन्होंने अपने किसी ट्रीटमेंट के लिए वो पैसा रखा हुआ था,
1: उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और उस टाइम में वो पैसा उनके अकाउंट से गायब हो गया।
0: तो आप भी क्या कभी ऐसी कॉल आपके पास भी कभी आई है, या जो है आपने क्या सुरक्षा के लिए क्या चीज करती है, मतलब कोई भी कॉल उठा लेती
1: है? सबसे पहले तो नहीं, अननोन जो भी लिंक आते हैं या कॉल आती है तो सबसे पहले तो यही करते हैं कि अवॉइड करते हैं उसको, उसको उठाते नहीं है, क्योंकि डिजिटल युग में जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
0: बिल्कुल,
1: थोड़ी सी सतर्कता हमको आर्थिक और मानसिक दोनों नुकसान से बचा सकती है।
0: नहीं, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। तो बहनों देखिए ना किस किस तरह की, कभी कभी क्या हो रहा है आजकल जो है इनविटेशन के रूप में भी लिंक लोग भेज रहे हैं, तो उसको भी यदि हम ओपन करते हैं तो भी जो है ये चीज़ें हमारे साथ हो जा रही हैं कि किसी न किसी तरीके से उनके पास हमारा फ़ोन हैक हो जा रहा है और ये सब घटनाएँ घटित हो रही हैं।

तो इन सारी चीज़ों का यदि हम ध्यान देना तो सुरक्षित डिजिटल जीवन के लिए जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। थोड़ी सी सावधानी हमें बड़े नुकसान से बचा सकती है। आजकल जो है थोड़ा सा हम लोग बहनें गाने बजाने भी थोड़ा सा अपने सोशल मीडिया में डाल देते हैं, इससे भी अंदाज़ा लोग लगा लेते हैं कि हम कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं। तो यदि आपके पास ऐसा कोई जानकारी अननोन पर्सन की आपके पास आती है या जानते हैं तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करिए। बहनों, कभी कभी दिल की भावनाएं शब्दों से पहले ही सफ़र पर निकल पड़ती हैं। मन किसी अनजानी मंजिल की ओर खींचता चला जाता है जहां सपने हैं, उम्मीद है और प्यार की मीठी सी खुशबू है। ऐसे ही एहसासों को सुरों में पिरोता एक खूबसूरत सा गीत हमारे दिल को छू जाता है। आइए सुनते हैं सुनिधि चौहान की आवाज़ में चमेली फिल्म का ये गीत

0: बहनों, जैसा कि आप जानती हैं कि आज जो हमारी बातों का मुख्य विषय है वो है महिलाएं और डिजिटल उनकी सुरक्षा। तो इसी के तहत अब हम थोड़ी सी बात करेंगे सोशल मीडिया और उसकी प्राइवेसी सेटिंग्स। तो क्या अपर्णा, तुमने अपने मोबाइल पे प्राइवेट सेटिंग्स कर रखी है?
1: नहीं लता जी, मैंने तो अपने फ़ोन में कोई ऐसी सेटिंग नहीं कर रखी है।
0: अच्छा,
1: कोई सेटिंग होती है क्या?
0: हाँ बिल्कुल होती है, और वो बहुत ज़रूरी है आज के समय में। उसके बारे में जानना, वो कैसे की जाती है, कैसे क्या है, वो तो मैं तुमको खैर बाद में बताऊंगी, लेकिन अपनी बहनों को भी थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ज़रूर दे दूंगी। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इसके लिए बहुत से प्लेटफॉर्म में हम अपनी तस्वीरें, विचार और निजी जानकारियाँ साझा करते हैं, लेकिन क्या हम अपनी ऑनलाइन सुरक्षा और गोपनीयता का भी उतना ही ध्यान रखते हैं? नहीं ना। अब हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे भाई, वो है सोशल मीडिया और हमारी सेटिंग्स, क्या हम कर सकते हैं। प्राइवेसी सेटिंग्स का अर्थ है अपनी व्यक्तिगत जानकारी को नियंत्रित करना। यदि प्राइवेसी सेटिंग्स सही तरीके से नहीं की गई तो हमारी निजी जानकारी गलत लोगों तक पहुंच सकती है, जिससे साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी का खतरा भी बन सकता है। सोशल मीडिया का उपयोग करते समय सबसे पहले अपनी प्रोफाइल की प्राइवेसी सेटिंग अवश्य जांच लें। अपनी पोस्ट को पब्लिक के बजाय फ्रेंड्स या केवल परिचित लोगों तक ही सीमित रखें, जिसमें अपनी आप जन्मतिथि, मोबाइल नंबर या घर का पता या अन्य संवेदनशील जानकारियां सार्वजनिक रूप से साझा करने से आप बचें। इसके साथ ही मजबूत पासवर्ड का प्रयोग करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, अपनी डेट ऑफ बर्थ है, अपनी शादी की सालगिरह है, या अपने बच्चों की अकॉर्डिंग जो है पासवर्ड या डाल देते हैं, क्योंकि वो हमें बहुत अच्छे से आसानी से याद हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो अगर हम कोई इंसान सोच ले कि इनके मोबाइल से हमको ठगी करनी है, तो वो कहीं ना कहीं रास्ता निकाल ही लेगा। किसी अनजान व्यक्ति के फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने से पहले उसकी प्रोफाइल की जांच जरूर कर लें। बच्चों और किशोरों के लिए प्राइवेसी सेटिंग्स बेहद महत्वपूर्ण हैं। बच्चों को भी ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में भी बताएं और उनकी सोशल गतिविधियों पर भी नजर रखें। यदि कोई संदिग्ध लिंक, संदेश, पोस्ट दिखाई दे तो उसे कभी भी क्लिक ना करें। एक चीज़ और बहनों, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास लिंक एक आ गया कि हाँ, या कोई एक मैसेज आ गया कि आपके अकाउंट में 1,000 रुपये या 2,000 रुपये डाल दिए गए हैं। हम लोग क्या करते हैं, तुरंत उसको चेक करते रहते हैं कि अरे ये पैसा कहाँ से आया। तो ये चीज़ कभी भी ना करें, तुरंत तो बिल्कुल भी ना करें, और यदि करें भी तो जो आपने अपना पिन बनाया है या पासवर्ड बनाया है वो गलत डालें, क्योंकि कभी कभी हमारा मोबाइल हमें पता भी नहीं रहता है, कुछ लोग हैक कर लेते हैं, और वो जो है जैसे ही आप वो पिन डालेंगे तो आपका जो पिन है वो भी उनके पास पहुँच जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी बच्चों को हमें बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे जो हैं आजकल ना आउटडोर गेम की जगह मोबाइल पे बहुत सारे गेम खेलते हैं, और वो खेलने के साथ साथ कभी कभी उन जो ये ठगी का काम करते हैं वो जानते हैं कि कौन कितनी देर तक इस तरह की गेमों को कर रहा है, तो कॉल करते हैं या उनसे मैसेज करके बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और भाई आजकल करेंसी जो है हमारी मोबाइल पे ही सब रहती है, सारा ट्रांजेक्शन हमारा फ़ोन के ज़रिए ही होता है। तो क्या होता है कि कभी कभी बच्चे अनजाने ही उसमें भी क्लिक कर देते हैं और हमारा पैसा जाने का डर रहता है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट की सुरक्षा सेटिंग्स को समय समय पर अपडेट भी करते रहें। प्रिय बहनों और भाई श्रोताओं, सोशल मीडिया हमें दुनिया से जोड़ता है, लेकिन सुरक्षा और गोपनीयता की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। थोड़ी सी सावधानी और सही प्राइवेसी सेटिंग हमें ऑनलाइन खतरों से बचा सकती है। भाई ये तो बातें हमारी हो गई, लेकिन अब हम थोड़ा सा गाने की बातें करते हैं। डिजिटल दुनिया में भी सतर्कता और समझदारी हमें सुरक्षित रखती है और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का अवसर देती है। इन्हीं सपनों और उम्मीदों को आगे बढ़ाने के जज्बे को सलाम करता हुआ यह खूबसूरत गीत आइए सुनते हैं। फिल्म है चक दे इंडिया और इसकी गायिका है हेमा सरदेसाई, संगीत है सलीम सुलेमान का और गीतकार हैं जयदीप साहनी।

बहनों भाई, हमने अपनी सुरक्षा की तो बातें कर ली, लेकिन अब थोड़ा सा बच्चों की भी भाई, क्योंकि खतरा जो है वो थोड़ा सा बच्चों के साथ ज़्यादा रहता है इन सारी चीज़ों में, तो हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए कि बच्चे जो है इन सारी चीज़ों से सुरक्षित रहें और कुछ इस तरह का गड़बड़ ना कर पाए। भाई, उनकी डिजिटल आदतों पर हमें निगरानी रखनी पड़ेगी। बच्चे कितनी देर तक किस उद्देश्य से मोबाइल पर या इंटरनेट पर का उपयोग कर रहे हैं, इस पर हमें ही ध्यान देना पड़ेगा। उनकी स्क्रीन टाइम जो है उसकी सीमा तय करनी पड़ेगी। पढ़ाई, खेल और आराम के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बच्चों का स्क्रीन टाइम निर्धारित होना बहुत ज़रूरी है। सुरक्षित इंटरनेट उपयोग सिखाएं उनको। बच्चों को उनकी आयु के अनुरूप ही गेम्स, ऐप और वीडियो देखने की अनुमति दें। भाई, कभी कभी ना माएँ बोलने लगती हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चे जो हैं सुनते नहीं हैं। ऐसा नहीं, सुनेंगे। यदि हम शुरू से उनके अंदर थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस थोड़ी सी रखें, ठीक है, एक एज आने पे जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, हमें थोड़ा सा उनके साथ हल्का होना पड़ता है, फ्रेंडली हमें उनके साथ बिहेवियर करना पड़ता है। लेकिन जब तक बच्चा अगर कोई चीज़ नहीं जान रहा है कि इससे क्या क्या नुकसान है, तब तक हमको उन पे थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस और उन पे नज़र हमको रखनी पड़ेगी। उनके साथ खुलकर संवाद करें, उनको बताएं कि ये बेटा इस तरह की चीज़ें होती हैं, या कोई घटनाएं उनको बताएं, क्योंकि जो घटना होती है ना वो बच्चों पे ज़्यादा प्रभाव डालती है बनस्पत की। उनको यदि हम समझा रहे हैं, यदि हम कोई उदाहरण किसी चीज़ का दे दें उनको, तो वो चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं।

बार सुरक्षा की उनको जानकारी दें, आवश्यकता अनुसार सुरक्षा फीचर्स या पेरेंटल कंट्रोल जो ऐप्स हैं उनको भी या टूल्स को भी हम प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों का विश्वास जीतें। डिजिटल और वास्तविक जीवन में सुरक्षा का संतुलन बनाए रखना उनको सिखाएं। सोशल मीडिया के जोखिम जो हैं उसके बारे में भी समझाएं कि देखिए ऐसा होता है तो ये होता है, ऐसा होता है तो वो होता है। देखिए ये सारी चीज़ें जो साइंस की हैं, जो हमें आज वरदान के तौर पे हमें मिली हैं, ये हमारे लिए लाभकारी तो हैं, लेकिन ज़रा सी हमारी जो चूक है ना, वो हमें इन सब चीज़ों से खामियाजा भी भुगता सकती है। ज़िंदगी में बहनों कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं जो हकीकत को भी सपनों जैसा खूबसूरत बना देते हैं। जब कोई अपना हमें प्यार, विश्वास और अपनापन देता है तो लगता है कि जैसे हम सपनों की दुनिया में आ गए। ऐसे ही मधुर एहसासों से सजा यह गीत प्रेम की कोमल भावनाओं को बड़ी खूबसूरती से व्यक्त करता है। फिल्म है दुल्हन वही जो पिया मन भाए। आप तो समझ ही गए होंगे कि वो कौन सा गीत हो सकता है।

में तब इतनी तेज धूप थी कि इतने पसीने से तर बतर हो गई। तो ऐसे में क्या होता है, हमारे तन में दुर्गंध जो है आने लगती है, बदबू आने लगती है पसीने की, यानी कि बॉडी ऑडर की होने लगता है। गर्मी, पसीना और साफ सफाई के कारण जो ये पसीना है ना, वो दुर्गंध का कारक बन जाता है और ये इस समय की आम एक समस्या बन चुकी है। तो ऐसे में क्या चीज़ हम ऐसा करें कि जिससे कि हमारी जो शरीर की जो स्मेल है वो थोड़ा सा कम हो जाए। हमें याद है बहनों, बचपन में छोटे जब हम लोग थे तो हमारी माता श्री जो होती थी वो क्या करती थी कि भाई नीम की जो पत्तियां होती थी, कोमल कोमल पत्तियों को तोड़कर उनको पानी में खूब सारा खौला के रख लेती थी, यानी कि एक भगोना। और जब हम लोग नहाने के लिए जाते थे तो उसमें से एक एक मग जो है पानी वो हम लोग की बकेट में डाल देती थी। अगर ये उपाय हम लोग आज भी करें, और कुछ लोग मैंने सुना है कि भाई ये चीज़ करते भी हैं, तो यदि करें तो जो तन की दुर्गंध है वो जिस कीटाणुओं के कारण, बैक्टीरिया के कारण होती है, उनका नाश हो जाएगा। दूसरा उपाय है भाई, नींबू का रस थोड़ा सा ले लें और बेकिंग सोडा चुटकी भर ले लें और उसका जो है पेस्ट बना के पतला पतला अपने बगल में, जहाँ हमको स्मेल लगती है कि पसीना ज़्यादा आता है, वहाँ पे हम थोड़ा लगाएं और थोड़ी देर बाद, 10-15 मिनट बाद हम उसको हटा दें। इससे क्या होगा, जो हमारी स्किन में थोड़ा सा कालापन भी जो आ जाता है वो भी हट जाएगा। यूडीक्लोन नाम का एक पदार्थ है, सुगंधित पदार्थ जो कि बाज़ार में आसानी से उपलब्ध होता है, उसकी एक दो बूंद यदि हम पानी की में अपने डाल लें तो भी हम इस तरह की बदबू से दूर रख सकते हैं। भाई साफ़ सफाई का ख्याल तो हमें रखना ही है। कॉटन के कपड़े पहने जिससे कि हमारा शरीर सांस ले सके, कपड़े सांस ले सके। खूब पानी पिए जिससे कि बॉडी हमारी डिटॉक्स होती रहे। मसालेदार भोजन, वैसे भी इस समय में इतनी गर्मी और कभी बरसात, कभी थोड़ा सी धूप, कभी कहीं छाए, तो ऐसे में थोड़ा सा मसालेदार भोजन जो है वो कम खाना चाहिए। ये भी रीजन हो जाता है हमारे शरीर की पसीने की स्मेल का। ग्रीन टी या ब्लैक टी को भी उबाल कर उसका भी पानी थोड़ा सा अगर हम डालकर जो है नहाएं तो भी जो है बदबू से हमें राहत मिल सकती है। सेब का सिरका, उसे जो है डाइल्यूट करके थोड़ा सा रुई के फाहे से हम ऐसी जगहों पे लगाएं जहाँ पर हमारी स्मेल आती है, और थोड़ी देर बाद हम नहा लें तो देखिए तन की जो दुर्गंध है ना वो सुगंध में फैल हो जाएगी। और भाई जो थोड़ी सी पाउडर है या स्मेल वाली जो चीज़ें हैं उनका तो हमें प्रयोग करना ही करना है। भाई अब जो है हमारी स्टूडियो की घड़ी इस समय आपसे विदा लेने के लिए बोल रही है। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

पैनो, अब थोड़ा सा ट्रैक से हटकर बातें, जो हमारा मुख्य विषय था उससे थोड़ा सा हटकर बात करते हैं भाई तन के दुर्गंध की। ये मौसम ऐसा चल रहा है ना, कभी देखिए बारिश हल्की सी हो जा रही है और कभी एकदम चटक धूप। देखिए आज के सुबह कहीं आपको लगा होगा कि भाई कहीं कहीं पे बारिश भी हुई, और उसके बाद जब मैं आ रही थी अपने स्टूडियो

0: अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत, जिसे प्रस्तुत कर रही थी लता चंदोला। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
1: गांव तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती किसानी। इसमें आज आप सुनेंगे वार्ता, विषय है पशुओं के नवजात बच्चों की देखभाल।
2: नवजात बच्चों का देखभाल बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमको कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले हमको क्या करना है कि पशुशाला में गाय को जब आप बांधते हैं, सबको पता चलता है कि जब गाय बच्चा देने होती है तो काफी उछल कूद करती है, तकलीफ होती है, तो उसको पशुशाला के बीचों बीच बांधते हैं। कभी कभी आप क्या करते हैं कि उसको किनारे बांध देते हैं तो वो दीवारों से उसका सिर लड़ जा सकता है, तो आप उसको बीचों बीच बांधिए। अब जब गाय बच्चा देती है तो उसमें आप देखेंगे कभी कभी क्या होता है कि उसको एक साक लगता है और उसकी श्वास नहीं चलती है, तो उस समय हम लोग क्या करें कि तुरंत, चूंकि चिकित्सक नहीं उपलब्ध होता है, तो पसलियों को बार बार प्रेशर करते हैं। पसलियों को बार बार प्रेशर करने से उसका जो श्वास है वो चलने लगता है। इसके पहले हमको ये करना चाहिए कि जब भी देखिए तो जैसे बच्चा जमीन पे आ जाए तो उसको उसके नाक को अच्छे तरीके से, चूंकि उसमें म्यूकस भरा होता है, तो नाक को साफ कर लीजिए, कान को साफ कर लीजिए, मुंह को साफ कर लीजिए। इस जब साफ कर लेंगे तो उसकी श्वास अपने से चलने लगती है, और कभी कभी जब नहीं चलती है तो उस केस में आपको पसलियों पे थोड़ा प्रेशर देना पड़ता है, तो फिर वो बच्चा श्वास लेने लगता है। अब बात आती है, कभी कभी ये देखा जाता है हमारे किसान भाई, पशुपालक भाई भ्रम में रहते हैं कि उनको खीस कब पिलाया जाए, कैसे पिलाया जाए। तो सबसे पहले जब वो बच्चे को साफ सफाई आप कर देते हैं अच्छे तरीके से, तो उसको कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी वो जितना जल्दी हो सके खीस पी ले, क्योंकि खीस में एक ऐसा तत्व होता है इम्यूनोग्लोबिन जो कि उसको जीवन भर के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। तो ये खीस, जिसको आप गांव में फेनुस भी बोलते हैं, इसको पिलाना नितांत आवश्यक है। अब पशुपालक भाई ये प्रश्न करेंगे कि हमको खीस कितना पिलाना चाहिए। इसमें पिलाने में ये जितना वो पेट भर पी सके, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको रुक रुक के थोड़ा थोड़ा करके पिलाए, क्योंकि और इसको 12 घंटा, बच्चा देने के 12 घंटा के पहले ही कोशिश करिए कि वो खीस पी ले। कभी कभी खेरी, जिसको आप प्लेसेंटा है, खेरी उसको बोलते हैं, खेरी नहीं गिरी रहती है, तो आप लोग बच्चे को 24 घंटे तक, 36 घंटे तक फेनुस नहीं पिलाते हैं। तो ऐसी दशा में क्या होता है कि वो जो प्राकृतिक तत्व है इम्यूनोग्लोबिन, उसका जो सदुपयोग उसके शरीर में होता रोग प्रतिरोधक क्षमता के रूप में, तो वो नहीं हो पाएगा। तो ऐसी दशा में आप उसको तत्काल जितना जल्दी हो सके उसको जितनी इच्छा हो थोड़ी थोड़ी करके उसको पिलाते रहिए। अब जो बच्चा है, नवजात बच्चा है, उसका आप देखते होंगे जो नाभि होती है वो लटकी रहती है, क्योंकि प्लेसेंटा उसी से जुड़ा होता है, टूट जाता है। तो इसको सबसे पहले हमको एक निर्जमित चाकू ले लेना चाहिए, चाहे ब्लेड ले लेना चाहिए, उसको हम निर्जमीकृत कर लेते हैं। एक धागा ले लीजिए, वो भी निर्जमीकृत होना चाहिए। इसको ऊपर से 2 इंच

0: छोड़ करके खूब टाइट बांध देना चाहिए, और बांधने के बाद उसके नीचे से काट देना चाहिए। अब काटने के बाद हर मेडिकल स्टोर पे टिंक्चर आयोडीन मिलता है, टिंक्चर आयोडीन का पेंट उसको नाभि पे लगा देना चाहिए। ऐसे लगा देने से भविष्य में चल के आप देखते होंगे कि बहुत सारे चिड़िया हैं चाहे कोई जानवर है उसके नाभि को खींच लेता है और वहां पे फोड़ा हो जाता है, जिसको नावेल इल कहते हैं। तो ऐसी बीमारी से बचाने के लिए, जिसको नाभि का फोड़ा कहते हैं, तो बचने के लिए आप इसको काट देना चाहिए जैसा हमने बताया। कभी कभी लोग धागे से नहीं बांध उसे काट देते हैं तो उसमें पूरे शरीर की ब्लीडिंग होने की संभावना रहेगी, तो ऐसी दशा में आप कदापि इस तरह की बातें न करें, धागे से बांध करके ही करें। साथ ही जब बच्चा पीने लायक हो तो उसको आप ये देखिए कि उसके शरीर भार का 1/10 हिस्सा प्रतिदिन उसको दूध मिलना चाहिए, जो भी उसका वजन है उसका 1/10 हिस्सा। तो इस तरह से आप उसको प्रतिदिन पिलाते जाएंगे और आगे चल करके 2 से 3 सप्ताह पे धीरे धीरे दूध की मात्रा को कम करते हैं और इसकी मिल्क या करते हैं वसा निकाल करके छाछ हो, जिसको आप मंठा बोलते हैं, दही का घोल, इस सबको आप पिला सकते हैं रोटी डाल करके। और जब 3-4 महीने का बच्चा हो जाता है तो उसके मुलायम जो घासें होती हैं, हरी घासें होती हैं, इसको 100-200 ग्राम उसको देने का प्रयास करें, क्योंकि 6 महीने तक उसका धीरे धीरे जाते जाते र्यूमन का डेवलप हो जाता है, र्यूमन विकसित हो जाता है, फिर वो चारों का पाचन करने लगेगा। तो इस तरह से आप इसको आहार में बदलाव ले करके चारों पे उसको शिफ्ट करेंगे और दाने की मात्रा भी 100 ग्राम से शुरू करके 200, 300, 400, 500 ग्राम तक दाने इसको, और दाने पचनी होना चाहिए। साथ ही यहाँ की जहां के रख रखाव की बात है तो बच्चों को देखिए बाह्य परजीवी भी काफी प्रभावित करते हैं, तो ऐसी दशा में आपको पशुशाला को काफी सफाई रखना चाहिए, खासतौर से उसके दीवालों को आप चूना और गेरू फिनाइल इसका घोल बना करके उसको पुताई करते रहें, जिससे कि जो किलनियां हैं उनके अंडे बच्चे मक्खियां ये सब उसके पास नहीं आएंगी। और साथ ही छोटे बच्चों में परेशानी आती है, आप उसको व्हाइट स्कॉर बीमारी कहते हैं, तो कभी कभी लोग कहते हैं कि ज्यादा फेनुस पी लेने से, ज्यादा दूध पी लेने से वो बच्चा सफेद दस्त करता है, तो वो एक बीमारी होती है, एक बैक्टीरियल बीमारी होती है जीवाणुओं द्वारा। तो ऐसा नहीं है कि वो दूध पीने से होता है, उसके जो गोबर होते हैं वो काफी सफेद कलर के हो जाते हैं। तो इसमें अगर इसी आपको दिखाई दे लक्षण तो तत्काल अपने निकटवर्ती पशु चिकित्सक से सलाह लेकर के उनको दिखा करके उसकी दवा कराएं, क्योंकि इसकी दवा उपलब्ध है। दवा करने के बाद आपका जो पशु है, गाय का बच्चा है, भैंस का बच्चा है, वो सही हो सकता है। साथ ही जब इसके रोग बीमारियों से बचाव के लिए टीकों की बात आती है, तो टीकों के लिए जब 6 महीने के हो जाते हैं तो आप अपने पशु चिकित्सालय से संपर्क करके उनके टीकाकरण की भी, जैसा जो रिकमेंडेड होगा, जिस तरह के टीके होते हैं, उनकी सलाह से ही वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन में खासतौर से FMD का, उसके साथ ही साथ ब्रुसेलोसिस का टीका जो 7-8 माह पे लग जाता है, तो बस अपने नवजात बच्चों का जिस तरह से टीकाकरण करना है चिकित्सक से सलाह करके उसको उसी समय पे करवाते रहें। साथ ही इसको आप देखते होंगे कि अंतः परजीवी का प्रकोप ज्यादा बच्चों में होता है, तो अंतः परजीवियों में खासतौर से राउंड वर्म इनका ज्यादा प्रकोप होता है। तो पहले तो जब बच्चा पैदा होता है उसके 20 से 21 दिन बाद एक बार कृमिनाशक औषध, खासतौर से एल्बेंडाजोल जो भी मिल जाए, जिस भी कंपनी का आपको मिले उसको 30 ml तक उसको दिया जाता है। फिर इसको देने के बाद से फिर अपने चिकित्सक से सलाह लेकर के, क्योंकि जो कृमिनाशक औषध भी हम देते हैं तो इनको भी बदलते रहने की जरूरत होती है, और जब वो सेफ होती हैं उनके अनुसार तो वही उसको रिकमेंड किया जाता है। तो इसमें जब भी आप कृमिनाशक औषध दें, चाहे वाह परजीवी का कोई दवा लेते हैं, तो आप अपने चिकित्सक से सलाह करके ही लें। तो आशा करते हैं कि इस तरह से यदि आप पशुओं का देखभाल, रख रखाव, प्रबंधन करेंगे तो वो बच्चा भविष्य में चल के आपको एक अच्छा उत्पादक पशु हो सकता है।
1: पशुओं के नवजात बच्चों की देखभाल विषय पे किसान भाई अभी सुन रहे थे।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

0: आर के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिल्का मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। RBI ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेटों का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ

0: साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपने इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
2: भारत के 3 दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzonair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
3: मेट्रो के लिए 60 न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
2: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष JP नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जल टमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का

0: आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
1: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारायकाल में अगले दो दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
2: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने आईपीएल 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति हैं और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति हैं। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही नहीं करता, बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़

0: मीडियम वेव 303.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पे हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4 बज चुके हैं। संपन्न होती है हमारी ये प्रसारण सभा। FM बैंड पर हमारे कार्यक्रम जारी रहेंगे। सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ सायं 5 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: Action!
2: बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। आज सुनिए।

0: मेरे डैडी तो मजदूर हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं। तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते इसमें।
1: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
0: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
1: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी, तो फिर क्या किया आपने?

जिंदगी ने टेरेंस को गले लगाया, टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: शुक्रिया अमरकांत जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: टेरेंस, ये स्वागत मैं सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, हमारे वो तमाम लाखों करोड़ों सुनने वाले कर रहे हैं जो आपके फैन भी हैं। कितने लोग आपके ऐसे लोग दीवाने हैं जिनको डांस का डी भी नहीं मालूम है लेकिन वो टेरेंस के दीवाने हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो श्रोताओं हैं और जो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने क्या किया कि इतना प्यार मुझे मिला है। मैं बहुत शुक्रगुजार अपने अपने आप को फील करवाता हूँ और बहुत मैं कभी कभी ओवरवेल्म हो जाता हूँ कि यार ये कैसे हो गया और क्यों हो रहा है, मैंने कोई ऐसा बड़ा काम किया नहीं कि मैं इस प्यार का हकदार बनूं। सो
1: मैं आपको बताऊँ, ये बात मैं जानता हूँ कि क्यों है आप इसके हकदार। उसका कारण सिर्फ आपका डांस नहीं है, आपकी शख्सियत है, आपका स्वभाव है, आपकी विनम्रता है, आपका प्यार बांटने का सलीका है।
0: शुक्रिया।
1: ये इंसान को बहुत लोकप्रिय भी बनाता है, प्यारा भी बनाता है और जिंदगी में काफी ऊंचाई तक ले जाता है। और अभी तो आपके लिए बहुत से आसमान बाकी हैं, बहुत से आसमान छूने हैं आपको।
0: वो तो जरूर है। और अगर दर्शक और श्रोताओं का अगर प्यार ऐसा मिला तो जरूर बहुत सारे जो मकाम जो मैं अपने लिए बनाए रखा हूं इस उम्र में भी शायद वो मुकम्मल हो जाए।
1: तो चलिए, आपने उम्र की बात की है तो श्रोताओं तक ये बात पहुंचा देते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, और ये पहुंचेगी आपकी जन्म तारीख से।
0: हाँ।
1: जन्म तारीख मैं आपकी जानना चाहूंगा और वो भी इस बात के साथ कि आपका जन्म कब कहाँ हुआ।
0: मेरा जन्म हुआ मुंबई में और मैं आठवां बच्चा हूँ मेरे माँ बाप का। मेरे माँ बाप का नाम है जेवियर और मीडिया लुइस। डैडी मैंगलोर से हैं।

0: ओरिजिनली, लेकिन मुंबई में वो 10 साल की उम्र में आए और काम करने लगे, और मम्मी मुंबई से ही है। तो हम सभी 8 भाई बहन मुंबई में ही पले पड़े हैं। मेरा जन्म हुआ 10 तारीख को, 10 अप्रैल 1975, तो मेरी उम्र उसके हिसाब से आज 20-20 में 45 साल की हो जाती है।
1: तो देखिए साहब, 45 साल के जवान, या यूं कह लीजिए नौजवान युवा डांसर के साथ मैं इस समय बैठा बात कर रहा हूं। तो टेरेंस, आप मुझे ये बताएं कि जो बचपन का ये वक्त था मुंबई में, जब आपका जन्म हुआ, मुंबई में कहां हुआ, कैसे आपका बचपन बीता, और ये डांस का जो एक जुनून आपके अंदर है, ये आपको कब महसूस हुआ कि मेरे अंदर ये चीज पैदा हो रही है?
0: तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। मेरा जन्म हुआ मुंबई में, एक हम रहते थे एक छोटे से बस्ती में, चौल में, हरिनिवास चौल था, पठान चौल भी था, दो दो नाम थे उसके, और बड़ी बसी बस्ती थी। हमारे घर के दरवाजे नहीं हुआ करते थे, सिर्फ पर्दे हुआ करते थे।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो बहुत प्यार मिला, और इट वाज वेरी कॉस्मोपॉलिटन, हिंदूज भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई सिर्फ एक थे नेबर्स, अदरवाइज इट वेरी कॉस्मोपॉलिटन जो ऐसा वाला फील था। किसी के भी घर में आना जाना, टीवी नहीं हुआ करता था तभी, हाँ। सिर्फ रेडियो हुआ करता था
1: उस जमाने में, तो
0: था नहीं। और लोग बोलते भी हैं कि यार आपने इतने इतनी चीजें सही हैं, आप कहां थे और कहां आए, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं उस परिस्थिति में जन्म लिया था मैंने, तो मुझे पता ही नहीं कि इससे अच्छा भी हो सकता है। मुझे माँ बाप का प्यार बहुत बेशुमार मिला, और लोगों का प्यार बहुत जबरदस्त मिला, और यही वजह थी, ये प्यार जो मुझे मिला ये मेरे डांस की वजह से मिला। और जब मुझे वो मिला, वो बेशुमार मिला, मेरे इर्द गिर्द जो नेबर्स थे, या जो मेरे समाज के जो लोग थे, वो मुझे बहुत ही एक ऊंची नजर से देखते, क्योंकि मैं गाता था, एक्टिंग करता था, कॉपी करता था जो भी दिखता था टीवी पे, फिल्मों में, या डांस करता था। तो किसी की भी शादी होती तो मुझे बुला कहते, आजा बुला बुला उसको, बुला उसको बुला, ये नाचेगा हमारे लिए।
1: तो क्यों ना अभी मैं भी कहूँ कि टेरेंस आए, अभी टेरेंस नाचेंगे तो नहीं, लेकिन गाना तो सुना सकते हैं।
0: अरे वो जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ट्रेंड सिंगर नहीं हूँ, लेकिन बस मुझे स्टेज का बहुत बड़ा लगाव हुआ था, क्योंकि मैं 6 साल का था जब मैं अपने पहले स्कूल में मेरी भर्ती हुई थी। नया स्कूल था मेरा, बांद्रा में मेरा स्कूल था, सेंट ट्रीजस हाई स्कूल। तो मैं रहता था अंधेरी में, लेकिन क्योंकि मेरी माँ बांद्रा में रहती थी पहले, ओके, शादी होने के पहले, तो हमें भर्ती किया गया था एक कॉन्वेंट स्कूल में, सेंट ट्रीजस हाई स्कूल। हम 4 भाई वहीं पर पढ़े। तो वो स्कूल में 6 साल की उम्र में मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, और आई थिंक सीनियर केजी में, नॉट इवन फर्स्ट स्टैंडर्ड, 5 साल का था। तो टीचर आई और उन्होंने कहा कि अच्छा बच्चे लोग, कौन हिस्सा लेना चाहेगा सिंगिंग कंपटीशन में? किसी का हाथ नहीं उठा, मेरा हाथ उठा। और मेरे में बचपन से वो ऑलवेज थिंक कि पार्टिसिपेट करना है, सब कुछ करना है, क्योंकि मैं एक खुश एनवायरमेंट में पला पड़ा। बहुत सारा तनाव था, आर्थिक स्थिति बहुत बहुत कठिन थी, डैडी के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन प्यार बहुत था, लोगों का प्यार बहुत था। और कभी कभी बच्चों के लिए उनको कुछ पता नहीं कि कितना क्या अमीर है क्या गरीब है उनके, आई थिंक आई डिडंट रियलाइज दैट, आई वाज जस्ट हैप्पी, और मैं हर एक चीज में पार्टिसिपेट करना चाहता था। फिर दूसरी टीचर आई, बोला कि डांसिंग में कौन पार्टिसिपेट करना चाहता, मेरा हाथ उठ गया। तो ऐसे करते करते मैंने 8 जो भी कॉन्टेस्ट थे, ड्रॉइंग, सिंगिंग, एलिक्यूशन, पार्टिसिपेट कर दिया। बड़ी बहन जो थी वो मेरी देखभाल करती थी, मैंने उनको बता दिया कि मैंने ये कर दिया। उन्होंने बोला अच्छा, लेकिन अभी मैं कैसे सिखाऊं, मुझे तो ये सब आता नहीं है। तो मैंने कहा मैं कुछ भी कर लूंगा, तो मैंने कुछ भी कर लिया जो मुझे आता था, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ शायद कर लिया, तो मुझे पहला नंबर लग गया। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि वो पहली बार मैंने वो कोशिश की और वो सफल हुआ, और फिर जो तालियों की गड़गड़ाहट मैंने सुनी, और जो मुझे पुरस्कार मिले, जब 2 महीने बाद प्रिंसिपल ने सर्टिफिकेट सब साथ में इकट्ठा, एक एनुअल डे होता है, तो सब ही सर्टिफिकेट साथ में मिलते हैं उस दिन पर, तो मेरा नाम बार बार लिया जा रहा था। तो एलिक्यूशन, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सब में मैंने भाग लिया था, मैथमेटिक्स में सब में लिया था। तो वो जो खुशी, वो जो हाई, जो नशा मैंने फील किया, वो मेरे जहन से आज तक उतरा नहीं है। तो मैं मौका ढूंढता हूं कि कब मुझे स्टेज पर कोई बुलाएगा कि मैं अपना फन या जो भी मेरा टैलेंट है मैं दिखाऊंगा, लोग मुझे वाहवाही देंगे। तो शायद उसकी लालच में मैं स्टेज का दीवाना हो गया।
1: अरे इतनी चीजें याद है आपको बचपन हाँ। की, तो वो गाना भी याद होगा जो आपने गाया था उस समय। चलिए गाइए, गाना तो बताइए।
0: तो वो अंग्रेजी गाना था, ओके, बोनी एम।

0: बोनीएम का,
1: हाँ,
0: ओके
1: बोनीएम 1975 में, तो एक गाना था ब्राउन गर्ल इन द रिंग ट्रा ला ला ला ला, सो वो वाला गाना था, उसके लिए मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। फिर हिंदी गाना जो गाया था, जो गाना गाया था मैंने, वो पिक्चर थी एक यू नो हिंदी फिल्म की थी, जो शायद मेरे शादी का ख्याल,
0: सौतन
1: सौतन। तो वो पिक्चर मैंने, वो रेडियो पे चल रहा था 80s में, तो मैंने वो गा दिया, तो वो मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया। तो ऐसे यू नो, फिर अजीब दास्तां है, अजीब दास। मेरी बहनें रेडियो पे सुन के वो पुस्तक में लिखती थी, क्योंकि लिरिक्स सबको चाहिए था, तो वो लिखती थी। तो मेरी बहन की राइटिंग बहुत अच्छी थी, तो मैं वो दोनों, वो हर गाना जो आता था, वो हमारे पास टेप रिकॉर्डर भी नहीं था, सिर्फ रेडियो, तो वो हम 2-3 बार सुनते थे रात, ताकि वो यू नो वो लव्स जो बोले गए हैं वो सही सुने हैं क्या नहीं, तो वो भी गाते थे, हम भी गाते थे, तो हमारा टाइम पास ऐसे ही होता था घर में। तो वही
0: याद भी हो जाते थे,
1: याद हो जाते थे। तो ऐसे बोलते बोलते मैं अजीब दास्तां के लिए मैंने बहुत बार यू नो पुरस्कार बहुत बार मिला है, और वो गाना ऐसा है कि सबको बहुत प्यारा लगता है। तब मेरी आवाज यू नो एक छोटे बालक की तरह था, बहुत ही स्वीट, बहुत ही पतली, एंड इट वाज सूटिंग दैट सॉन्ग। फिर बाकी जाके आगे बहुत अलग अलग गाने गाए, बट कभी ट्रेंड नहीं हुआ था, और डांस का शौक बहुत कभूत चढ़ गया था, और बहुत यू नो वाहवाही मिल रही थी, तो मैं उस लाइन में घुस गया, डांस की लाइन।

0: देखिए दास्तान तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी अजीब है
1: लेकिन मेरी माँ की नजर से बहुत ही अजीब हूँ
0: लेकिन हमारे
1: लिए कुछ तो... भी मैंने कोई भी चीज जिंदगी में जो जो नो जो रेगुलर चीज होती है जो सब बच्चे करते हैं मैंने कभी नहीं किया। जो चीज लोग नहीं कर रहे मुझे वही करना है।
0: लेकिन हमारे लिए अजीब नहीं, हमारे लिए बड़ी दिलचस्प है
1: क्योंकि आप आर्टिस्ट वाले लोग हैं ना।
0: हाँ।
1: आप हमारे जैसे लोग हैं, आप समझते हैं, लेकिन हमारे जो माँ बाप है वो मिडिल क्लास है, सिंपल पढ़ाई करो, जाओ गवर्नमेंट की नौकरी लेके आओ और यू नो सुखी रहो। तो उनके लिए ये सब चीजें अमीरों का शौक है, सिंगिंग डांसिंग। मुझे बहुत मार नहीं पड़ती थी लेकिन मेरी माँ बोलती थी मत कर, चाहे तुम फर्स्ट भी, मुझे नहीं चाहिए ये सब, तुम सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो। और पढ़ाई में भी मैं होशियार था। तो फिर मैंने बोला कि ये क्या बात हुई। तो मैं बहुत झगड़ता था कि नहीं मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा, और मैं आपको लिख के देता हूं कि मैं अपना नंबर जो पहला आया है उससे ज्यादा लेकर आऊंगा। लेकिन आप मुझे रोक नहीं सकती। तो मैं बहुत थोड़ा जिद्दी भी था तो, और रिजल्ट भी लेकर आता था, पढ़ाई में मेरा बहुत बहुत होशियार था। फिर मेरी टीचरों ने मेरी माँ को डांटा एक बार कि आप क्यों ना बोल रही हैं, पढ़ाई में भी अच्छा करता है वो और हमारी स्कूल की शान है ये। तो फिर मेरी माँ चुप हो गई वहां से फिर बोला अगर तू कुछ भी हुआ फिर मेरे पर नहीं आना चाहिए। सर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
0: बाकी के भाई बहन कोई शौक नहीं था डांस या म्यूजिक का?
1: आई थिंक शायद होता भी तो आई थिंक वो इतने यू नो आई थिंक उनमें शायद कॉन्फिडेंस नहीं था या मुझमें ना बचपन से लेके क्योंकि मैं वो जीत गया तो वो नशा चढ़ गया तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। फिर तो आपकी वजह से वो आगे बढ़ गया। तो मैं कहूंगा कि मैं थोड़ा लकी हो गया। वो एक तुक्का ना एक लॉटरी पहले ही लग गई तो उसकी वजह से वो ना एक कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है जब अपने आप पर विश्वास होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। चाहे आप लड़खड़ाएं और चाहे आप दूसरी बार हार भी जाए, कई बार हारा भी उसके बाद, लेकिन वो एक फील होता कि हाँ मैंने ये कर लिया है। एक बार आपने स्टेज पर चढ़ गया ना आप तो वो डर जो होता है ना
0: वो निकल जाता है।
1: तो मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा, लेकिन जो डर होता है स्टेज पर चढ़कर बात करना या एलिक्यूशन देना या डिबेट करना है, तो ये चीजें बहुत लोगों को डर की वजह से लोग आते नहीं है सामने। बहुत सारे अरमान है लेकिन वो लोगों से डरते हैं। वो डर मेरा चला गया तो वो स्टेज पर जो डर होता है ऊपर चढ़ के लोगों को देखकर वो अपने आप को एकदम जो भी है आपके अंदर जो टैलेंट जो फन है वो बताना, कभी कभी लोगों को, लोगों में बहुत कुछ टैलेंट है लेकिन वो डर जाते हैं लोगों को देखकर कि उनके विचार क्या होंगे, वो जजमेंट क्या होगा, अगर वो सेल्फ जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो बहुत होता है। तो मैं शायद उसमें बच गया तो

0: मध्यम वर्ग के लोग थे। तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक बड़ा करना, उसके बाद जो करना है करो, मेरी जिम्मेदारी निकल जाती है। मेरे डैडी बहुत क्लियर थे क्योंकि उनके डैडी ने उनको आई थिंक 10 साल की उम्र में बोला था कि अब मेरा काम हो गया तो मेरे डैडी ने 5 साल और बढ़ा दिए और बोले कि 15 साल 10वीं तक पढ़ाऊंगा, उसके बाद पढ़ना है नहीं पढ़ना है आपकी मर्जी, मैं पैसे नहीं दे सकता तुम्हारे कॉलेज की फीस के लिए कुछ भी लिए, अब अपना अपना करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे उन सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया और कहीं ना कहीं बीच में मुझे डांस का, क्योंकि मेरा डांस का लगाव बहुत ज्यादा था, लोग जानते थे कि मैं डांस करता हूं, तो मेरे एक दोस्त ने उसकी 2-3 बच्चे थे जो ट्यूशन देती थी उनको डांस सीखना था, तो उनको मैंने डांस सिखाना शुरू किया, बहुत पैसे मिलने लगे और वो पैसे मेरे कॉलेज फीस को कॉलेज फीस और सभी जो चाहिए जिंदगी को गुजारने के लिए उससे ज्यादा मैंने बहुत कुछ पाया, तो मेरी लॉटरी लग गई।
1: यानी ये उस समय आपकी उम्र कुछ 16-17 साल
0: 17 साल की थी,
1: उस उम्र से आप डांस सिखा रहे हैं
0: और 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था, तो 10वीं में ही मैंने मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन का देना चालू कर दिया।
1: वाह वाह वाह।
0: तो हमारे घर में हमारी बहनें थी, मेरी 4 बहनें थी, मेरे 3 भाई थे, वो भी ट्यूशन दिया करते थे, तो जब भी उनका उनके पास टाइम नहीं होता था तो उन लोग ने मुझे बच्चे जो उनका एक्सेस थे उनके आप ले लो, ये आप पढ़ा दो और ये आपकी जो भी फीस है ये आपके लिए।
1: अब जैसे मैं कह रहा था आपकी दास्तान हाँ, के बारे में दिलचस्प हाँ, मुझे यहाँ कहना पड़ेगा कि बड़ी प्रेरक दास्तान है।
0: अच्छा।
1: इससे जो प्रेरणा हमारे सुनने वालों को मिलेगी कि जीवन संघर्ष का नाम है और संघर्ष कब शुरू होता है और कब खत्म होता है ये ना आप जानते हैं ना कोई और जानता है, लेकिन उस संघर्ष का जो फल मिलता है उसको कहते हैं टेरेंस लुईस।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: तो टेरेंस, मैं यहाँ ये जरूर जानना चाहूंगा कि ये जो दौर था आपका, जो संघर्ष का जो दौर था, इस समय आप चलो आप डांस सिखा रहे थे लेकिन उस समय अपने आप को भी तैयार कर रहे थे, आप सोचा था आपने कि मुझे क्या करना है?
0: एग्जैक्टली क्योंकि देखो मैं पढ़ाई में होशियार था, तो मैंने साइंस लिया था, मुझे डॉक्टर बनना था, तो मेरा 88% निकल गया था, फिर मैं 3 मार्क्स की वजह से मुझे मेडिकल कॉलेज में भर्ती नहीं मिली, मुझे डोनेशन देना पड़ा था और मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, तो फिर मैंने माइक्रोबायो और बायोकेमिस्ट्री किया ग्रेजुएशन के लिए, फिर वहां से छोड़ के मैं होटल मैनेजमेंट किया और मेरी डांस की ट्यूशन मैं देता गया क्योंकि पैसे अच्छे मिल रहे थे। जब मैंने सब फिनिश कर दिया, मेरा ग्रेजुएशन फिनिश कर दिया और फिर मैंने होटल मैनेजमेंट भी फिनिश किया 3 साल का और मुझे नौकरी भी मिल गई थी कैंपस इंटरव्यू से, लेकिन तब तक मेरा इतना बड़ा मतलब मैं घर घर जाके इतना कमा रहा था कि जो पैसे मिल रहे थे कैंपस इंटरव्यूज के द्वारा, मतलब जो नौकरी लगने के बाद जो पैसे मिलने वाले थे उससे मुझे 10 गुना और पैसे ऑलरेडी मिल रहे थे घर घर जाके सिखाने।
1: ओह।
0: मैंने अपने परिवार वालों को बोला कि मैं ये काम नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इसमें और अच्छा मेहनत करूं तो मैं शायद सफल हो जाऊंगा। मेरे माँ बाप को डर था कि ये जो नौकरी है घर घर जाके, ये इसमें कोई मैं हम लोग क्या बोलेंगे समाज को, तू इतना पढ़ा लिखा है, तू इतना होशियार बच्चा था, तू डॉक्टर बनने वाला था और फिर तू माइक्रोबायो बायोस्ट्रीमिया है, फिर तुमने होटल मैनेजमेंट किया है, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेके तुम अभी डांसर बन रहे हो, तो वो उनके लिए तौहीन की बात थी क्योंकि हमारे परिवार में डांस के एक लग्जरी है, ये ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते हैं इसमें, तो वो मेरे पेरेंट्स का मानना था, मेरे पिता और माता का, और मेरे भाई बहन भी जो साथ हैं वो सभी एक मतलब इधर टीचर है या फार्मेसी में है या इंजीनियर है मेरे भाई या बैंकर है, तो वो सभी एक बहुत ही स्ट्रीमलाइंड जॉब में है, मैं थोड़ा हटके सोच रहा हूं, तो उन्होंने सब ने ना कर दी, मैंने बोला कि नहीं आपकी मर्जी नहीं चलेगी, मुझे जो करना है करना है, वैसे भी मैं आपसे ज्यादा कमा रहा हूं। तो मैंने ठान लिया है कि मैं ये नौकरी नहीं लूंगा, तो सब लोग मेरे भाई बहन थे, तू गिरेगा, तू समझ नहीं पा रहा है कि ये फिक्स नहीं है, आज तुम्हारे जो लोग तुमको काम दे रहे हैं घर घर में वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, बोलेंगे अभी खत्म तो तुम क्या करोगे, ऐसे क्यों दूसरे आएंगे, ऐसे अगर तुम्हारी बॉडी को इंजर हो गया तो तुम क्या करोगे, ये सब बहुत ही सेंसिबल सवाल थे,
1: हर तरह से तोड़ने की कोशिश थी
0: और मेरे सर के ऊपर मंडरा रहे थे 10 लोग कि नहीं ये मत करना, ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, क्योंकि वो सब बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, उनके पास एक फिक्स्ड करियर है।
1: ये एक बात होती है टेरेंस, मैं बताऊं, मिडिल क्लास आदमी बड़ा डरपोक होता है।
0: करेक्ट।
1: वो हर चीज से डरता है।
0: हाँ।
1: क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहता, उसके पास जो रहता है वो खोने के लिए।
0: हाँ।
1: वो इतना होता है कि अगर वो खो गया तो वो सर्वाइवल का सवाल खड़ा होता है।
0: अगर आप कलाकार फैमिली में बॉर्न हुए हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन लोग सपोर्ट मिलता है। लेकिन हमारे, मेरे डैडी तो मजदूर हैं, उनको सिर्फ, वो पढ़े लिखे भी नहीं है, तो उनके लिए सिर्फ ये पढ़ा

0: टेरेंस, अब थोड़ी सी हमें एक लीप लेनी पड़ेगी, एक थोड़ी सी छलांग लेनी पड़ेगी और हम उस जगह पे पहुंचना चाहते हैं कि जहां पर आपने ये तय कर लिया कि अब मुझे डांस को ही अपना करियर बनाना है। जब आपने ये तय किया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था और आपकी अपनी क्या कोशिश थी इस फील्ड में जाने के लिए?
1: हम

0: कह रहा मेरा बच्चा आगे जाए वो ही खुशी है।
1: ये बहुत बड़ी बात है ना। और देखिए हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा उनका नाम रोशन करे, आगे बढ़े। हर बाप की सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि उसका बेटा उससे आगे जाए। बस आपने दो कदम भी आगे बढ़ा दिए तो आपके पिताजी तो खुश हो गए।
0: खुश हो गए
1: तो खुशी मिल गई।
0: हाँ लेकिन वही चिंता थी कि अरे तू तो डॉक्टर बनने वाला था, फिर तूने माइक्रोबायो बायोलॉजिस्ट में किया, फिर तूने होटल मैनेजमेंट किया, तू फर्स्ट भी आया यहाँ पर, तो फायदा क्या इतना पढ़ के? तू इतना पढ़ता है, तू फर्स्ट लेके आता है, नौकरी भी तुझे हाथ में मिल गई, लेकिन तू ये नहीं करना चाहता है, ये क्या बात हुई? तो मेरे डैडी को समझ में आता कि मैं ऐसा कैसा इंसान हूँ। और
1: फाइनली फिर आपके मदर फादर खुश हुए कि नहीं?
0: नहीं, वो बाद में बहुत सालों के बाद खुश हुए। बहुत सालों के बाद जब उन्होंने देखा कि वो भी, मतलब 7-8 साल बहुत, जब मैं फिर मैं जब एक्चुअली मैंने इंस्टीट्यूट खोला, फिर मैंने बोला कि मैं घर घर नहीं जाऊंगा, मैं अपना खुद का क्लास शुरू करूंगा, लोगों को मेरे पास आना चाहिए, मैं क्यों जाऊं घर घर? तो वो भी था ना कि अगर मुझे अपने आप का एक नाम बनाना है तो मैं घर घर नहीं जाऊंगा, लोग मेरे पास आना चाहिए। तो मैंने एक स्टूडियो लिया, पैसे खर्च किए, जो भी इकट्ठा किए थे, पूरा मेरी पूरी जवानी जो मुझे पता नहीं कहाँ गई, मैंने दोस्तों के साथ कभी वक्त ही नहीं बिठाया, मैं सिर्फ काम करता गया और जो भी पैसा है अपने करियर में लगा दिया। और वो फिर ठप हो गया क्योंकि लोग आए नहीं, क्योंकि मैंने ये सोचा ही नहीं था कि लोगों को, अगर मैं किसी के घर पे जा रहा हूं तो वो उनकी सहूलियत होती है ना कि मैं उनके घर पे आ रहा हूं, तो उनके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है।
1: एक और बात होती है टेरेंस, कलाकार जो होता है वो कलाकार होता है, बिजनेसमैन नहीं होता।
0: नहीं होता। तो वो अकल बाद में फिर जो जमीन पर उतरा, मैं उड़ रहा था कि मेरा ऐसा होगा। मैं सच में ना, जो मैं 21-22 साल का था, मैं मेरे सपने, हाँ मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये होगा, फिर मैं बड़ा शो करूंगा, फिर लोग मेरे पास आएंगे, देखें कि मैंने कितना अच्छा काम किया है। और तो ये बड़े बड़े मेरे ख्याली पुलाव चलते रहते थे मेरे दिमाग में। फिर मेरी एक बड़ी फिल्म आएगी, लोग मेरे पास आएंगे और मेरी फिल्म करो, तो मेरा दिमाग सपनों में रहता था।

0: अच्छा टेरेस, आप मुझे ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि मैंने जवानी में पूरा अपना इस तरह से वक्त निकाल दिया, हाँ। रिलैक्स करने के लिए क्या करते थे? रेडियो पे जो गाने बचपन में सुना करते थे, वो गाने कब तक आपका पीछा करते रहे? मैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी भी वो गाने जरूर होंगे कहीं ना कहीं आपके जहन में
1: जरूर,
0: लेकिन जब भी रिलैक्स करने का मूड होता रहा होगा तो किस तरह के गाने सुना करते थे? गानों की जो अगर आपसे फेहरिस्त पूछी जाए तो किस तरह के गाने होते थे? किस मूड में किस तरह का गाना आप सुना करते थे? जहां अभी मान लीजिए कि घर में बैठे हैं और माँ और पिताजी से बहस हुई है कि नहीं नहीं तुम्हें ये नहीं करना है, वो नहीं करना, तुम हम इतना पढ़े लिखे हो, और उसके बाद अल्टीमेटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज होके या थोड़ी सी उदासी में घर से निकले, तो कहीं कोई गाना पीछा करता था विविध भारती?
1: बहुत सारे गाने थे सर, क्योंकि मैं ट्रेन से ट्रैवल करता था,
0: लोकल ट्रेन
1: और मुझे, सॉरी ये कहना नहीं चाहिए रेडियो पे, लेकिन मुझे
0: हैंड हेल्ड पकड़ के
1: मुझे गर्मी बहुत जल्दी होती है, तो मुझे हवा चाहिए, तो वो हवा यू नो, और मेरे बाल लंबे हुआ करते थे, तो मुझे बहुत मजा आता था कि मैं एक हाथ
0: पकड़,
1: कई बार मैं सच कह रहा हूँ कि कई बार पता नहीं किसने मुझे बचाया है, फिसलते फिसलते मैं बचा हूँ। तो ये मेरे 5 साल ऐसे ही गवाए हैं, और मैं उसके बाद भी ट्रेन में ही ट्रैवल करता था क्योंकि वो फटाफट हुआ करता था।
0: दोस्तों ये जो टेरेंस जो कुछ कह रहे हैं ये सिर्फ सुनिए, इसे सिर्फ सुनना है और दूसरे कान से निकाल देना है। इस पर अमल बिल्कुल नहीं करना है आपको, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। मुंबई में हर दिन कई कई बच्चों की जान इससे जाती है, कई अपने जीवन में अपाहिज हो जाते हैं, तो इसको सिर्फ सुनिए और कान दूसरे कान से निकाल दीजिए। अब आगे बढ़ो।
1: नहीं, सही कहा आपने। तो क्या है कि मैं गाने सुनता था और मेरा जरिया था कि जब भी मैं उदास या जब भी मैं अपने आप को खुश करना चाहता था, या मैं जनरली मैं उदास नहीं रहता हूँ, मैं ऑलवेज हसमुख रह करता था, मैं वो गाने सुनता था या वो गाने गाता था, सुनता भी नहीं था गाता था, जो मेरे दिल को हल्का करे। लाइक मैं बताऊं कि एक गाना है देवानंद सर का, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया और फिक्र को धुए में उड़ा, ये ऐसा गाना मुझे दिल के बहुत करीब है। मैं

0: ये गीत तो हमने सुन लिया।
1: हाँ,
0: जिंदगी के जो कश्मकश रहती हैं उनको किस तरह से आपने दूर किया। मैं जानता हूँ सिगरेट विगरेट तो आप नहीं पीते हैं और पीना भी नहीं चाहिए किसी तरह के नशे से, बिल्कुल अपने आप को बचा के रखना चाहिए।
1: नहीं, ऑल्सो अगर आपने लाइफ का नशा पिया है ना, और जो लाइफ में मजा है और जो जिज्ञासा में मजा है, लाइफ को खोजने में मजा है, वो कभी आपने अगर चख लिया तो सब नशे फीके पड़ जाते हैं।
0: और फिर आप तो पहले ही से वो स्टेज वाले नशे में धुत थे, आज भी है।
1: तो ऐसा मैं ये भी कहूंगा कि मैंने 35 की उम्र में मैंने बिना शराब की बूंद चख ली। फिर मैंने लोग सिगरेट पीते थे, टिकटिक क्या है, तब तक मुझे कोई थे ही नहीं, मतलब मन पूरा मेरा ध्यान डांस में था। और देखा क्या इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं महसूस पड़ रहा है, लेकिन कि जो नशा लाइफ में है और जीने में है उससे बहुत कम है, तो कभी वो लत या लगाम लगाई नहीं।

0: करने लगा दिल।
1: अच्छा टेरेस, अब हम उस पर आते हैं जब आपका जो काम था वो टोटली कमर्शियल हो गया, अदर देन इंस्टीट्यूट डांसिंग क्लासेस के अलावा।
2: हाँ।
1: फिल्मों में कहीं ना कहीं अंदर आपकी इच्छा तो रही होगी कि मैं भी बड़े पर्दे पे नजर आऊं, मैं भी डांस करूं। अब अगर मैं सच्ची बात करूं, ईमानदारी की बात करूं, तो आप चेहरा मोहरा फिजिक हर तरह से एक अच्छा खासा हीरो मटेरियल आप रहे हैं।
2: हाँ।
1: आज भी हैं।
2: शुक्रिया।
1: है ना, तो ऐसा नहीं सोचा आपने कभी कि मैं हीरो ट्राई करूं?
2: देखिए आज के तारीख में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बच्चों को, क्या कहाँ जाना है, कास्टिंग कहाँ होती है। मेरे जमाने में मुझे कोई समझ नहीं थी और कोई यू नो गॉडफादर नहीं है या कोई समझाने वाला नहीं है कि अच्छा ऐसा ऐसा करो। तो यू नो कई हद तक मैं यू नो सोचा रहा कि ये शायद मुझे कौन लेगा, मुझे कौन काम देगा।
1: लेकिन आप चाहते थे हीरो बनना?
2: हीरो नहीं, मुझे थिएटर का बहुत शौक था।
1: अच्छा।
2: और मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था, लेकिन और कुछ म्यूजिक वीडियोस भी मिले। जैसे शान का एक गाना रीमिक्स, तभी रीमिक्स का गाना बहुत चलता था। शान ने गाया था, माना जनाब ने पुकारा नहीं, उन्होंने एक गाना रीमिक्स किया था।
1: हाँ।
2: उसके मेन किरदार जो मेन मॉडल जो मॉडलिंग
1: हाँ।
2: जो मेन कैरेक्टर है वो मैं प्ले कर रहा था। तो ऐसे बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस मैंने किए बड़े बड़े यू नो जाने माने डायरेक्टर के साथ, लेकिन कभी वो ब्रेक कैसे मिलना चाहिए, किसके साथ बात करना चाहिए, कहाँ जाऊं, वो मुझे समझ नहीं थी। और भागदौड़ थी कि पैसे जमा करने हैं और अपनी परिस्थिति आर्थिक स्थिति जो है उसको कैसे मैं यू नो अच्छा बनाऊं, वो इसी में लगा पड़ा रहता था। और यू नो ऑलवेज अपने आप को प्रूव करना था कि अगर मैं इसमें ध्यान नहीं दूंगा तो कोई और अच्छा करके जाएगा और ये जो हाथ में है वो भी चला जाएगा। तो कभी कोई सपोर्ट ना कोई बनाने वाला कि अच्छा ठीक है यू नो तू इसमें अभी थोड़ा ट्राई कर ले, कोई था नहीं। तो कोई नाराजगी भी नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई गिले नहीं है, जो था सही था, अगर होना था तो हो जाता। अब जाके मैं थोड़े मैं समझता हूँ कि मेरी स्थिति जो है अच्छी है, तो अब जाके मैं बहुत सारे ऐसे काम कर रहा हूँ और जो ऐसे काम मिल रहे हैं जो एक्टिंग के यू नो माध्यम में है, और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं मुझे एक जरिया मिल रहा है फिर से उस उमंग को जीने का। लेकिन उस वक्त में मुझे कोई दिशा दिखाने वाला नहीं था और ना ही मेरे जहन में ये था कि मैं बन जाऊंगा। मुझे लगा कि यार जो फैमिलीज आती थी ट्रेडिशनल फैमिलीज आती थी उन्हीं के बच्चे सपूत जो है वो आगे बढ़ते थे, तो वो कभी वो जो अरमा भी था वो वहीं के बगे तो मैंने बोला कि ये शायद इससे ज्यादा नहीं होगा, तो मैंने अपने आप को सीमित किया। किसी की गलती नहीं है। मैंने
1: फिर आपको एक कोरियोग्राफर की हैसियत से काम कैसे मिला? क्या आपने किसी को असिस्ट किया? बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स के नाम रहे हैं।
2: तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैंने कभी किसी को असिस्ट नहीं किया क्योंकि 17 साल की उम्र में मैंने डांस सिखाना शुरू कर दिया, और जब आप डांस सिखाना शुरू करते हैं और फिर 18 या 19 साल में मैंने कॉलेज के फंक्शंस में कोरियोग्राफ भी करने लगा, तो मेरा नाम लोगों में यू नो सुनने में आया था कि हाँ ये कोरियोग्राफ करता है, यू नो स्कूल कॉलेज फंक्शन सब यू नो दूसरे कॉलेजेस को भी कोरियोग्राफ करता है। तो जो दूसरे कोरियोग्राफर्स थे वो मुखर जाते थे मुझे यूज करने के लिए, ये तो कोरियोग्राफर है ये तो अपना काम देख के निकल जाएगा कहीं, तो वो डर जाते थे। मैं अगर चाहूं भी तो उनके साथ काम करूं, बोलते नहीं क्योंकि तुम तो कोरियोग्राफर हो तुम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डर होता है ना कि कहीं वो टेरिटोरियल हो जाता है। तो फिर मैं

0: कभी गया नहीं किसी के साथ, किसी के अंडर काम नहीं किया। और फिल्म भी जो मुझे मिली, पहली फिल्म जो थी, छोटा सा कोरियोग्राफी का सेक्शन था लगान में, वॉल्स का सेक्शन था। वो भी मेरे नसीब में ऐसा हुआ कि रीना दत्ता, जो आमिर की पहली बीवी थी, वो प्रोड्यूसर थी उस फिल्म की। तो उनको चाहिए था एक ऐसा कोरियोग्राफर जो वॉल्स, जो टेक्निकल वॉल्स है, वो कोरियोग्राफ करके दिखाए।
1: वो जो अंग्रेज लड़की डांस
0: अंग्रेज
1: करती
0: लड़की
1: है
0: नाचती है,
1: वो वाला
0: माय
1: डांस
0: हार्ट इज, हाँ
1: सेक्शन।
0: वो वाला। हाँ, तो मैं रीना को बोला कि वो मेरी स्टूडेंट रहती थी, क्योंकि वो आती थी सीखने के लिए। मैं अभी फिटनेस में भी चला गया था, कि डांस और फिटनेस का दौर चल रहा था, तो मैंने अपना हाथ फिटनेस में भी डाल दिया और मैं औरतों को वेट लॉस करवाता था।
1: उस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी
0: हाँ,
1: पहले इसको।
0: इसको तो रीना मेरी वेट लॉस वाली स्टूडेंट थी। वो मेरे पास आई थी वेट लॉस करने के लिए। मैं उसका पर्सनल ट्रेनर बना और उन्हें मुझे ये प्रस्ताव पेश किया कि मैं चाहती हूँ कि आप ये गाना कोरियोग्राफ करें, ये जो थोड़ा सेक्शन है, और बस वॉल्स करना है, आपको तो आता ही होगा, आप तो ईसाई धर्म के हो। तो मैंने कहा कि ईसाई धर्म का ये मतलब नहीं कि मुझे वॉल्स आता हो। ये तो तुम करते हो तुम्हारे पार्टीज में से। मैं से, नहीं मुझे नहीं आता ये सब, ये तो एक अलग स्टाइल है। नहीं, ये तुम पाना चाहिए, क्योंकि हमारे फिल्मी कोरियोग्राफर्स नहीं कर पाएंगे, और जिस तरीके से तुम चलते हो, जो तुम्हारी ट्रेनिंग है, लगता है कि तुम कर पाओगे ऐसे, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। फिर एक बार तुम आमिर से मिल लो। मैं आमिर से मिला, आशुतोष जी से भी मिला, और उन्होंने मुझे और भी डरा दिया कि उन्होंने कि नहीं, वॉल्स तो हमें चाहिए, लेकिन हमें ना वो 18th सेंचुरी, क्योंकि हमारी फिल्म 18वीं सदी में कहानी
1: कहानी है।
0: है, तो 18वीं सदी की जो वॉल्स हुआ करती थी, वियनीज वॉल्स, वो हमें चाहिए।
1: बताइए।
0: तो मैं तो वहीं पर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। पहले तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं कि मैं कैसे शूट करते हैं, मुझे मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है।
1: मैं यही जानना चाह रहा था आपसे, माफ
0: हाँ
1: कीजिए बीच में रोक रहा हूं, कि आप कोरियोग्राफी करते थे
0: हाँ लेकिन
1: स्कूल्स
0: स्टेज,
1: में
0: हाँ
1: और
0: फिल्मों के लिए
1: कॉलेजेस
0: नहीं,
1: में, लेकिन फिल्मी कोरियोग्राफी अलग होती है,
0: अलग
1: उसके
0: होती है,
1: नुएंसेस अलग होते
0: एकदम
1: हैं,
0: अलग सर,
1: उसकी ट्रिक्स अलग होती हैं, वो
0: एब्सोल्युटली
1: तो आप जानते नहीं थे। फिर
0: एब्सोल्युटली नहीं।
1: आपने इसमें कैसे अपने आप को मैनेज किया, ये सवाल पे मैं आने वाला था, आप
0: हाँ
1: खुद ही आ गए, तो आप
0: हाँ
1: दोनों चीजों को जोड़ के
0: साथ में
1: बताइएगा।
0: जरूर। तो फिर मैंने मेरा एक उसूल है कि जो चीज आपको नहीं पता वो सीधा सामने बोल दो, सच बोलो, क्योंकि सच बोलोगे तो सब कुछ ना कुछ हल मिलेगा। तो मैंने सीधा रीना को बता दिया कि मुझे कुछ नहीं आता, और ना ही मुझे फिल्म, मैंने कभी फिल्म कोरियोग्राफ किया है। तो मैंने रीना को रूम में बता दिया कि ऐसा ऐसा है। रीना ने मुझे फिर से रूम में बैठा दिया आमिर और आशुतोष के साथ, और उन्होंने बोला कि देखो इसको कुछ भी नहीं आता, आप लोगों को हेल्प करना पड़ेगा, करेंगे। तो आशुतोष ने बोला क्या है अब बताओ। आशुतोष सर वॉज सो नाइस टू मी, ही सेज डरने की बात नहीं है, तुम बहुत डरे हुए हो, अब डरो मत। इट वॉज सो स्वीट, क्योंकि मैं बहुत, आई थिंक वॉज ओनली 24 ईयर्स। मैं नहीं करना, मैं बोल रहा मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना है। सर क्यों डरे हो, आपको आता है, मैं सीख लूंगा, लेकिन सर मुझे मुझे पता ही नहीं फिल्मों में कैसे शूट किया जाता है ऐसे। वो हमारी जिम्मेदारी, और हमारे पास अनिल जी है, अनिल मेहता जी है, वो कैमरा मैन है, सबसे सीनियर्स, हम संभाल लेंगे, आप हमें कोरियोग्राफी और डांस दिखाओ, कैसे इसको शूट करना है वो हमारी जिम्मेदारी। अरे ठीक है। आमिर ने भी बोला कि आप डरो मत, आप करो, यू बी फाइन। तो फिर मैंने वो स्टाइल सीखा। मैं एक सलोमी रॉय कपूर की एक मोहतरमा थी, जो सिद्धार्थ रॉय कपूर की माँ है।
1: ओह
0: हाँ, तो वो सिर्फ वो जानती थी वो पर्टिकुलर स्टाइल। तो मैं उनके घर गया, नेपिन सी रोड का घर था मलबा हिल में, मैं गया, मैं उनको बोला कि मुझे सीखना है, और उन्होंने ठीक है मैं सिखाऊंगी। तो मैंने भर्ती किया अपने आप को, सीखा, फिर मैंने वही चीज कोरियोग्राफी में डाली। गाना ए आर रहमान का गाना था, वो मैंने लिया, कोरियोग्राफ किया, फिर बुझ गया। वहां पे उन्होंने मुझे अनिल मेहता सर के साथ ही कमरे में बिठा दिया, और अनिल मेहता को मैंने साफ साफ कहा, सर मुझे कुछ नहीं आता कैमरा के बारे में, मैं क्या करूं, मैं क्या करूंगा सेट पे, मैं क्या, मुझे एक्शन भी बोलना नहीं आता कि कब एक्शन बोलूं कब नहीं, कब नगाड़े को बोलूं कि रोल साउंड, ये मैंने सुना है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। सिंह कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। फिर उन्होंने मुझे 2 दिन के बाद एक बुक दिया, इट्स कॉल्ड द 5 C's ऑफ कैमरा। अगर कोई भी डांस के दीवाने हैं या कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये एक्चुअली कोरियोग्राफी के बारे में नहीं बताता, लेकिन कैमरा के बारे में बताता है, और ये क्या बोलते हैं ना, ग्रंथ है। अगर आपको कैमरा के बारे में सीखना है, दिस इज द बुक फॉर टू गो फॉर द 5 C's ऑफ कैमरा। तो अभी मुझे पढ़ाई लिखने में बहुत शौक है, तो मैं वो बुक को रातों रात खा गया सब कुछ, और मैंने नोट्स लिख दिए कि जो मुझे समझ में नहीं आया मैंने नोट्स कर दिए। मैंने अनिमिता सर को बता दिया कि ये मैं समझ गया, ये नहीं समझा, आप मुझे बताइए, ऐसे आप 2 दिन मेरे साथ आइए और देखिए क्या हो रहा है। मैंने देखा, समझ गया, और मैं बहुत फटाफट समझ जाता हूँ। तो वो मेरी मतलब मैं समझता हूँ कि मैं अगर मुझे कोई दिखाया तो मैं फटाफट समझ जाता हूँ। तो मैं सेट पे रह के मैं सीख गया, और फिर मेरी 3rd दिन मेरी शूट लग गई, और मैं बहुत नर्वस था क्योंकि पहली बार मैं

0: तो और
1: बड़े
0: इतनी बड़ी
1: कलाकार को
0: कला, बड़ी फिल्म थी,
1: हाँ
0: बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म थी आमिर
1: हाँ।
0: की और आशुतोष की भी, और फिर हिस्ट्री भी बनी।
1: तब हमें नहीं पता था कि ये हिस्ट्री बनने वाली है, तब हमें लगा कि अच्छा नॉर्मल फिल्म
0: हाँ।
1: फिल्म बन रही है।
0: लेकिन उसके बाद
1: हाँ।
0: जब वो फिल्म रिलीज हुई होगी
1: हाँ।
0: और जब उससे टेरेंस का नाम जुड़ा
1: हाँ।
0: तो एक खुशी जो आपको मिलनी चाहिए वो तो खैर जाहिर सी बात है, उसका तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कमर्शियली आपको फिर उससे कोई फायदे हुए होंगे?
1: एक्चुअली मैं कहूंगा कि मेरा बहुत, मैंने कुछ उस फिल्म में बहुत छोटा काम किया सर, लेकिन बहुत इज्जत मिली। तो ये भी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि लोग मेरा नाम जोड़ने लगे बड़े बड़े हस्तियों से, जैसे सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया था, राजू खान ने कोरियोग्राफ किया था, वैभवी मर्चेंट ने, उनका बहुत ज्यादा काम था सर, मेरा बहुत छोटा, लेकिन कोरियोग्राफर के नाम में मेरा भी नाम जोड़ा गया
0: वो
1: था।
0: जाहिर सी बात है ना।
1: लेकिन एक्चुअली बोलूं वो बहुत दिग्गज कोरियोग्राफर्स है, मेरी कोई औकात नहीं है उनके सामने, मैं तो अभी अभी पैदा भी नहीं हुआ वैसा वाला कोरियोग्राफर हूं, लेकिन शायद कोरियोग्राफर्स के नाम साथ में जुड़ गए थे तो वो लोगों के नजर में अरे हाँ ये बड़े लोगों के साथ में जुड़ गया। ये मेरी खुशनसीबी थी, लेकिन ये सत्य नहीं है, और ये मैं इसका खुलासा करना चाहता हूं कि ये मेरा सत्य है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया लगान में, कोई बड़ा गाना नहीं किया, छोटा सा एक पोर्शन था वही किया।

नमस्कार, हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडिया वेव 330.3 मीटर यानी 900 किलोहर्ट्ज़ एवं FM बैंड 110.1 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 5 बज रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सायंकालीन सभा। पहले समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की गई। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कोई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी विशिष्टता बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका

0: जी ने करा है।
1: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने कहा कि हर घर और हर खेत को ऊर्जा का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नवन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे। वे ब्यास नदी में अपने एक रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 85 ओवर में 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। KL राहुल 100 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी स्थिति बनी रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी गोरखपुर है। आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं के उनके कई श्रम यह वाणी।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है। मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1 लाख दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सभी का युवाओं के कार्यक्रम युववाणी में। और आज हैं आप शिवलता के साथ। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस सुविचार के साथ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। दोस्तों, हमें समय की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि समय एक बार चला जाता है तो फिर वापस लौट कर नहीं आता, और समय बीत जाने के बाद बस पछतावा ही हमारे हाथ में रह जाता है। दोस्तों, डिजिटल साक्षरता आज के आधुनिक युग की एक अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है, जिसके बिना व्यक्ति का सर्वांगीण विकास और समाज की मुख्यधारा से जुड़ना लगभग असंभव सा है। वर्तमान समय में जिस प्रकार पढ़ना लिखना जानना पारंपरिक रूप से ज़रूरी है, उसी तरह कंप्यूटर, स्मार्टफोन और इंटरनेट जैसे डिजिटल संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना भी उतना ही आवश्यक है। आज का युग सूचना प्रौद्योगिकी और विज्ञान का युग है। हमारे दैनिक जीवन की छोटी से छोटी गतिविधियों से लेकर बड़े से बड़े सरकारी या निजी काम तक सब कुछ ऑनलाइन और डिजिटल हो चुका है। ऐसी स्थिति में केवल अक्षरों का ज्ञान होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि डिजिटल उपकरण और इंटरनेट की सही समझ के साथ साथ इसका उपयोग करना भी आना चाहिए। इसी क्षमता को डिजिटल लिटरेसी यानी डिजिटल साक्षरता कहते हैं। डिजिटल लिटरेसी का मतलब केवल मोबाइल पर वीडियो देखना या गेम खेलना नहीं है, बल्कि इसका मतलब होता है इंटरनेट और उपकरणों की मदद से सही जानकारी को खोजना और उसका मूल्यांकन करना, सरकारी और बैंकिंग सेवाओं का ऑनलाइन सुरक्षित लाभ उठाना, और डिजिटल माध्यमों से संवाद, पढ़ाई और व्यापार को जिम्मेदारी से संचालित करना। दोस्तों, डिजिटल साक्षरता इसके लिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे शिक्षा में सुधार हो सकता है। छात्र ऑनलाइन क्लासेस और दुनिया भर के अध्ययन स्रोतों तक निःशुल्क पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक दौर में अधिकांश नौकरियों के लिए कंप्यूटर ज्ञान, ईमेल और डिजिटल कौशल का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, पेंशन और डिजीलॉकर जैसी सुविधाओं का सीधा लाभ उठाने के लिए ये अनिवार्य है। ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई भुगतान और डिजिटल लेन देन से समय की बचत होती है और जीवन आसान बनता है। दोस्तों, डिजिटल दुनिया जितनी सुविधाजनक है, उसमें उतनी ही धोखाधड़ी, ऑनलाइन फ्रॉड और अफवाहों का भी खतरा रहता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम जागरूक रहें। दोस्तों, कार्यक्रम में हम बातें करेंगे और भी, पर उसके पहले चलिए सुनते हैं प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

0: हम लोग का बचा खुचा है, आने वाला फर्स्ट प्राइज का अवार्ड हमको मिले, उस आधार से हम जो बचा खुचा काम है या हम लोग नहीं पहुंच पाए उसके लिए भी हम लोग काम करना चाहते हैं।
1: सरपंच जी, जब आपने इस काम को करना शुरू किया तो वहां पर किस तरह की परिस्थितियां थी और फिर आपने स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के लिए किस तरह की गतिविधियों को संचालित किया? और ये भी जानना चाहूंगा कि वित्तीय संसाधन या फिर जागरूकता या फिर तकनीक के स्तर पर किस तरह की बातें आपके सामने आ रही थी, कोई कठिनाई थी या सब कुछ सामान्य था?
0: बहुत सारा कठिनाई था, कठिनाई को झेलते हुए। हम लोग के आदिवासी क्षेत्र है, पहाड़ी कुरवा लोग रहते हैं हमारे पास, हमारे गांव में, और जंगल है, पहाड़ है, फिर भी हम लोग जैसे साथ में समूह को मिलाकर हम लोग का जन प्रतिनिधि और महिला समूह सब साथ मिलके मेरा सपोर्ट किए और उनका मैं सपोर्ट लिया और हर मोहल्ला में लोककर सभा किए, बैठे चर्चा किए कि हमको कचरा का भी प्रबंध करना है, मतलब कचरा के इकट्ठा करना है, कहीं नहीं फेंकना है, और कचरा का कलेक्शन के लिए हम लोग महिला स्वर समूह को दिए और समूह द्वारा प्रत्येक शनिवार को महीने में 4 बार और हम लोग पूरे गांव जनभागी के द्वारा सहयोग पूरे गांव के हम लोग साफ सफाई करते हैं। और ये चुनौती बहुत ज्यादा थी लेकिन हमारे सपोर्ट में जन प्रतिनिधि और पूरे जनता भाई मेरे को साथ दिए, इसलिए इस मुकाम तक हम लोग पहुंचे हैं।
1: यानी कचरा प्रबंधन पर आपने काफी बड़े स्तर पर काम किया, लोगों का सहयोग लिया और लोगों ने बढ़ चढ़कर आपकी
0: बढ़ चढ़कर मेरा सहयोग दिए।
1: अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जो खुले में शौच से मुक्ति वाली बात है तो 100% सफलता आपने हासिल की है, इसके लिए आपने किस तरह से काम किया, कौन सी चुनौतियां आपके सामने थी?
0: मेरे पास बहुत चुनौती थी, आदिवासी क्षेत्र है, कोई नहीं मान रहे थे कि ये शौचालय क्या चीज को बोलते हैं, शौचालय के बारे में उनको पता नहीं था, काहे कि हम लोग को आदिवासी ट्रेवल क्षेत्र के हैं, पहाड़ी कुरवा लोग निवास करते हैं। और धीरे धीरे हम लोग लोककर सभा, जैसे हम लोग बोलते हैं छोटा छोटा बैठक, हर मोहल्ला में समूह के माध्यम से और हम लोग पंच के माध्यम से, अब मैं पिछले बार भी जनपद सदस्य था तो मेरे को इसके बारे में कुछ जानकारी था कि हमको आगे कैसे बढ़ाना है और शौचालय शौच मुक्त कराना है, उस आधार से हम लोग बहुत मेहनत किए, लगन किए, तभी हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं।
1: जल संरक्षण के लिए आपने कौन कौन से काम किए हैं?
0: जल संरक्षण के लिए केरड़ा विभाग मेरा सहयोग किए, और पिछले बार 5 साल जनपद सदस्य था उस समय मैंने केरड़ा विभाग से 109 पंप लगवाया, इस हिसाब से पानी उपलब्ध हो पाया, इसलिए रवि के फसल और खरीफ का फसल दोनों फसल ले सकते हैं।
1: अच्छा, जल संरक्षण के क्षेत्र में आपने तालाबों के पुनर्जीवन पर काम किया, भूजल पुनर्भरण पर काम किया, ड्रिप सिंचाई प्रणाली की हम बात करते हैं उस पर भी आपने काम किया, तो इस तरह के जो कदम आपने उठाए हैं इनमें भी कुछ चुनौतियां आपके सामने आई थी, आपने उनको हल किया?
0: सर, बहुत सारा चुनौती है, जैसे पानी की कमी के कारण ही तो मैं, जैसे हम लोग पहले हैंडपंप लगवाए, उसके बाद पानी की जहाँ कमी रहती है इसकी हम लोग पानी की बचत करने के चक्कर में उसमें हम लोग ड्रिप सिस्टम टपका विधि से हम लोग खेती करना शुरू किए, और पिछले 5-10 साल जो टपका विधि से खेती हो रहा है ड्रिप के माध्यम से, तो उसमें पानी की बचत हो रही है। और पानी का बचत के लिए और अभी हम लोग ये दूसरा प्लान किए हैं, एक सोखता गड्ढा जो बोलते हैं, अभी घर घर हर घर हर परिवार में एक गड्ढा खोद रहे हैं, 2.5 मीटर का, 2 मीटर का, 1 मीटर का, उसमें हम लोग जितना बरसात का पानी चाहिए, अभी वाला जो हम लोग बर्तन उर्तन धोते हैं, नहाते धोते हैं, उस पानी को इकट्ठा सीधा गड्ढा में जा रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग का जल स्तर जो है जो घटने के बजाय बढ़ रहा है।
1: तो मतलब ये जो पानी का दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सोच आपके अंदर कैसे आई कि इस तरह से पानी का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है?
0: सर, मैं पहले माइक्रो वाटर शेड में काम किया था, जल ग्रहण समय में माइक्रो वाटर शेड में काम किया, माइक्रो वाटर शेड का ही मतलब है कि वाटर पानी को इकट्ठा करना, और पानी को इकट्ठा जब मतलब कि गांव का पानी को गांव में ही मतलब कि उसको इकट्ठा करके नीचे करेंगे, उसमें क्या है कि पानी का पर्कुलेशन नीचे जाएगा, तो वही पानी हम लोग को मतलब कि उसमें कुआं है, तालाब है, डबरी है, चाहे नलकूप है, चाहे हैंडपंप है, उसमें पानी वही पानी आता है, बरसात का पानी।
1: अच्छा सरपंच जी, एक बात ये कही जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो खाना बनाने का काम है वो लकड़ियों पर किया जाता है, चूल्हे पर खाना बनाया जाता है, आपने इस दिशा में भी काम किया है गैस कनेक्शन के लिए?
0: सर, पहले हम लोग के यहाँ भी लकड़ी से खाना बना रहे थे, क्या है कि पुरवा लोग कहाँ से बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं, वो जंगल में रहते हैं, हम लोग जन आंदोलन चलाया कि लकड़ी हमको बचाना है, आने वाला पीढ़ी के लिए, हम जब लकड़ी नहीं बचाएंगे तो सांस कहाँ से लेंगे, ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, हम उस हिसाब से हमने उनको भी हम लोग बैठक करके बताए, और हम लोग उस स्थिति में भी अभी हम लोग लगभग 453 परिवार के पास गैस कनेक्शन है।
1: और भगत जी, पर्यावरण संरक्षण में वृक्षारोपण का एक बड़ा योगदान रहता है, मैंने ये भी सुना है कि आपको वृक्षारोपण से बड़ा लगाव है, तो आपने किस तरह से वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया है अपनी पंचायत में?
0: सर देखिए, मैं जनपद सदस्य ही था उस समय, हम लोग पहले भी जैसे माइक्रो वाटर शेड में काम किया था, उस समय भी प्लांटेशन हमने लगाया था। उसके बाद में जनपद सदस्य से पिछले पहले वर्ष था उस समय भी हम लोग प्लांटेशन लगाए, उनमें से हमको जिला प्रशासन की सहयोग से पैसा दिए और जनपद से भी कुछ पैसा और अपने तरफ जो मनरेगा

0: उसके माध्यम से हम लोग को वृक्षारोपण लगाए हैं।
1: कुछ इलाकों में बंजर जमीन जैसी समस्याएं आती है, उनके लिए आपकी क्या योजना है, उन पर आप कैसे काम करेंगे?
0: सर आपने बहुत सवाल मेरे से अच्छा किए। अगर बंजर भूमि मेरे को अगर मिल जाता आने वाला समय में, वो बंजर भूमि में उसको हम लोग वृक्षारोपण आने वाला समय में लगाएंगे।
1: मतलब उसके लिए भी आपने कार्य योजना
0: तैयार कर रहे हैं।
1: और सरपंच जी, एकल उपयोग प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो भी एक बड़ी समस्या माना जाता है, इस पर आपने काम किया है, तो किस तरह से गतिविधियों को संचालित किया, कैसे लोगों को मोटिवेट किया कि इन चीजों से हमें बचना चाहिए?
0: प्लास्टिक तो हम एकदम मुक्त नहीं कर सकते हैं, क्या कि उसको हम लोग बनाते नहीं है
1: जी।
0: उसको हम खुद नहीं बनाते हैं तो हमको उसको मुक्त नहीं करा सकते हैं, लेकिन हम प्रयास किए और प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग प्लास्टिक इकट्ठा करें, कुछ मिनी बैंक के माध्यम से हम लोग को इकट्ठा हर चौराहे पर, हर कहीं दुकान है, किराना दुकान है, वहाँ पर लगा दिए हैं। वहाँ हम लोग का मतलब कि गांव में कोई प्लास्टिक मुक्त तो है, वास्तव में है, बाकी पंचायत में है नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ है, हमारे पंचायत में है।
1: इस तरह की जो गतिविधियां खासतौर पे ये कचरा प्रबंधन की जहाँ पर बात है, साफ सफाई की बात है, तो इसमें ग्रामीण लोग जो है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनकी भूमिका किस तरह है, वो लोग किस तरह से आपका सहयोग करते हैं?
0: उसमें भी हम लोग समूह को लिए जिम्मेदारी दिए हैं, स्व सहायता समूह को। उसमें 11-12 जन उसमें कचरा कनेक्शन सप्ताह में करते हैं और कचरा कनेक्शन करके उनको महीने का 30 रुपया देते हैं हर परिवार, और उनका निजी जिंदगी थोड़ा बेहतर हो रहा है,
1: अच्छे रिजल्ट वहाँ से सामने आ रहे हैं।
0: और सप्ते में हम लोग पूरे गांव वासी मिल के और बाकी गली का सफाई करते हैं, रोड का सफाई करते हैं।
1: सरपंच जी, आपने हरित अधोसंरचना यानी कि ग्रीनरी को तो बढ़ावा दिया ही, साथ में सौर ऊर्जा पर भी आपका काफी फोकस रहा है, इसके बारे में हमें बताएं।
0: सर केडा के माध्यम से जो भारत सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो केडा का पूरे राज्य में उसका किसानों के फायदे के लिए, सिंचाई के लिए पंप कनेक्शन दे रहा है
1: जी,
0: और दिया है, मैं तहे दिल से श्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसानों के लिए उतना बड़ा सोच रखते हैं। और हमारी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि किसानों के हित में काम कर रहे हैं और किसानों को लाभ मिल रहा है।
1: सिंचाई पंप की क्या योजना रही आपके लिए
0: विगत आने वाला समय में, और अगर किसान जो छूटे हुए हैं उनके लिए और अगर सिंचाई पंप मिल जाता तो बहुत अच्छा रहा।
1: यानी प्रयास आपके जारी है। अच्छा, ग्रामीणों ने आपकी काफी मदद की होगी तब जाकर के आपको ये सफलता प्राप्त हुई है, तो उनकी किस तरह की उपलब्धियां रही, कैसे लोगों ने आपको बढ़ चढ़ करके सपोर्ट किया कि आपको लगा कि हाँ इनके साथ मिलकर अब हम ये काम और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर कर सकते हैं?
0: सर उनको तो मैं जितना मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे ग्रामवासियों के लिए और जनप्रतिनिधियों को, और मेरे जनपद के शासन प्रशासन और जिले के सभी टीमों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरा सहयोग जनपद से और जिले से सहयोग जो मिला उसके लिए भी सभी समस्त अधिकारी कर्मचारी और पंचगण या आम जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।
1: आपकी पंचायत के जो भी लोग हैं, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ समस्याएं हर किसी के सामने आ ही जाती हैं, तो वो अपनी समस्याएं लेकर आपके पास आते हैं या किसी भी तरीके से आप तक अपनी समस्याएं पहुंचाते हैं, तो उसमें किस तरह से आप एक्शन लेते हैं, कैसे लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं?
0: सर हमारे पास बहुत सारा समस्या है, काहे कि हमारे आदिवासी क्षेत्र है, मेरे पास सुबह टाका लग जाता है, एकदम सुबह जब मैं सो के नहीं उठता हूँ 5 बजे आदमी आ जाते हैं
1: जी।
0: और सारा समस्या का हल मैं इसमें उठता हूँ, बैठने के लिए उनको बोल देता हूँ बैठिए मैं आ रहा हूँ, उसके बाद उनका समस्या को देता हूँ क्या कौन सा समस्या क्या है, तो मैं इसमें उनका समस्या को हल करने का कोशिश करता हूँ। मेरे से नहीं बनता है, जो ऊपर स्तर से चाहे ब्लॉक स्तर से जिला स्तर पे उनका काम को करने के लिए प्रयास करता हूँ।
1: तो कोई खास दिन निर्धारित कर रखा है उनसे मिलने के लिए, या प्रत्येक दिन सभी लोग आते हैं जहाँ पर अपनी समस्याएं वो आपके सामने रखते हैं?
0: हमारे यहाँ प्रत्येक शुक्रवार को भी है, जो लगता है सचिवालय उस दिन अलग है, वो तो सरकारी क्रम शासन
1: अच्छा।
0: है मेरा सोमवार मंगल बुध भी फिर मेरा 3 दिन लगातार बैठक हूँ, अपने घर में बैठता हूँ और 3 दिन घर में बैठता हूँ और 3 दिन पंचायत भवन में बैठता हूँ, और 3 दिन मेरा काम हो जाता है, मतलब हमेशा व्यस्त रहता हूँ, किसी पब्लिक को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है।
1: यही कारण है कि आपकी पंचायत को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है
0: जी सर।
1: अच्छा, एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि अब आपको क्या लगता है कि जो भी बुनियादी ढांचा आप लगातार बना रहे हैं उससे वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह का परिवर्तन देखने को मिल रहा है, खासतौर पर जब गांव में सड़कों की बात करते हैं, स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं या मुख्य सड़क से कनेक्टिविटी की बात होती है, आते जाते हैं कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं, उसके लिए किस तरह के प्रबंध है?
0: सर उसके लिए अभी हम लोग का प्रयास कर रहे हैं, कुछ बहुत काम बचा है, उस काम को भी हम लोग प्लान बना के उसको शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे, जो बचा कुचा है उस काम को आगे बढ़ाएंगे और आने वाला समय जहां हम लोग का कार्य जो बचा है उसको पूर्ण कर सके।
1: तो सरपंच जी, आपने ये जो सफलता हासिल की है, इस उपलब्धि तक आप पहुंचे हैं, तो इसमें आपकी सबसे बड़ी कार्य योजना क्या रही, आपका माइंडसेट क्या था, कैसा आपने सोचा कि इस योजना पे मुझे चलना चाहिए, इससे मुझे काफी कुछ प्राप्त हो सकता है?
0: सर हम लोग के यहाँ जैसे सबसे पिछड़ा पहाड़ी कोरवा लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं ना, उनको समझाना तो बड़ी मुश्किल था।

0: भी हम लोग सोचे कि पूरे गांव के बैठक करके सोचे और शासन से सहयोग लिए। जिला प्रशासन ने हमको सहयोग दिया, जनपद ने भी मुझे सहयोग दिया। उसी कारण से ODF मतलब पंचायत बना, जैसे शौचालय मुक्त है ना, उसमें 453 हम लोग शौचालय बनाए।
1: सरकार के सहयोग की जब बात आती है तो आजकल सरकार डिजिटल होने पर ज्यादा ध्यान दे रही है, लगातार फोकस कर रही है कि हर एक चीज पर डिजिटल तरीके से काम होना चाहिए। आपको इससे कितना फायदा और आपने अब तक कितना इसे अपनाया है?
0: सर, डिजिटल एक आज के आधुनिक जमाना में बहुत ही अच्छा है। हम बैठे बैठे अपने कार्य को, जिला का हुआ चाहे राज्य का हुआ, हम अपने बैठे बैठे अपने आम जनता को फैसिलिटी दे सकते हैं।
1: जी,
0: चाहे जिससे कहा महिला KYC वगैरह कराते हैं, चाहे और बैंक जाना पड़ता है, बैंक वाला जितना काम धाम होता है उसको हम लोग अपने पंचायत में बैठ के उसका काम को निपटा सकते हैं। और हमारे यहाँ भी आने वाला समय में उसको प्रस्ताव मैंने भेज चुका है कि अटल डिजिटल सेवा केंद्र का स्थापना होने वाला है, मतलब का उसके लिए मकान बनने वाला है।
1: तो सरपंच जी, सरकारी योजनाओं का लाभ आपके गाँव के हर एक व्यक्ति तक पहुँचे, इसके लिए कोई खास व्यवस्था की आपने?
0: जिन्होंने मतलब के जागरूक नहीं तो उसको हम मैंने उनको जगाया, ग्राम सभा में बुला के सब भाइयों को आप लोगों का क्या कमी है, सरकार के एक एक जो भी योजना है उसको सारा योजना का लाभ मैंने उनको बताया कि इस योजना में ये चीज करना है, उस योजना में जो भी लाभ है उस योजना को लाभ आप लोग लीजिए, शासन आपको दे रहा है, उस योजना को कभी भी इधर उधर मत कीजिए, उसका फायदा उठाइए, उसका लाभ उठाइए।
1: भगत जी, अब आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है तो आपको क्या लगता है कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है या लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई, या दोनों चीजें बढ़ गई हैं?
0: सर, राष्ट्रीय स्तर से मेरे को पुरस्कार मिला है तो मेरा भी जिम्मेदारी बनता है और जनता का भी जिम्मेदारी बनता है और शासन का भी जिम्मेदारी बनता है। जो मेरा जब मैं कुछ मेरा जिस लेवल तक नहीं पहुंचा उस लेवल तक मेरे को पहुंचना है और जनता को भी पहुंचना है। प्रशासन प्रशासन को भी ध्यान देना है कि मेरा कहीं कमी भी है उसमें फोकस ज्यादा दे तो मैं फिर आगे बढ़ जाऊँ।
1: आपने एक ऐसा काम किया है जो मतलब देश की अन्य पंचायतों के लिए एक तरह से आदर्श बन सकता है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे देश की जो अन्य पंचायतें हैं उनके लिए भी अपना संदेश दें कि आप भी इस तरह से काम कर सकते हैं।
0: मैं तो पूरा भारत के सभी पंचायत चाहे देशवासियों को मैं अपील करना चाहता हूं कि अपने भी पंचायत के बारे में जन प्रतिनिधि है या जनता आपको वहां तक पहुंचाया है तो गांव का समस्या के बारे में उन लोग भी सोचे जैसे मैंने सोचा, उनको और मेरे से बेहतर सोचना चाहिए और उनको भी ऐसा करना चाहिए।
1: तो भगत जी, आपने तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया, काफी बातें हुई आपसे, तो हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस चर्चा में भाग लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार सर।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ की सरडी पंचायत के सरपंच रामजी भगत के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और यूट्यूब चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। कार्यक्रम में बातें होंगी और भी एक छोटे से अंतराल के बाद।
5: हमारी जनगणना हमारा विकास।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

दोस्तों, आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे ऐसे विषय के बारे में जो सीधे हमारी जड़ों से, हमारे रोजगार से और हमारे देश की आत्मनिर्भरता से जुड़ा है। आज हम बात करेंगे कि कैसे हमें अपने क्षेत्र के उत्पाद को अपनाना चाहिए। दोस्तों, जब हम बाजार जाते हैं तो अक्सर चमचमाती विदेशी चीज़ें देखकर आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आपके खुद के शहर, आपके खुद के ज़िले या गांव से बनने वाली चीज़ें भी कितनी लाजवाब हो सकती हैं? चाहे वो बनारस की रेशमी साड़ी हो, गोरखपुर का टेराकोटा हो या फिर कश्मीर का केसर, हमारे देश के हर कोने में एक हुनर छुपा है। जब हम बात करते हैं अपने क्षेत्र के उत्पाद को अपनाने की, तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि इससे आम इंसान और हमारे समाज को क्या फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों, ये बहुत ही सीधा और गहरा गणित है। जब आप अपने क्षेत्र में बनी हुई कोई चीज़ खरीदते हैं, तो चाहे वो हाथ से बना मिट्टी का घड़ा हो, स्थानीय स्तर पर पिसा हुआ मसाला हो या कोई हस्तशिल्प, इससे आपका पैसा सीधा आपके ही क्षेत्र के किसी गरीब कारीगर, किसान या छोटे व्यापारी के घर जाता है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ता है, गरीबी कम होती है और हमारे देश की पारंपरिक कलाएं जीवित रहती हैं। यानी एक छोटी सी खरीदारी से हम किसी के घर का चूल्हा भी जला सकते हैं और अपनी संस्कृति को भी बचा सकते हैं। दोस्तों, आजकल सरकार भी इस पर बहुत जोर दे रही है, जैसे एक जिला एक उत्पाद। सरकार की इस योजना का मकसद ही यही है कि हर जिले की एक विशेष पहचान को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई जाए। आज हमारे स्थानीय उत्पादों की पैकेजिंग और क्वालिटी इतनी शानदार हो चुकी है कि ये विदेशी सामानों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। बस ज़रूरत है इस बात की कि हम और आप यानी उपभोक्ता इन पर भरोसा जताएं। तो अगली बार जब आप त्योहारों की शॉपिंग करें या किसी को तोहफा देना चाहें, तो मॉल के विदेशी ब्रांड्स के बजाय अपने स्थानीय कारीगरों की दुकान पर ज़रूर जाएं। वो चीज़ें ना सिर्फ अनोखी होंगी, बल्कि उसमें हमारी मिट्टी की खुशबू भी होगी। लोकल बनना ही ग्लोकल होने की पहली सीढ़ी है। अपने विरासत पर गर्व करें और स्वदेशी अपनाएं। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं इस गीत की ओर।

दोस्तों, इसी के साथ ही वक्त हो चला है हमारी प्रश्नोत्तरी का। तो आज का सवाल पूछने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी हमारे कल के पूछे गए सवाल का सही जवाब। दोस्तों, हमारा कल का सवाल था, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, जिसका सही जवाब है 7 जून। और अब बारी है हमारे आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है, इंटरनेशनल योगा डे यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, इंटरनेशनल योगा डे यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही मैं लेती हूँ आपसे विदा, इस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश।

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए ग्राम जगत। क्षमा करें, हम आपको सुनवाते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम बालवाणी।

जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है। मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

0: एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: बच्चा लोगन
1: जय
0: जय
1: हिंद।
0: हिंद।
1: हाँ, तो यही नारा के साथ आज का अपन बैठकी शुरू भइल। लड़का लोग इस समय स्कूलन में गर्मी के छुट्टी हो गई बाटे और लड़का लोग गर्मी के छुट्टी का खूब मजा ले लें।
0: मजा तो भैया ले लें ठीक है, लेकिन मजा के साथे साथे ओकर विधिवत उपयोग करे के चाहिए। मजा ना होवे के चाहिए। और गर्मी के छुट्टी एक ऐसा अवसर होला जहाँ अपने लक्ष्य के और लक्ष्य के प्राप्त करे खातिन कठिन मेहनत कई के और लगन से वह लक्ष्य के तैयारी भी कई से कैलें। और वह लक्ष्य के तैयारी खातिर खाली पढ़ाई ना है भैया, यह समय के सदुपयोग कहीं घूमे जाके तीर्थ यात्रा पर्यटन कई के वह क्षेत्र के बारे में विशेष जानकारी भी कई से कैलें और वहाँ के बारे में जानकारी ले सकें और वहाँ के आनंद भी ले सकें। साथे साथे दो काम भी हुई, अपन तैयारी भी हुई, जानकारी भी हुई और छुट्टी का भी विधिवत आनंद ली है
1: हाँ
0: भैया।
1: भैया, ये बहुत अच्छा कहना कि मतलब पढ़ाई के साथ साथ हर और के गतिविधि, मतलब उनके कोनो रचनात्मक कार्य के बारे में जानकारी, कहीं के तीर्थ यात्रा का उनके जानकारी हो खे, नदी तालाब झरना का जानकारी हो खे, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि भारत के कोनो कोना में जाके अगर ओकरे प्राकृतिक संपदा के बारे में अगर जानकारी लड़का लोग ले लें तो ऐसे लड़का लोग के ज्ञान के वृद्धि होई और आगे आए वाले समय में उनके एक बहुत फायदा होई।
0: भैया हो देखो पहले के परंपरा रहल, जब संयुक्त परिवार रहल और बड़ा परिवार रहत रहल तो लड़का लोगन के सबसे बड़ा खुशी रहत रहल, तैयारी रहत कि छुट्टी हुई तो हम नाना के यहाँ जाए, मामा के यहाँ जाए, फुआ के यहाँ जाए, मौसी के यहाँ जाए। लेकिन आजकल एहमे जौन बा कमी आवत गई बा, अब आज के स्थिति बदलती बा। ऐसने में गर्मी के मौसम भी अपने क्षेत्र के जहाँ तक बात कैल जाए तो गर्मी भी खूब पड़े ले, अगर व्यवस्था बा, आर्थिक स्थिति ठीक बा और अपन कुछ इच्छा बा तो पहाड़ी एरिया पे भी जाके घूम सकें, वहाँ के बारे में, वहाँ के भौगोलिक स्थिति के बारे में वहाँ के करीब से जाके ओके समझ सकें, जान सकें
1: जान
0: भैया।
1: सकें ना, जानकारी ले सकें ना, और दूसरे के भी ओकरे खातिर प्रेरित कर सकें ना कि यहाँ का स्थिति अच्छी बाटे और वहाँ के मतलब पर्यावरण अच्छा बात, स्वच्छ पर्यावरण के जानकारी ले सकें ना।
0: और सबसे बड़ी बात लगेगा लोगों ने जरूर ध्यान रखे के चाहिए कि अगर छुट्टी मिलल बात तो ओकर सदुपयोग होवे के चाहिए, दुरुपयोग कतई ना होवे के चाहिए। कभी कभी लड़का लोग कहोला छुट्टी मिलने के बाद अपने मार्ग से भटक जाले कि अभी तो चले 20 दिन के 1 महीना के छुट्टी बा, बड़ा टाइम बा, खूब सुतल जा, घूमल जा, इंजॉय कैल जा। लेकिन नहीं, अपने जीवन के जौन लक्ष्य बा, अपने पढ़ाई के जौन उद्देश्य बा, ओकरे प्रति निरंतर जागरूक रहे के चाहिए, ओकरे बीच में कौनो भी बाधा ना आवे के
1: आवे
0: चाहिए।
1: चाहिए लड़का लोग बात हो ही रही, एक साथ सुनल जाएगा लोकगीत।

0: हाँ, लइका लोगन देखा, ई निमन गीत सुने के मिलल, मन मनसाइन भेल। लेकिन मन मनसाइन के साथे जैसे कि हमन शुरू शुरू में बात कैली हैं कि पढ़ाई लिखाई से नाइ कटेक बा, जानकारी खातिन लगल रहे बा, कुछ न कुछ जानकारी मिलत रहे, कुछ ज्ञान बढ़े, यह तरह के भी काम करत रहे बा।
1: तो एनाते आज हम के अपने कार्यक्रम में लइका लोगन के सुनावल जाए नालंदा के गौरवमय इतिहास के बारे में विषय में जानकारी देत बाटे डॉक्टर अनिल कुमार बिश्वा।
2: नालंदा 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच प्राचीन मगध राज्य का शिक्षा विद्यापीठ रहा है, जिसने ज्ञान का व्यापक प्रचार प्रसार किया है। नालंदा शब्द संस्कृत के नालम धंधा से बना है। संस्कृत में नालम का अर्थ कलम होता है, कलम ज्ञान का प्रतीक है। नालम धंधा यानी कलम देने वाली अर्थात ज्ञान देने वाली। लेकिन चीनी यात्री ह्वेन सांग ने नालंदा नाम की उत्पत्ति के बारे में अलग बात बताई है कि नालंदा नाम का एक नाग के कारण पड़ा जो यहाँ के किसी हद में निवास करता था। परंतु चीनी यात्री के विचार में यह अधिक युक्तिसंगत था कि इस स्थान का नाम बुद्ध के कारण पड़ा हो। प्राचीन बौद्ध स्थल नालंदा नालंदा जिला अंतर्गत बड़गांव नामक ग्राम के निकट स्थित है, जो जिला बिहार शरीफ से लगभग 12 किलोमीटर दक्षिण, राजगीर प्राचीन राज्य से लगभग 11 किलोमीटर उत्तर तथा राजधानी पटना से लगभग 90 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। सड़क मार्ग द्वारा यह राजगीर बिहार शरीफ और पटना से भली भांति जुड़ा हुआ है। नालंदा रेलवे स्टेशन यहां से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर है। नालंदा भग्नावशेष परिसर पर्यटकों के घूमने के लिए प्रातः 9 बजे से सायंकाल 5:30 बजे तक खुला रहता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के बौद्ध विहार के रूप में करवाया गया था। एक लंबे समय तक यहाँ बौद्ध विषयों का अध्ययन अध्यापन चलता रहा। विश्वविद्यालय के रूप में इसकी उत्पत्ति गुप्त शासक कुमारगुप्त के शासन काल में हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की उत्पत्ति का काल 415 से 454 ईस्वी पूर्व है। बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीन यान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के अनेक देशों के विद्यार्थी पढ़ने आते थे। प्रसिद्ध इतिहासकार लामा तारानाथ के अनुसार बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र के जन्मभूमि होने के कारण नालंदा का विशेष आकर्षण है। नालंदा विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी तुलना मध्य युग में फ्रांस के क्लूनी और ब्लेयर वॉक्स से की जाती है। तत्कालीन सर्वश्रेष्ठ महाज्ञानी व दार्शनिक नागार्जुन इस विश्वविद्यालय के पहले कुलपति थे। नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव की कहानी को बयान करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश का एक ही मुख्य मार्ग था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप मंदिर थे। स्तूप मंदिरों में बुद्ध की सुंदर मूर्तियां स्थापित थी। केंद्रीय विश्वविद्यालय में 7 बड़े कक्ष थे और इसके अलावा 300 अन्य कमरे थे। इनमें व्याख्यान हुआ करता था। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं अपितु कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थी विज्ञान, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, तर्कशास्त्र, गणित, दर्शन, हिंदू और बौद्ध धर्म का अध्ययन करते थे। 4वीं से 7वीं शताब्दी के बीच नालंदा अपने उत्कर्ष पर था। तत्कालीन विद्वान आर्यभट्ट ने नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति पद को सुशोभित किया था। आर्यभट्ट ने 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ

दस गीतिका आर्यभट्टी और तंत्र की रचना की जो आज भी उपलब्ध है। इस विश्वविद्यालय की 9वीं शती से 12वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति रही थी। पाल वंश के राजा महायान संप्रदाय के अनुयायी व संरक्षक थे, फिर भी वे नालंदा की बौद्ध संस्थाओं के भरण पोषण के लिए उदार हृदय से दान देते रहे। नालंदा विश्वविद्यालय में ऐसे ऐसे उच्च कोटि के धर्माचार्य हुए जिनका यश दूर दूर के देशों में पहुंचा और वहां चिरकाल तक जीवित रहा। यह कहावत सत्य है कि नालंदा का विशद इतिहास वस्तुतः महायान बौद्ध संप्रदाय का इतिहास है। 7वीं शती में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। उस समय 10,000 विद्यार्थी और 1500 आचार्य नालंदा विश्वविद्यालय में थे। ह्वेनसांग लंबे समय तक नालंदा में रहा। वह लिखता है कि नालंदा में विविध विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इनमें महायान और महायान संप्रदायों के धार्मिक ग्रंथ हेतु विद्या, न्याय, शब्द व्याकरण और चिकित्सा विद्या आयुर्वेद शामिल थे। इसके अंतर्गत अथर्ववेद सहित समस्त वेद तथा हिंदू धर्म के अन्य शास्त्र भी पढ़ाए जाते थे। ह्वेनसांग के वर्णन से प्रतीत होता है उस समय नालंदा शिक्षा एवं विद्या का अद्वितीय केंद्र था। नालंदा में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों का एक भारतीय नाम दिया जाता था। ह्वेनसांग का भारतीय नाम मोक्षदेव था। ह्वेनसांग लिखता है कि उन दिनों प्रवेश परीक्षा विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर ही हो जाया करती थी, जहां प्रवेश के लिए इच्छुक विद्यार्थियों को द्वारपाल के प्रश्नों के उत्तर देने होते थे। जिस विश्वविद्यालय का द्वारपाल इतना अधिक विद्वान रहा करता होगा कि जिसके विवेक के आधार पर छात्रों के प्रवेश सुनिश्चित किए जाते होंगे, उस विश्वविद्यालय के अंदर के शिक्षकों के ज्ञान का स्तर कितना विस्तृत रहा होगा। प्रवेश प्राप्ति के बाद विद्यार्थियों को आचार विचार और व्यवहार की शुद्धता का अध्ययन अपेक्षित था। यहाँ शिक्षा पाली भाषा में दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में 3 श्रेणियों के आचार्य थे। ये श्रेणियां योग्यता अनुसार बनाई गई थी। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती प्रमुख थे। ह्वेनसांग के समय विश्वविद्यालय महान आचार्य शिक्षक विद्वान शीलभद्र थे। कई विद्वान आचार्य ऐसे थे जो सूत्र और शास्त्र जानते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की अपनी मुद्रा थी, जिस पर श्री नालंदा महाविहार आर्य भिक्षु संघस्य लेख उत्कीर्ण था। नालंदा विश्वविद्यालय की एक विशेष देन यह थी कि वहां विद्यार्थी एक दूसरे के निर्माण में सहायता करते थे और इस प्रकार की जीवन सबसे आदर्श कला में यानी बुद्धि की दीप्ति से जागृत एक विद्वत जन समाज के निर्माण में पारस्परिक सहायता करते थे। इतसिंह के अनुसार ख्याति प्राप्त तथा प्रतिष्ठित विद्वानों की यहाँ भीड़ सी लगी रहती थी और वे संभव एवं असंभव तथ्यों पर विचार किया करते थे और अंत में ज्ञानियों द्वारा अपने विचारों की श्रेष्ठता के संबंध में निश्चित होने के बाद अपने ज्ञान की दीप्ति से संसार में यश प्राप्त करते थे। पाठ्यक्रम की समाप्ति पर दीक्षांत समारोह का आयोजन होता था, जिनमें विद्यार्थियों के सामाजिक गुणों, स्थिति आदि को देखते हुए उपाधियां दी जाती थीं। बिना पिटक के नियमानुसार विद्यार्थियों को धन स्पर्श वर्जित था। नालंदा विश्वविद्यालय एक समय में 3 बड़े पुस्तकालय थे, जिनके नाम रत्न रंजक, रत्नोधि, रत्नसागर थे। इन पुस्तकालयों के एक एक भवन में 9-9 तल्लों का हुआ करता था, जिनमें लाखों महत्वपूर्ण हस्तलिखित ग्रंथ मौजूद थे। नालंदा विश्वविद्यालय के नष्ट होने के सैकड़ों साल बाद विख्यात पुरातत्वविद सर कनिंघम ने इस प्राचीन विश्वविद्यालय को खोज निकाला। नालंदा विश्वविद्यालय की खुदाई 1870 में एम ब्रेड लेने ने शुरू की थी और उसी ने नालंदा विश्वविद्यालय के उक्त स्थान पर होने के संकेत दिए थे। नालंदा के जीर्णोद्धार के लिए 1915 ईस्वी में खुदाई का कार्य आरंभ हुआ। यह कार्य रॉयल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड नामक संस्था की मदद से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में शुरू हुआ था, जिसको बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपने हाथ में ले लिया। खुदाई से प्राप्त चिन्हों से ज्ञात होता है कि नालंदा विहार का कम से कम 7 बार पुनर्निर्माण या विस्तार हुआ होगा। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष 1.5 लाख वर्ग फीट में मिला है, मगर ऐसा माना जाता है कि यह विश्वविद्यालय का सिर्फ 10% हिस्सा ही है। खुदाई के दौरान अब तक 9 विहार प्रकाश में आए हैं, जो दक्षिण से उत्तर की ओर एक पंक्ति में फैले हुए हैं। सभी एक ही समान हैं। इनके आंगन के चारों ओर कुष्ठक और बरामदे खुले हैं। नालंदा के स्थापत्य के नमूने यानी पानी बहने वाली नालियों, दीवारों से बनी अलमारियां और ताखे, स्नानागार, शयन स्थल, अन्नागार, देव मंदिर, पूजा गृह,
चिकित्सालय आदि दिख पड़ते हैं। इससे प्रतीत होता है कि तत्कालीन वास्तुकला अपने उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध थी और अपने शिखर पर थी। खुदाई में 13 मठ प्रकाश में आए हैं। प्रत्येक मठ के कोने में एक कुआं दिखाई देता है। इससे संकेत मिलता है कि पानी की समस्या को लोगों ने नजरअंदाज नहीं किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर से लगभग 1 किलोमीटर दूर एकांत में अवस्थित ह्योनसांग स्मृति भवन प्राचीन ज्ञान स्थली की याद को ताजा कर देती है। भारतीय

0: और चीनी कलाओं से सुसज्जित इस भवन की दीवारें कक्ष में प्रवेश करते ही एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती हैं। यह भवन भारत चीन की दो महान सभ्यताओं के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रतीक है। सैकड़ों सालों तक ही नहीं विश्व में अपनी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध रहा नालंदा विश्वविद्यालय पुनः शिक्षा प्रदान करने के लिए प्राचीन विश्वविद्यालय से 12 किलोमीटर दूर राजगीर में स्थापित है। विश्वविद्यालय का अस्थायी परिसर राजगीर की पहाड़ियों की तलहटी में 455 एकड़ में बन रहा है। अभी शुरुआत में इतिहास एवं पर्यावरण विज्ञान की शिक्षा दी जाएगी, लेकिन कुल 7 विषयों में उच्च शिक्षा प्रदान की जाएगी। साल 2010 में इसकी स्थापना के लिए संसद में कानून बना। 1 सितंबर 2014 में यहाँ पर नया नालंदा विश्वविद्यालय अपने गौरवशाली इतिहास को सजोए शुरू हो गया है। इसकी स्थापना का उद्देश्य प्राचीन शिक्षा विधि को विकसित करना है। इस विश्वविद्यालय को शुरू करने में चीन, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड और दूसरे देशों ने भी आर्थिक सहायता की है। नालंदा में वर्तमान तंत्र ज्ञान पर आधारित म्यूजियम देखने को मिलता है, जिनमें 3D एनिमेशन के सहारे नालंदा के इतिहास से संबंधित जानकारियां हासिल कर सकते हैं। प्रसिद्ध बुद्ध भिक्षु और यात्रियों को सम्मान देने के उद्देश्य से कुसू झांग मेमोरियल हॉल की स्थापना की गई थी। इस मेमोरियल हॉल में बहुत से चीनी बुद्ध भिक्षुओं की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। भारतीय आर्कियोलॉजिकल विभाग ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक म्यूजियम स्थापित किया है। इस म्यूजियम में हमें नालंदा के प्राचीन अवयवों को देखने का अवसर मिलता है। उत्खनन के दौरान जमा किए गए 13,663 वस्तुओं में से केवल 349 चीजें ही म्यूजियम में दिखाई जाती हैं।
1: लैका लोग हमन के सुनत रहनी नालंदा का गौरवमयी अतीत। यही के साथे साथे हमन के सुनल जा बालगीत और कार्यक्रम के आगे बढ़ावल जाए।

0: थी भला आँख में चोली, दाई आँख बंद के बाई आँख खोली।
1: किसने?
2: मैंने? नहीं तो?

0: लड़का लोग इतना निमन बाल गीत सुन लें। और लड़का लोग के एक बात के जानकारी देवे बाटे कि गर्मी का मौसम अपने चरम पर बाटे, एनाते गर्मी से बच के रहें, स्वस्थ रहें, तबे आगे हमन के अपन पढ़ाई लिखाई या कोनो भी कई साल
1: अपने घर के बड़े लोगन के कहना माने, उनके अनुमति के बिना धूप में बाहर कहीं न निकले। यही के साथे आज के कार्यक्रम का समय पूरा भइल। घड़ी कहतिया कि लड़का लोगन से लिहल जा विदा। तो लड़का लोगन
0: जय हिंद।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथे हम शिवानी अरोरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोंडा जिला में 516 करोड़ रुपया के लागत के कई गो विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास कैले। यह मौका पर मुख्यमंत्री कहने की बढ़िया सरकार चुनले का नतीजा हो कि आज गोंडा का विकास हो रहल बा, गोंडा आपन खो गई पहचान वापिस पा रहल हो। श्री योगी कहले की सरकार की योजना का लाभ बिना भेदभाव प्रदेश के हर जिला, विकास खंड आ विधानसभा क्षेत्र ले पहुंचावल जा रहल हो। कौनो जाति धर्म नाही बलुक पात्रता देख करके उन्हें सरकारी योजनन का लाभ पहुंचावल जा रहल बा।
1: चेहरा नहीं देखा जा रहा है, जाति नहीं देखी जा रही है, क्षेत्र नहीं देखा जा रहा है, देखा जा रहा है एक कि अगर पात्रता की श्रेणी में है कोई भेदभाव नहीं होगा। हर पात्र व्यक्ति को, वह किसी जाति का हो, किसी मत संप्रदाय का हो, अगर वह पात्रता की श्रेणी में आता है उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उसको योजना का लाभ दिया जाएगा। और यही तो मोदी जी ने कहा था, सबका साथ और सबका विकास।
0: मुख्यमंत्री कहले कि सुशासन और सेवा का भावना के साथ ही चली रहल विकास योजना समाज के आखिरी पायदान पर खड़ा मनई ले समृद्धि, सुरक्षा और सम्मान पहुंचवले का कार्य कई रहल हो। इससे पहले मुख्यमंत्री आज सवेरे देवीपाटन शक्तिपीठ के गर्भगृह में पहुंच गए, मां पाटेश्वरी का दर्शन पूजन कैले। प्रदेश का ऊर्जा मंत्री डॉक्टर ए के शर्मा आज वाराणसी में मीडिया से बतियावत कहले कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश

0: वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के दृष्टि से पूरे विश्व को एक रास्ता दिखाते हुए सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में पूरे देश को उन्होंने ऐतिहासिक प्रगति कराई है।
1: इससे पहले वाराणसी में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रगति पर चर्चा करत ऊर्जा मंत्री कहले कि यह समय वाराणसी देश में 11वां जगही पर पा आ एके पहला जगही पर पहुंचावे बदे खास रणनीति बनावल जा रहल बा। वहां के बतवले कि योजना लोगिन के बिजली बिल में कमी ले आइले के साथ ही अतिरिक्त आय का स्रोतो बनी रहल बा। बैठक में सौर ऊर्जा क्षेत्र में बढ़िया कार्य करे वाले कर्मियन, सोलर दीदियन और एजेंसियन के सम्मानितो कैल गए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन बदे आवेदन जमा कैले का आखिरी तारीख बढ़ा के 7 जून कई दिले हो। CBSE सोशल मीडिया पोस्ट में बतवले कि छात्र अब बिहने आधा रातिले आपन आवेदन जमा कई सके हैं। इससे पहले आवेदन जमा कैले का आखिरी तारीख 6 जून तय रहन। CBSE सज्जो पात्र छात्र से बढ़ल समय सीमा का ध्यान रखत तय समय के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरा कैले का अपीली कैले हव। अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद का केंद्रीय प्रबंध समिति का 4 दिवसीय बैठकी 26 से 29 जून ले आयोजित हुई। बैठकी का तैयारियन के लिए के संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे आज पदाधिकारियन का कार्यकर्ता लोगन के साथ बैठकी कई के भोजन, आवास, यातायात सुरक्षा अ अतिथि सत्कार का व्यवस्था के तैयारियन का जानकारी लिए ले। श्री परांडे बतवले की बैठकी में देश के राज्यन और प्रांतन से करीब 450 कार्यकर्ता और प्रतिनिधि शामिल हुई हैं। 4 दिन ले चलने वाला यह बैठकी में संगठन का वार्षिक कार्य का समीक्षा और विस्तार योजना पर विचार विमर्श हुई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होखे वाला T20 श्रृंखला बदे भारतीय टीमी का घोषणा कई दिहले हो। श्रेयस अय्यर के सूर्यकुमार यादव की जगह टीमी का कप्तान बनावल गयल हो। तिलक वर्मा उप कप्तान हुई हैं। वैभव सूर्यवंशी के पहली बेर टीमी में शामिल कैल गयल हो। वैभव IPL 2026 में सबसे बेसी रन बनवले रहले। प्रिंस यादवों के टीमी में जगह मिलल बा। प्रदेश के कई जिलों में आने बरखा का सिलसिला आज हो जारी रहल। मौसम विभाग के मुताबिक महीने से अगला 3 दिन ले प्रदेश के करीब सज्जो इलाकन में मौसम शुष्क रही। 10 जून के प्रदेश के पूर्वी इलाका के कछु जिलों में तेजी बयारी के साथ हल्लू काहे बरखा भैले का संभावना बा। समाचार पूरा भैल। नमस्कार। आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा जनपद में 516 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी सरकार चुनने का नतीजा है कि आज गोंडा का विकास हो रहा है। गोंडा अपनी खोई हुई पहचान को वापस पा रहा है। श्री योगी ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव प्रदेश के प्रत्येक जनपद, विकास खंड और विधानसभा क्षेत्र तक पहुँचाया जा रहा है। किसी का जाति धर्म नहीं बल्कि पात्रता देखकर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है।
2: चेहरा नहीं देखा जा रहा है, जाति नहीं देखी जा रही है, क्षेत्र नहीं देखा जा रहा है, देखा जा रहा है एक कि अगर पात्रता की श्रेणी में है कोई भेदभाव नहीं होगा। हर पात्र व्यक्ति को, वह किसी जाति का हो, किसी मत संप्रदाय का हो, अगर वह पात्रता की श्रेणी में आता है उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उसको योजना का लाभ दिया जाएगा। और यही तो मोदी जी ने कहा था, सबका साथ और सबका विकास।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन और सेवा की भावना के साथ संचालित विकास योजनाएं समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक समृद्धि, सुरक्षा और सम्मान पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने आज सुबह देवीपाटन शक्तिपीठ के गर्भगृह में पहुंचकर मां पाटेश्वरी का दर्शन पूजन किया। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर एके शर्मा ने आज वाराणसी में मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री

0: पूरे घर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश का अग्रणी राज्य बन गया है। उन्होंने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा घोषित पुरस्कारों में प्रदेश ने 4 में से 3 श्रेणियों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ऊर्जा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा और प्रोत्साहन से पूरे देश में सोलर रिवोल्यूशन हो रही है, सौर क्रांति हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के दृष्टि से पूरे विश्व को एक रास्ता दिखाते हुए सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में पूरे देश को उन्होंने ऐतिहासिक प्रगति कराई है।
0: इससे पूर्व वाराणसी में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति पर चर्चा करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में वाराणसी देश में 11वें स्थान पर है और इसे प्रथम स्थान पर पहुंचाने के लिए विशेष रणनीति बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि यह योजना लोगों के बिजली बिल में कमी लाने के साथ अतिरिक्त आय का भी स्रोत बन रही है। बैठक में सौर ऊर्जा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों, सोलर दीदियों और एजेंसियों को सम्मानित भी किया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्य रात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध समिति की 4 दिवसीय बैठक 26 से 29 जून तक आयोजित होगी। बैठक की तैयारियों को लेकर संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने आज पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर भोजन, आवास, यातायात सुरक्षा और अतिथि सत्कार की व्यवस्थाओं की तैयारियों की जानकारी ली। श्री परांडे ने बताया कि बैठक में देश के विभिन्न राज्यों और प्रांतों से लगभग 450 कार्यकर्ता एवं प्रतिनिधि शामिल होंगे। 4 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में संगठन के वार्षिक कार्यों की समीक्षा और विस्तार योजनाओं पर विचार विमर्श होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्यकुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने IPL 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आंधी बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहा। मौसम विभाग के मुताबिक कल से अगले 3 दिनों तक प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। 10 जून को प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के कुछ जनपदों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।

हम आकाशवाणी की गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुनते हैं किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम खेती बारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर

0: मन की बात के संवाद तक
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: पंचो जय जवान जय किसान।
6: हाँ, तो पंच भाई यही नारा के साथ आज का अपन बैठकी शुरू भेल।
5: हाँ भैया, देखा अपन किसान भाई लोग जोन बाटे हैं, वो पारंपरिक खेती के साथ साथ बागवानी, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन जैसन काम भी करल हैं, जोने से उनके नगदी आमदनी भी बनल रहा भैया। और आज हमन के चर्चा कल जाए जे किसान भाई लोग खेती के साथ साथ मत्स्य पालन कैले बा, जे तालाब में मछली पालन कैले बा, वो तालाब के समसामयिक कार्य कैसे करे जो से हमें मछली के भी बढ़वार भी बढ़िया होके और तालाब भी ठीक ठाक रहे और हमें के उनके ज़्यादा लाभ मिल
6: हाँ,
5: सके।
6: भैया लाभ के बात कही जाए तो यानी कि अगर कोनो भी मछली पालन वाले तालाब में अगर रख रखाव होकर हम उनके अच्छे से कही जाए तो ओमे बात बाटे जो मछली बाटे पालल जात बाटे उनका बढ़वार अच्छा हो, और जब बढ़वार अच्छा हुई तब किसान भाई लोगन के ओकर आमदनी अच्छा मिली।
5: रख रखाव खरतीन देखो भैया जोन बात में सबसे बड़ी बात, पहली बात जोन जरूरत होले देख रेख के, ओकर रख रखाव तब्बे हो पाई जब ओकर हम नियमित देख रेख करत रहें, यानी कि हम तालाब के किनारे स्वयं जाएं, ओकरे वस्तु स्थिति से अद्यतन स्थिति से अवगत हुई, ओमे का कमी बा, कोने तरह के परेशानी बा, तो ओकरे बारे में जानकारी हुई तो ओ समस्या के दूर कैले के उपाय कैल जाए। भैया
6: सामान्य तौर से देखा जाए तो तालाब में ही देखे के चाहिए कि कोनो गंदगी तो बाहर से ना आ गई बाटे, वो कि हमेशा साफ करत रहे चाहिए। ओकरे बाद से ध्यान ही देवे के चाहिए कि अगर तालाब में कोनो रसायन का प्रयोग कैल जात बाटे तो ओकर विधि और ओकर मात्रा विशेषज्ञ से सलाह लेके करे के चाहिए। कहें कि कबो कबो ऐसा होला कि बहुत ज़्यादा रसायन का उपयोग कर देवल जा तो उसे पता चले मछली के संकट उत्पन्न हो जाए, तो ऐसा काम नहीं करे के बाटे। किसान भाई लोगन के कोनो भी विशेषज्ञ से राय लेके ओमे रसायन का पानी साफ कैले के तरीका अपनाए पाटे। ए नाते तालाब में रख रखाव करे खातिर विशेषज्ञ से सलाह लेहल जरूरी है, और अगर तालाब में पानी के कमी हो जात बाटे तो धीरे धीरे ओमे पानी की मात्रा भी बढ़ावत रहे के बाटे।
5: हाँ भैया, समय समय पर जैसन जरूरत रहे पानी के भी मात्रा उनमें पर्याप्त मात्रा रहे, और साथे साथे मछलिन के बढ़वार के बारे में भी कर देख रेख करे के चाहिए कि उनके सही समय से सही बढ़वार होत बा कि नहीं होता। अगर नहीं होता तो विशेषज्ञ से राय लेके उनके जो पूरक आहार बा, पोषक आहार बा, ओकर भी समुचित मात्रा वह तालाब में डाल के उनके विधिवत और अच्छा उत्पादन कैल जाए। भैया
6: और बात ये बात है कि हमन के जब बात कर जाते कि जैसे तालाब में रसायन के बात कर जाते तो वही तरह से कोनो भी खेती कर जाते बाटे तो रसायन पर आधारित खेती होत बाटे। तब रसायन पर आधारित खेती जरूर होत बाटे तो खेती पर रसायन का प्रभाव पड़ता है, कबो कबो अच्छा प्रभाव पड़ाला, कबो कबो दुष्प्रभाव भी पड़ाला। तब आज हमन की बात सुनल जाए वार्ता कि कृषि पर रसायनों का प्रभाव होता है, ये विषय पर जानकारी देते बाटे डॉक्टर SD शर्मा।
7: विकास की दौड़ में कृषि जगत पीछे नहीं रहा है। रसायनों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिससे न केवल भोजन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में वरन महंगाई को रोकने में भी काफी हद तक सफलता मिली है। रसायनों का प्रयोग सस्ता, सरल एवं अति कारगर होने के कारण अति लोकप्रिय एवं वांछित है। रसायनों को प्रभाव के आधार पर मुख्य तीन भागों में बांटा जा सकता है, 1 उर्वरक, 2 कीटनाशक और 3 ऑक्सिलरी अर्थात सहायक।

उर्वरक। उर्वरक जीव जंतु अपने भोजन के लिए पौधों पर आश्रित हैं, किंतु पौधों को भी भोजन की आवश्यकता है। प्रारंभिक समय से जैविक खादों का प्रयोग होता आया है। विकास के साथ रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन तो पौधों को वातावरण अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से मिल जाता है, किंतु अन्य तत्वों के लिए उन्हें उर्वरकों पर आधारित रहना पड़ता है। नाइट्रोजन की भरपाई नाइट्रेट्स के द्वारा होती है। बाजार में उर्वरक उपलब्ध हैं। नंबर एक यूरिया, यह सबसे सस्ता और सरल उर्वरक है। इससे केवल नाइट्रोजन की भरपाई हो पाती है। एनपीके उर्वरक, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तत्व एक साथ मिले होते हैं। वास्तव में ये डाई अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट एवं पोटेशियम क्लोराइड का मिश्रण होता है। मिश्रित उर्वरक, ये उर्वरक अलग अलग ग्रेड में आते हैं। प्रत्येक ग्रेड में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम की मात्रा अलग अलग होती है। मृदा की गुणवत्ता एवं फसल के हिसाब से ग्रेड का चुनाव किया जाता है। 10:26:26, 14:35:14 एवं 15:15:15 के अनुपातों में खादें उपलब्ध हैं। कॉम्प्लेक्स उर्वरक, जिन उर्वरकों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पेंटाऑक्साइड एवं पोटेशियम ऑक्साइड मिला रहता है, उन्हें कॉम्प्लेक्स या जटिल उर्वरक कहते हैं। कीटनाशक रसायन, ये फसल को हानिकारक कीटों एवं अन्य बीमारियों से बचाते हैं। फंगस, खरपतवार एवं कुतरने वाले जंतु अर्थात चूहा, खरगोश, साही इत्यादि फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इस प्रकार अमूमन 50% तक उत्पादकता घट जाती है। रसायनों के प्रयोग से इन पर काबू पाया जा सकता है। 19वीं शताब्दी से ही कृषि जगत में रसायनों का प्रयोग हो रहा है। सर्वप्रथम अंगूर की फसल पर सल्फर के छिड़काव से पाउडरी मिल्ड्यू नामक बीमारी को नियंत्रण में किया गया। तत्पश्चात पेरिस ग्रीन नामक रसायन का प्रयोग, जिसमें आर्सेनिक के यौगिक पाए जाते हैं, आलू की फसल को कोलराडो नामक कीट से बचाने के लिए किया गया। इसके बाद तो रसायनों का प्रयोग तेजी से बढ़ने लगा। 1893 तक तकरीबन 42 रसायन विभिन्न कंपनियों ने पेटेंट करा लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद DDT एवं अन्य क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स का प्रयोग कीटनाशक के रूप में विश्व स्तर पर होने लगा। पाइरेथ्रम एवं निकिल सल्फेट, जो तंबाकू में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में होता है। सहायक उर्वरक, इन रसायनों में मुख्य रूप से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आते हैं, जो पौधों की वृद्धि दर को बढ़ाते अथवा घटाते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीटोसिन का प्रयोग कद्दू, तरबूजा, सीताफल, बैगन, तरोई और खीरे के आकार को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग आम व केले को पकाने में किया जाता है। कॉपर सल्फेट का प्रयोग भी फलों को जल्दी पकाने के लिए किया जाता है। मोम अर्थात वैक्स का प्रयोग सेब व नाशपाती को चमक बढ़ाने में किया जाता है। मेटैलिक लेड का प्रयोग सब्जियों को ज्यादा हरा दिखाने के लिए किया जाता है। सैक्रिन का प्रयोग तरबूजे और खरबूजे को मीठा बनाने के लिए किया जाता है। इनमें ऑक्साइड मिला रहता है, उन्हें कॉम्प्लेक्स और जटिल उर्वरक कहते हैं। कई रसायनों को प्रयोग में कीटों को आकर्षित एवं दूर भगाने के लिए किया जाता है। यद्यपि रसायनों के प्रयोग से अद्वितीय हरित क्रांति आई है, 25 वर्ष पहले की आबादी की तुलना में आज की 10% कृषक आबादी 3 गुना अधिक उत्पादन कर रही है, तथापि इन रसायनों का स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः रसायनों के प्रयोग के लिए विभिन्न मानक निर्धारित किए गए हैं, साथ ही कुछ सावधानियां बरतने से स्वास्थ्य एवं वातावरण को बचाया जा सकता है। नंबर एक, खाने से पहले गुनगुने पानी में फल एवं सब्जियों को धोएं,
यथासंभव फलों को 20 मिनट तक पोटेशियम परमैंगनेट के 10% घोल में, अर्थात जिसे लाल दवा भी कहते हैं, डुबाकर रखें। ऐसा करने से हानिकारक कीटनाशक दवाएं ऑक्सीडाइज्ड होकर प्रभावहीन हो जाएंगी। नंबर 2, घर से बाहर रहने पर मोटे छिलके वाले फलों अर्थात केला संतरा आदि का प्रयोग करें।

0: फल एवं सब्जियों को सही तापमान पर रख रखाव करें। सब्जियों एवं फलों को छिलकर प्रयोग करें। डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों का कम से कम प्रयोग करें। कीड़ा लगी सब्जियों एवं फलों से परहेज न करें। ये कीड़े ये दर्शाते हैं कि कीटनाशक का प्रयोग कम से कम हुआ है। डिब्बा बंद वस्तुओं को लेबल पढ़कर ही उसका चुनाव करें। अधिक खाद्य संरक्षक तत्वों जैसे सोडियम बेंजोएट, अजीनोमोटो, हाई फ्रक्टोज इत्यादि से परहेज करें। पत्तेदार सब्जियों को निश्चित रूप से पोटेशियम परमैंगनेट में डुबाकर रखें और किचन गार्डन का निर्माण करें। कृषि जगत में रसायनों के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, जिससे अच्छी पैदावार हो रही है, किंतु ये रसायन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए अत्यंत हानिकारक हैं। इनकी बढ़ती हुई उपयोगिता से पशुओं में भी इन रसायनों का संकलन हो रहा है और वे विभिन्न बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। जल का प्रथम स्तर पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है और पीने योग्य नहीं है, अतः निर्धारित मानकों के अनुसार ही रसायनों का प्रयोग कृषि में किया जाना चाहिए। कार्बनिक कृषि ऑर्गेनिक फार्मिंग पर बल देना चाहिए एवं स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए।
1: हम ये देखा ही महत्वपूर्ण जानकारी या वार्ता के माध्यम से सुने के मिलल कि कृषि पर रसायनों का प्रभाव। जानकारी देत रहने डॉक्टर एस डी शर्मा, एक एक खातिर इनके दिहल जा भैया धन्यवाद। और पंच भाई लोगन के सुनवाओल जाए एक गो गीत, ओकरे बाद अपन बैठकी आगे बढ़ी।

0: हाँ पंच भाई, हम उनके सुनत रहनी अभोरी की यादव उनके साथी के आवाज़ में ये लोकगीत। पंच भाई, हमन के खेती किसानी के बात करी रही तो खेती में जो गुणवत्ता के बात बा तो उसमें लगातार आज के समय में मिलावटी रसायन के उपयोग कैले से कमी आत बात बा। तो नाते जहाँ तक संभव हो सके कि खेती में रासायनिक उर्वरक के स्थान पर कार्बनिक खाद का प्रयोग कैल जा, ए विषय पर एगो बातचीत सुनल जा। मिट्टी में कार्बनिक खाद की मात्रा कैसे बढ़ाएं, जानकारी देत बाटें विद्यापति पाठक और उनसे बतकही करत बाटें ओम प्रकाश त्रिपाठी।
1: विद्यापति पाठक जी, आप पूर्व सहायक निदेशक कृषि विभाग गोरखपुर हैं। पाठक जी, सबसे पहले आपके अपने बैठकी में स्वागत बा। आपन किसान भाई लोग जब खेती करे के बारे में सोचे ना, तब सबसे पहले माटी के ऊपर उनका ध्यान जाला, और माटी के बारे में सोचला पे पता चलेला कि पंच भाई लोग कई तरह के उर्वरक और कंपोस्ट वाली खाद या और कुछ छोड़ के जो माटी का स्वास्थ्य भाव के बढ़ावल चाहेला, लेकिन कुछ चीज ऐसा होले जौन की माटी में न रहला से अपने उत्पादन पर प्रभाव पड़ेला, तो माटी स्वस्थ कैसे रहे, माटी स्वस्थ वा कि नहीं, ये कैसे जानकारी पंच भाई लोग करें?
2: आपकी मिट्टी स्वस्थ है कि नहीं है, इसके लिए ये जरूरी है कि उस मिट्टी के अंदर कौन कौन से तत्व अगर हों तो हम उसको स्वस्थ मानेंगे। सबसे पहले यदि भूमि का पीएच आपका 6.5 से 8.5 के बीच में है तो समझिए कि आपकी मिट्टी सामान्य रूप से स्वस्थ है, न वो ऊसर है न वो अम्लीय है। अब अगर उसका गठन, गठन का मतलब कि

0: में बालू की मात्रा कितनी है, उसमें अन्य आपकी चिकनी मिट्टी कितनी है, तो विशेष कर से जो बलुई से जो चिकनी दोमट मिट्टी होती है वो बिल्कुल स्वस्थ भूमि मानी जाती है, उसमें फसल बढ़िया होता है, उसमें ह्यूमस की मात्रा भी अच्छी
1: है। पंच भाई लोग बलुई दोमट कहे।
0: हाँ, जो के बलुई दोमट से लेकर के दोमट, बलुई दोमट या चिकनी दोमट, अगर यह अगर इस टाइप की मिट्टी है तो समझिए कि आपकी मिट्टी आपके फसल के लिए अति उत्तम है। अब उसमें एक जीवांश कार्बन होता है।
1: अच्छा।
0: अगर जीवांश कार्बन मिट्टी के अंदर 0.8% से अधिक है तो आपकी मिट्टी पूर्ण रूपेण स्वस्थ मानी जाती है।
1: अच्छा।
0: अब इसी प्रकार उसमें मुख्य तत्व जैसे वैसे तत्व तो 18 तत्व होते हैं जो कि जमीन के अंदर होना चाहिए, लेकिन अगर उसमें फास्फेट जो पहले से अगर 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मौजूद है, पोटास 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मौजूद है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी मिट्टी पूर्ण रूप से स्वस्थ मानी जाएगी।
1: अब आप बताइए है कि हमें जो सूक्ष्म जीवांश व कार्बन ऊ हो के चाहिए। हाँ। तो सबसे बड़ी बात तो यह है भाई कि पहचानल कैसे जा
0: जी, जी,
1: कि वो हमें कार्बन बा कि नहीं बा,
0: एक
1: खातिर पंच भाई लोग कौन विधि अपना।
0: देखे, बहुत ही सामान्य विधि हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि वो जब अपने खेत में जाएं तो सबसे पहले मिट्टी को हाथ मिले लें, और मिट्टी को हाथ मिलने पर अगर वो मिट्टी भुरभुरी है,
1: अच्छा,
0: और हाथ में लेने के बाद वो चिपकती नहीं है एवं कंकड़ हाथ में चुभते नहीं है, तो समझिए कि आपकी मिट्टी में ह्यूमस है, आपकी मिट्टी में कार्बन मौजूद है।
1: अच्छा।
0: अगर हम मिट्टी को अपने भूमि को देखेंगे तो भूमि उनकी काले भूरे रंग की दिखाई देगी, और अगर ऊपर पानी डाला जाएगा तो बहुत ही कम देर में वो पानी सोख लेगा, यानी पानी अवशोषित हो जाएगा।
1: अच्छा,
0: तो हम समझ जाएंगे कि हमारी मिट्टी सही है, इसमें कार्बन मौजूद है, इसमें जीवांश कार्बन उपलब्ध है, और वो हमारी फसल के लिए अति उत्तम है।
1: अच्छा, ये कार्बन जो ना बतैली है
0: जी जी,
1: अगर मान लिया जाए कि पंच भाई लोग गए पहचान कई लें, पहचान का तरीका आप बता दहली कि अगर मिट्टी कठोर नाई बा और मिट्टी जोन बा मुलायम बा, हाथे में चपकत नाई बा, तो कि मान के चले कि भाई इसमें कार्बन जोन बा और अगर कठोर बा तो भाई कार्बन का कमी बा, और अगर वो कार्बन नहीं बा
0: जी जी जी,
1: तो उससे अपने उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा?
0: बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर मिट्टी के अंदर कार्बन नहीं है, जीवांश कार्बन नहीं है, तो सीधा उत्पादन पर असर पड़ता है। सबसे पहले तो असर पड़ता है कि हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व की मात्रा उसमें कम मिलेगी।
1: अच्छा।
0: अगर उसमें कार्बन की मात्रा कम है तो हमारे जितने सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जैसे मॉलिब्डेनम, बोरान, तांबा, मैग्नीज, लोहा, जिंक, सल्फर, ये जो तमाम किस्म के हमारे सूक्ष्म तत्व हैं, वो उसकी मात्रा कम मिलेगी। लाभदायक जो हमारे जीवाणु हैं उसकी मात्रा कम मिलेगी। हमारी फसल की हमारी जो मिट्टी उतनी भुरभुरी नहीं रहेगी, पानी सोखने की क्षमता उतनी नहीं रहेगी, तो यह सीधा उत्पादन पर असर डालता है। इसीलिए जरूरी है कि जमीन में 0.8% से ज्यादा कार्बन हो, तभी हमारे फसल के लिए उपयुक्त होगा।
1: अच्छा, आप बतैली कि इतना कार्बन चाहिए, तो अगर ये कार्बन का कमी बा
0: जी जी,
1: तो का पंच भाई कोनो ऐसा विधि बा जोने से वो के पूरा कर सकेला?
0: जी जी, बहुत ही आवश्यक, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिये, आजकल का जो प्रवेश चल रहा है वो ज्यादातर किसान भाइयों के अंदर एक होड़ सी लगी हुई है कि रासायनिक खाद ज्यादा से ज्यादा खेतों में डाला जाए, और रासायनिक खादों रासायनिक उर्वरक का अंधाधुंध प्रयोग करके किसान अपने खेत को खेत की भौतिक दशा बिल्कुल निम्न स्तर से बनाता हुआ चला जा रहा है। परिवेश भी हमारा बदलता गया। जैसे पहले हरी खाद बोने का प्रचलन था, नीम की खली हम लोग डालते थे, देहातों में तेल निकालने के बाद से जो उसका अवशेष बनता है उसको हम लोग खेत में डालते थे। हमारे गांव पर या घर पे पशुओं के रखने का प्रचलन ज्यादा था, क्योंकि हल से जुताई होती थी तो गोबर की मात्रा ज्यादा मिलती थी, तो ज्यादातर किसान भाइयों के पास गोबर की खाद प्रचुर मात्रा में हो जाता था। आज के परिवेश में ट्रैक्टर से जुताई हो रही है, और ज्यादातर यंत्रीकरण की व्यवस्था होने के कारण जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हमारा ध्यान बहुत ही कम जा रहा है, जिसका बहुत बड़ा कुप्रभाव हमारे फसल के ऊपर पड़ रहा है।
1: मतलब जो रासायनिक खाद खेती में,
0: हाँ, रासायनिक खाद का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग जो हमारे किसान भाई कर रहे हैं, इससे हमारे खेत की दशा बिगड़ती जा रही है। अब हम ये सुझाव देंगे कि कैसे इसको कैसे कार्बन की मात्रा बढ़ावें, इसके लिए हम किसान भाइयों को सबसे पहले सुझाव देंगे कि वो जीवांश खाद का प्रयोग करें। जीवांश खाद का मतलब कि कंपोस्ट खाद डालें, उसमें गोबर की खाद डालें, वर्मी कंपोस्ट बनावें, जो बहुत ही आसान है। उनके घर पर जो आपके जड़, पत्ती, तना, फल आदि का जो अवशेष बचता है उसको इकट्ठा करके उसको थोड़ा सा सड़ी हुई गोबर की खाद लेकर के उसको सड़ा लें, और सड़ाने के बाद से सड़ने के

0: बाद से अगर उसको खेत में डाला जाए तो आसानी से हमारे खेत में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। अब थोड़ा सा इसका हम विधि एक वैज्ञानिक तरीके से भी बता रहे हैं। मान लें कि अगर किसान भाई को कंपोस्ट खाद बनाना है तो कंपोस्ट खाद में 100 किलोग्राम गोबर ले लीजिए, 15 क्विंटल फसल अवशेष का ले लीजिए जो कि फसल के तमाम अवशेष में बचते हैं,
1: धान काटल गई ओकर डंठल
0: जी जी जी जी
1: जी इस सब लेके बनावल जाए।
0: हाँ, और उसके बाद से कुछ मिट्टी मिला लीजिए और मिला करके इसको इकट्ठा कर लीजिए। ये 90 दिन में ये खाद आपकी तैयार हो जाएगी, लगभग 30 क्विंटल की होगी और आराम से ये तैयार हो जाएगी। और इसको होने के बाद से आप अच्छा इसका जो गड्ढा बनाएंगे 2 मीटर × 2 मीटर × 1 मीटर का गड्ढा बनता है तो आसानी रहता है। नीचे हम कुछ छेद कर देते हैं, जैसे एक तो जमीन से ऊंचा गड्ढा होना चाहिए, जो हम जहां हम बनाएंगे कंपोस्ट खाद वो जमीन के बराबर न हो, जमीन से थोड़ा ऊंचा हो, गड्ढे की लंबाई 2 मीटर, गड्ढे की चौड़ाई 2 मीटर और गहराई 1 मीटर हो। नीचे उसके सतह पर हम कुछ छेद बना देते हैं, जैसे अगर मान लीजिए अगर लकड़ी का अगर तख्ता अगर नीचे बनता है कोई, अगर हम डब्बा टाइप की चीज में अगर हम खाद तैयार कर रहे हैं तो नीचे कम से कम 10 से 15 छेद कर दें जिससे कि नीचे से हवा का आदान प्रदान होता रहे। इस हिसाब से अगर वो उस कंपोस्ट को लेकर के हम सड़ाते हैं तो वो 90 दिन में हमारी खाद बनकर तैयार हो जाती है और वो आराम से हम खेत में डाल करके अपने खेत में कार्बन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं और जिससे कि हमारे फसल के लिए काफी फायदेमंद होगा। अब ये तो हो गया कंपोस्ट खाद का, ऐसे ही वर्मी कंपोस्ट भी बनाया जाता है। वर्मी कंपोस्ट में केचुए का प्रयोग किया जाता है। अब केचुए उसमें 2-3 किस्म के केचुए होते हैं, वैसे ज्यादातर इधर इसेनिया फुडिडा नाम का एक होता है केचुआ जो कि लाल रंग का होता है। इसमें भी हम करते ये हैं कि स्थान का जो चुनाव करते हैं किसी पेड़ के नीचे किसी छायेदार स्थान पर वो स्थान का चुनाव करते हैं और कुछ ऊंचा स्थान होना चाहिए। इसमें सबसे नीचे 11 सेंटीमीटर ईंट या पत्थर की परत बिछा देते हैं, उसके ऊपर 20 सेंटीमीटर मोरंग या बालू की तह डालते हैं, इसके ऊपर 15 सेंटीमीटर उपजाऊ मिट्टी डाल देते हैं, फिर उसके बाद 1 किलोग्राम आधा सड़ा गोबर की खाद लेके उसको छिड़क देते हैं और उसके बाद लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर घरेलू कचरा जो इसके ऊपर तमाम जो डंठल उंठल बचा रहता है उसको डालते हुए चले जाते हैं। ये स्थिति करने के बाद ये खाद हमारी तैयार हो जाती है और इसके सड़ने के बाद अगर इसका प्रयोग अगर किया जाता है तो वो भी हमारे खेत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अब इसी के साथ साथ प्रेसमेट खाद भी बनती है, प्रेसमेट जो कि गन्ने का जो अपशिष्ट होता है या सीरा या प्रेसमेट, ये भी जो है भूमि सुधारक के रूप में इसका प्रयोग करके अगर खेत में डालें तो ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है। और
2: पंच भाई हमके सुनत रहनी कि मिट्टी में खाद का मात्रा कैसे बढ़ावल जाए वो विषय जानकारी देते रहना विद्यापति पाठक जी, इनके दिहल जाए धन्यवाद। और घड़ी के सुई यही के साथ इशारा कर रहा बा कार्यक्रम के समाप्त करे बदे, कल फिर मिलल जाए यही समय, तब तक खातिर पंचो जय जवान जय किसान।

अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम खेती बारी। हम आकाशवाणी की गोरखपुर की इंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए, कोई व्यक्तियों के संबंध में सोचना। मोहम्मद शाबिर अपनी पत्नी हाजरा खातून के लापता होने की सूचना हम तक देते हैं। हाजरा की उम्र है 25 वर्ष, लंबाई 5 फीट 2 इंच, रंगोरा, दिनांक 11 अप्रैल 2026 से लापता हैं। इनके बारे में अगर आपके पास कोई सूचना हो तो इस पते पर सूचित करें। मोहम्मद शाबिर, रसूलपुर अजय नगर, थाना गोरखनाथ, गोरखपुर। मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 7307165769। टेलीफोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 7307165769। प्रहलाद अपने पुत्र पवन कुमार के लापता होने की सूचना हमें देते हैं। पवन कुमार की उम्र है 53 वर्ष, रंगे हुआ, लंबाई 6 फीट, ये दिनांक 10 अप्रैल 2026 से लापता हैं। इनके बारे में अगर आपके पास कोई सूचना हो तो इस पते पर सूचित करें। श्री प्रहलाद, मकान नंबर 18, ब्लॉक W, काशीराम।

वाणी एट 90.90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल कल भी।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: शास्त्रीय संगीत नृत्य साहित्य नाट्य विधाएं धारावाहिक वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
2: यह आकाशवाणी गोरखपुर है, लोकधारा में आज की कलाकार हैं वीरेंद्र चौधरी और साथी।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल कल भी

0: अभी आपको लोग ये सुना रहे थे वीरेंद्र चौधरी और साथी। अब आज का लोकधारा का यह समाप्त होते हैं। हम आकाशवाणी के गोरखपुर के इंद्र से बोल रहे हैं। देश हमारे का यश में लीजिए सुनिए उमेश चंद्र शुक्ल से कहानी बुना हुआ।
1: बुना फुआ मिसुरपुर गांव के बहुत मान जाने वाली रहलिन। केहू उनके हुकूम अदूली करे के हिम्मत नाही कह पावत रहल। गांव भर में केहू के घर के सास पतोहू के झगड़ा होए या बूढ़ा बूढ़ी अपने बेटवा से रिसियाए के कहूँ जात होए और केहू घर में भाई भाई के बीच के अलगा बिलगा होए, बूना फुआ के पहुँचले पर हर तरह के मरहला शांत हो जात रहल। सफ़ेद सुच्चा साड़ी पहने वाली एकदम गोरहर शरीर यह बूना फुआ के पहचान रहल। 75 बरस के पुरनिया भैले के बादे भी

देईकी उ जय मंगल मिसिर के इकलौती बिटिया रहलिन। चार बेटवन के बादे भैले के नाते उ अपने माँ बाप के बड़ी दुलारी रहलिन। जय मंगल मिसिर अंग्रेजन के समय में अपने जवार के जमींदार रहलें। जिला भर के हाकिम हुक्काम महीना में एक दाई उनके घर पर दावत पे बुलावल जात रहलें। यही नाते कोर्ट कचहरी थाना आदि जगही उनके जाते काम बन जात रहल। बूना फुआ के बाबा मकरत ध्वज मिसिर बड़ा कड़क और खरखर जमींदार रहलें। उनके आदेश बंदूक के गोली जैसन तेज रहल। अपने बचन से टस मस होब उ नाही सिखले रहलें। बकिर मकरत ध्वज मिसिर पुरान परंपरा रीत रिवाज शरीरी के साथे वढ़ले रहत रहलें। शायद यही बदे उ 12 बरस के इकलौती बिटिया के पांव पूजब मुनासिब समझ के ओकर ब्याह तय कह दहने। बूना फुआ के ब्याह बाहिल पार के पंडित धरिक्षण तिवारी के बड़के लयिका से तय हो गईल। पंडित धरिक्षण तिवारी मन के बड़ा फैलहर आदमी रहलें। उनहू अपने जवार के बड़वर धनी रहने। इज्जत बात मान प्रतिष्ठा खातिर 10-5 बीघा खेत बिक जाब उनके लिए गाजर मुरई नाई रहल। धरिक्षण बाबा बरात बहुत धूमधाम गाजा बाजा के साथ लेने। दुआर पूजा में हाथी घोड़ा के लाइन लग गईल। समूचा जवार ई बरात देखे खातिर उमड़ी परल। नच देखवा सजवें से लाठी भाला लई के खाभे लगने। धरिक्षण तिवारी के बरात और बहुते कामिल नाच के चर्चा आज भी गांव के पुरनिया लोग करें। कुआर बूना फुआ माथे में चुटकी भर सेनूर पड़ते सुहागिन हो गईन। बकिर विधाता के ई गाजा बाजा हाथी घोड़ा के धमा चौकड़ी तनिको भर नीक नाही लगल। विपत्ति के पहाड़ जयमंगल मिसिर के परिवार पर टूट पड़ल। बरात लौट के जब धरिक्षण तिवारी के घर ओरी जाए लगल तब्बे राही में शराब पी के गाड़ी चलावे वाला ड्राइवर दुल्हा के गाड़ी पेड़े से लड़ाए दहलिस। जौने से दुल्हा सहबाला और नाऊ घटनास्थल पर ही आपन दम तोड़ दहने। ई दुखद सूचना मिसिरपुर गांव में बिजली नाइन पहुँच गईल। जयमंगल मिसिर दमादे के सरग सिघरले के अशुभ समाचार सुनते पछाड़ खाई के गिर गई ने। बूना फुआ के ऊपर बज्जर गिर गईल। उ बेहोश हो गईलिन। यखा गांव जयमंगल बाबा के दुआरे पर जमजमाई गईल। पुरनिया मखरत ध्वज बाबा वही लागे से खटिया पकड़ लेने। यक्के महीना में बूना फुआ दुबराई के कांटा हो गईन। ई बज्जरपात उन्हें एकदम कमजोर कई दहलिस। साल भर बाद धरिक्षण तिवारी अपने विधवा पतोहू के लई जाए के लिए आईने। बूना फुआ अपने ससुरे जाए के तैयार हो गईन। लेकिन
चारों भौजाई भाई बाबा मकरध्वज पिता जयमंगल मिसिर मुन्ने नाही जाए धन टोला टाटी पवनी परजा भी बूना फुआ के नाही जाए खातिर चिरौरी कैलिस खटिया पकड़ लेवे वाले घर के मालिक मकरध्वज बाबा की

0: हुकुम पर वही दिन में से गोदाम और तिजोरी के चाबी उन्हें पकड़ाए दिहल गईल। घर के अलावा गांव भर के लोग भूना फुआ के आपन बहिन फुआ माने लगने। दुल्हा दुल्हन पहल पहल उठी उनके गोड़ धई के आपन जिंदगी सुखमय बनावे खातिन आशीर्वाद लेत रहने। गांव जवार के गरीब लैकनी के ब्याहे में सहयोग करब बूना फुआ के जिंदगी के मिशन बन गईल। केहू के अनभल सोचब ईर्खा द्वेष करब उनके स्वभाव में नाही रहल। जय मंगल मिसिर के घर में अंदर से बाहर तक बूना फुआ के हुकुम चलत रहल। तीर्थ व्रत पूजा पाठ बूना फुआ के जिनगानी के हिस्सा बन गईल। गांव के मंदिर के शिलान्यास उन्हीं के हाथे से भइल। गांवे के लोग अपने मकाने के पहल की ईंट उन्हीं से रखवावत रहलें। गांव जवार घर परिवार के कौनो मनई कब्भों भूना फुआ के विधवा अभागिन अशुभ स्त्री के रूप में नाही देखने। मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिने दुपहरिया में बिना कोनो बीमारी के बूना फुआ के प्राण पखेरू उड़ी गेल। भौजाई लोगन पछाड़ खाए के गिर गेलिन। चारों भाइन के हाल रोई रोई के बुरा हो गेल। बाप जय मंगल के फालिज मार दहलिस। नैहरे में सगरो जिंदगी बिताए देवे वाली न जानी कितनी बूना फुआ कुल दुख दर्द समेट के पुण्य जमाने में होती रहने।
1: बूना फुआ, अभी आपको ये कहानी सुना रहे थे उमेश चंद्र शुक्ल। अब अच्छा दिसंबर का इशम संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रादेशिक संगीत कार्यक्रम में लीजिए सुनिए भोजपुरी लोकगीत।

क्षेत्र संगीत कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे भोजपुरी गीत। ये आकाशवाणी गोरखपुर है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा में 516 करोड़ रुपए की 262 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बिना भेदभाव की सरकार पहुंचा रही है योजनाओं का लाभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया भर में छाई आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक आर्थिक शक्ति में बदला भारत। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज महाराजगंज में गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। कहा, 12 वर्षों में देश में हुआ शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन। और वाराणसी में आयोजित 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन के बाद विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने आज भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ का किया भ्रमण। समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के अनुभव को बताया अविस्मरणीय। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा से कुल 516 करोड़ रुपए की लागत की 262 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें कटरा विधानसभा क्षेत्र में 256 करोड़ रुपए और करनैलगंज में 260 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 9 वर्ष में डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का परिणाम है कि प्रदेश की नई पहचान बनी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास विजन के तहत सरकार बिना भेदभाव घर घर तक विकास योजनाएं पहुंचा रही है।
1: हर पात्र व्यक्ति को, वह किसी जाति का हो, किसी मत संप्रदाय का हो, अगर वह पात्रता की श्रेणी में आता है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उसको योजना का लाभ दिया जाएगा। और यही तो मोदी जी ने कहा था, सबका साथ और सबका विकास।
0: इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने सुबह तुलसीपुर में देवी शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी मंदिर में दर्शन पूजन किया और मां से सुखी स्वस्थ और समृद्ध उत्तर प्रदेश की कामना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया।

0: है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: इस बीच 3 दिवसीय दौरे पर कल लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दौरे के दूसरे दिन विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने हरदोई रोड स्थित मिलेनियम पैलेस में पश्चिम मंडल 2 के प्रबुद्ध नागरिकों और गणमान्य व्यक्तियों के साथ संवाद बैठक की। केंद्र सरकार के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित विकास तीर्थ कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज महाराजगंज जिले में संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। श्री चौधरी ने जनपद के प्राचार्य एवं शिक्षकों के साथ संवाद कार्यक्रम में सहभागिता भी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में शिक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। नई शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण रोजगारपरक एवं तकनीक आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत तथा नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ प्रत्येक परिवार तक शीघ्रता से पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वाराणसी में आयोजित पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री श्री शर्मा ने योजना की प्रगति, उपलब्धियों और आगामी कार्य योजना की विस्तार से समीक्षा की। एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और प्रोत्साहन से देश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रहा है।
2: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा और प्रोत्साहन से पूरे देश में सोलर रिवोल्यूशन हो रही है, सौर क्रांति हो रही है। उसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा लगभग 2 साल पहले की गई थी और उस योजना के क्रियान्वयन में पूरे देश में काम हो रहा है। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी हम लोग पीएम सूर्य घर को लेकर के प्रगति कर रहे हैं।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर आज बस्ती पहुंचे। मीडिया से बातचीत में श्री राजभर ने कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करती है, इसलिए वो इतने लंबे समय तक शासन करने वाले प्रधानमंत्री बने हैं।
3: मोदी जी पर देश के 140 करोड़ जनता विश्वास कर रही और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाया। 10 जून को 12 साल कार्यकाल पूरा उनका होगा और देश में आजादी के बाद पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी होंगे जो लगातार लंबे समय तक देश में शासन करने वाले प्रधानमंत्री गिने जाएंगे।
1: प्रदेश में सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार आज परीक्षा की तैयारियों का पूर्वाभ्यास किया गया। इसी क्रम में अमरोहा में आज जिलाधिकारी डॉ नितिन गौड़ एवं पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने परीक्षा की तैयारियों को परखा। कानपुर में प्रशासन ने व्यवस्थाओं को लेकर गोष्ठी आयोजित की, साथ ही रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परिवहन निगम रियायती दरों पर परीक्षार्थियों को सेवा उपलब्ध कराएगा। वाराणसी में आयोजित 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन के सफल समापन के बाद विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने आज वाराणसी में दीनदयाल हस्तकला संकुल का दौरा किया। सदस्यों ने यहां भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा की समृद्ध विरासत को दर्शाने वाले संग्रह को देखा। इससे पूर्व प्रतिनिधिमंडल ने भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ का भ्रमण किया। बौद्ध तीर्थस्थल के दर्शन के दौरान प्रतिनिधि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित नजर आए। ब्राजील से आए प्रतिनिधि लुकास ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि ये अनुभव उनके लिए बेहद प्रेरणादायक और अविस्मरणीय रहेगा। प्रतिनिधियों ने बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर का भी भ्रमण किया। इस अवसर पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ. अरविंद कुमार ने बताया कि इस भ्रमण का उद्देश्य विदेशी प्रतिनिधियों को भारत की वास्तविक सांस्कृतिक धरोहरों और जीवंत परंपराओं से रूबरू कराना है।
4: ब्रिक्स मीटिंग, उसमें कई सारे ट्रैक्स होते हैं, उसमें ट्रेड है, एनवायरनमेंट है, कल्चर इज आल्सो वन ऑफ द ट्रैक ऑफ ब्रिक्स मीटिंग्स। तो कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट ट्रैक है और कल्चर के हम बातें तो करते हैं मीटिंग में, जब तक दिखाएंगे नहीं तो उनको शायद

0: ना समझ में नहीं आए, हम चाहते हैं कि हम जो भी कल्चर के बारे में बात करते हैं उसको हम दिखाएं भी।
1: अयोध्या के श्री राम मंदिर परिसर में स्थित शेषावतार मंदिर के शिखर पर 23 जून को ध्वजा स्थापना होगी, जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं।
2: प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उनके कर कमलों के द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम सम्पन्न होगा और इसके लिए जो है कार्यक्रम की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। लोगों को निमंत्रित किया जा रहा है और यह संख्या भी जैसा बताया गया ट्रस्ट के द्वारा 3000 से ऊपर संख्या होगी और हम सब उसके साक्षी बनने जा रहे हैं, क्योंकि अब यह शेषावतार का जो मंदिर है, जो शिखर है, वह बहुत लंबे प्रतीक्षा के बाद अब उस पर ध्वजारोहण होने जा रहा है।
1: प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज प्रयागराज में वाराणसी विंध्याचल एवं प्रयागराज मंडल की संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2026 का उद्घाटन किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज सर्वाधिक अनाज उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में आज मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में भी प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा में 516 करोड़ रुपए की 262 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बिना भेदभाव के सरकार पहुंचा रही है योजनाओं का लाभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया भर में छाई आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक आर्थिक शक्ति में बदलाव भारत। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज महाराजगंज में गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। कहा, पिछले 12 वर्षों में देश में हुआ शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन। और वाराणसी में आयोजित दो दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन के बाद विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने आज भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ का किया भ्रमण। समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के अनुभव को बताया अविस्मरणीय। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
4: यह आकाशवाणी गोरखपुर है। आज का संगीतकार फिल्म संगीत इस कार्यक्रम में लीजिए सुनी जितेंद्र ललित के संगीतबद्ध कुछ फिल्मी गाने हैं।

0: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
1: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
0: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
1: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष

और सफलता का साक्षी है सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: स्वच्छता से बदले अपना परिवेश, स्वच्छ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाएं।
1: स्वच्छता अपनाएं, स्वास्थ्य का आनंद उठाएं।
0: गंदगी हटाओ, स्वच्छता लाओ, स्वस्थ जीवन जीने का सपना साकार करो।
1: स्वच्छता की आदत स्वस्थ जीवन की शुरुआत।

0: इस गाने के साथ ही हमारे आज का फिल्मी गीतों का जी का एक श्रम समाप्त होता है। इसमें आज आप सुन रहे थे कई श्रम आज के संगीतकार और हम सुनवा रहे थे आपको जाने माने संगीतकार जितेन ललित के संगीतबद्ध कुछ फिल्म गाने। आज की फिल्में थी जो जीता वही सिकंदर, कभी हाँ कभी ना, दिल वाले दुल्हनी ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, प्यार तो होना ही था। आवाजें थी उदित नारायण, साधना सरगम, कुमार सैनू, लता मंगेशकर और अलका याग्निक। गीतकार थे मजरू, आनंद बख्शी समीर और विनोद महेंद्र। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हिंदी कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाते हैं देवेश प्रकाश श्रीवास्तव की वार्ता गोरक्षनाथ मंदिर का पौराणिक महत्व।
1: धर्म दर्शन, अध्यात्म और साधना के विभिन्न और मत मतांतरों में नाथ संप्रदाय का एक प्रमुख स्थान है। देश विदेश में नाथ संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों और योगियों ने अपनी साधना और तत्व ज्ञान की महिमा से उस अंचल को पवित्र किया। दुनिया भर में स्थित नाथ संप्रदाय के तीर्थ स्थलों, मंदिर, मठ, आश्रम और खो तद गुफाएं इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नाथ संप्रदाय का अतीत बेहद गौरवशाली और मानवता के लिए कल्याणकारी रहा है। नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति आदिनाथ भगवान शिव द्वारा मानी जाती है। नवनारायणों ने नवनाथों को समय समय इस धरा धाम पर उतार कर उनकी कृति मानव कल्याण के लिए बिखेरी। भगवान शिव से जो तत्व ज्ञान श्री मत्स्येन्द्र नाथ ने प्राप्त किया, उसे ही शिष्य बनाकर शिव अवतार गुरु गोरक्षनाथ ग्रहण किया तथा नाथ पंथ और साधना के प्रतिष्ठापक परमाचार्य के रूप में यश प्राप्त किया। स्वयं भगवान शिव ने महाकाल योग शास्त्र में कहा है, अहमेव वसिम गोरक्षो मुद्रम तद्रिबोधत योग मार्ग प्रचारय मयारूपमिंदम घृतम, अर्थात आदि में गोरक्ष हूँ, उन्हें मेरा ही रूप जानो। योग मार्ग के प्रचार के लिए मैंने ही यह रूप धारण किया है। गोरखपुर स्थित गोरक्षनाथ मंदिर के अनुसार श्रीनाथ जी गोरखटिला झेलम पंजाब से आए थे। वहीं नासिक के योगियों का मत है कि श्रीनाथ जी पहले नेपाल, फिर वहां से पंजाब और फिर नासिक की ओर आए थे। ऐसा भी मत है कि वह पंजाब के ही निवासी रहे होंगे। मिस्टर ग्रियर्सन का मत था कि वे संभवत पश्चिमी हिमालय के रहने वाले थे और उन्होंने ही नेपाल को आर्य अवकालितेश्वर के प्रभाव से

0: दबा लिया। सारे नेपाल में अकाल पड़ गया। वर्षा न होने के कारण अन्न के लिए त्राही त्राही हो गई। राजा प्रजा सब उनके पास पहुँचे और प्रार्थना की। बताते हैं कि तब राजा प्रजा सब मत्स्येंद्रनाथ जी के पास गए, उन्हें प्रसन्न कर गोरक्षनाथ जी के पास लाए। अपने गुरु को सामने देख गोरखनाथ जी स्वागत में खड़े हो गए और मेघ मालाएं मुक्त हो गईं। तदुपरांत भारी वर्षा हुई। इस घटना की स्मृति में नेपाल में आज भी एक रथ यात्रा निकाली जाती है। गोरक्षनाथ ने नेपाल में बागमती नदी के तटवर्ती सिद्धाचल पर मृगस्थली में विकट तप किया। यहाँ आज भी नाथ योगियों का बड़ा मठ है। नेपाल के राजवंश पर गोरक्षनाथ जी की कृपा सर्वविदित है। शाह राजवंश के स्थापक महाराजा पृथ्वी नारायण शाह ने श्रीनाथ जी की कृपा से ही 22 और 24 में बटे नेपाल को एक छत्र के नीचे संगठित किया। इसकी स्मृति में नेपाल की राजमुद्रा में श्री गोरक्षधाम तथा राजमुकुट में उनकी चरण पादुका के चिन्ह अंकित हैं। नेपाल के दांग प्रखंड के राजकुमार रथ प्रक्षित ने श्रीनाथ जी से दीक्षित होकर दीर्घायु पाई और फिर बाबा रत्ननाथ के नाम से पूरे एशिया में नाथ संप्रदाय का नाम रोशन किया। बताते हैं हजरत मोहम्मद साहब के साथ ही भी इनका सत्संग हुआ था। श्रीनाथ जी ने उन्हें एकमात्र पात्र भी दिया था। यह एक पाषाण लिंग है, किंवदंतियां हैं। श्रीनाथ जी की आत्मा इसमें प्रतिष्ठित है। 8वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजा व पारावल को गोरक्षनाथ जी ने एक वरदानी खड़क प्रदान किया था, जिसके बल पर उन्होंने सुदूर खुरासान तक अपनी विजय पताका लहराई। दशहरे के अवसर पर इस खड़क की आज भी पूजा होती है। श्रीनाथ ने नेपाल भारत सीमा पर शक्ति पीठ पर देवी पाटन में भगवान शिव के आज्ञा से तपस्या की थी। एक कहानी के मुताबिक दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देने वाली सती का निष्प्राण शरीर लेकर महादेव के भ्रमण करते समय देवी का पट वामस्कंद सहित इसी पाटन के पुट क्षेत्र में गिरा था। उसी स्थान पर आज ही यह शक्ति पीठ स्थापित है। स्लायकोट के राजा सालिवाहन के पुत्र पूरन भगत की कहानी सारे पंजाब और अफगानिस्तान तक प्रसिद्ध है। रमता योगी श्री गोरक्षनाथ जी उन अनेक स्थानों पर साधना की जो उनके तत्प्रश के कारण तीर्थस्थल बन गए। यहाँ श्रद्धालु आज भी बड़ी आस्था के साथ इनका पूजन करने जुटते हैं। सूफी संत कबीर दास ने भी उनके अमरता की बात कही है। साकी गोरखनाथ ज्यों अमर भये काली माही। मौजूदा गोरखनाथ मंदिर का वर्णन मध्यकालीन कवि उस्मान ने भी अपनी चित्रावली में किया। इससे पता चलता है कि सुबह के वक्त यहाँ अनवरत योग साधना चलती थी। इस स्थान को आज गोरखनाथ मंदिर है। यह वही स्थान है जहाँ ज्वाला देवी के स्थान से भ्रमण करते हुए यहाँ पहुँचकर भगवान गोरक्षनाथ ने अपनी धुनी रमाई थी। यहाँ आज भी यह धुनी अनवरत प्रज्वलित है। मंदिर के निकट मानसरोवर नामक तड़ाक से इसकी पवित्रता और दिव्यता जन जन को प्रेरित करती है। 52 एकड़ के क्षेत्र में स्थित मंदिर अत्यंत रमणीय है। हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर यह खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा है। इस अवसर पर गोरक्षनाथ मंदिर में लाखों श्रद्धालु देश दुनिया के कोने कोने से आते हैं और भगवान गोरक्षनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार भगवान बुद्ध द्वारा उपदिष्टित तत्व ज्ञान चीन जापान सम्राट अशोक कनिष्क तथा हर्ष के शासन काल में भारतीय प्रतिष्ठा का मानदंड बना, उसी तरह 8वीं शताब्दी के पहले से ही नाथ संप्रदाय का योग महाज्ञान तेजी से दुनिया के अनेक देशों में करोड़ों लोगों को संतृप्त कर रहा है। गोरखनाथ मंदिर की योग परंपरा की वृद्धि योगी राज बाबा गंभीर नाथ जी, महंत दिग्विजय नाथ जी और मौजूदा महंत श्री अवैध नाथ जी महत्वता विशेष उल्लेखनीय है। मेवाड़ वंश से जुड़े महंत दिग्विजय नाथ जी ने इस अंचल में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना कर अनेक शिक्षण संस्थाएं स्थापित की। इस कार्य के उनके शिष्य अवेगनाथ ने भी खूब पुष्पित पल्लवित किया। महंत अवेगनाथ के उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ शिक्षा के साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र में भी कदम बढ़ाकर पूर्वांचल के लोगों की सेवा कर रहे हैं।
1: गोरक्षनाथ मंदिर का पौराणिक महत्व। अभी इस विषय पर प्रकाश

0: चल रहे थे दिवेश प्रकाश, अब आज का हिंदी कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल। कल भी

0: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
1: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
0: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
1: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
0: हमारा फोन नंबर है 220-24075 या 228-6016 और STD कोड 022।
1: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
3: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
4: अखबार, प्लास्टिक, कागज, सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाए, यही है हमारी पहचान।
3: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
4: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
5: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
6: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
5: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
6: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
5: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
6: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
5: For details log on to www.ddindia.com।

Akashvani at 90. ये आकाशवाणी गोरखपुर है। आई सुनते हैं सुगम संगीत का सुगम कलाकार हैं तमन्ना भानू।

जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है। मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

0: स्वच्छता से बदले अपना परिवेश, स्वच्छ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाएं।
1: स्वच्छता अपनाएं, स्वास्थ्य का आनंद उठाएं।
0: गंदगी हटाओ, स्वच्छता लाओ, स्वस्थ जीवन जीने का सपना साकार करो।
1: स्वच्छता की आदत, स्वस्थ जीवन की शुरुआत।

0: स्वच्छता का संदेश फैलाओ, हर जगह सफाई लाओ,
1: कूड़ा कचरा सही जगह डालो, स्वच्छता की आदत अपनाओ,
0: साफ सफाई से जीवन सुहाना, स्वस्थ समाज का सपना सजाना,
1: गली मोहल्ला शहर हर क्षेत्र हो चमकदार, स्वच्छता का नियम सबको समझाओ बिरयार।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा।

0: इसी से यह महाराज का सुगम संगीत का यह कार्यक्रम संपन्न होता है। यह आकाशवाणी गोरखपुर ही रात्रि के 8:45 में कुछ पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा, दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
2: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
3: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
4: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों

0: की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
2: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
1: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारको दुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारको दुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में चौथे लैवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लैवेंडर गोज ग्लोबल। 2 दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लैवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लैवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लैवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है।

0: एक्ट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
2: खाड़ी देशों और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमेरिकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुक में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
3: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपनी आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने छठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल

gmail.com or WhatsApp on 9289094044. Spotlight.

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। हिंदी पत्रकारिता अपने 200 वर्ष पूरे कर रही है। उन महिला पत्रकारों को याद करना जरूरी है जिन्होंने पर्दे के पीछे नहीं बल्कि मोर्चे पर खड़े होकर कलम उठाया। रोशनी गुलाबी रोशनाई की आज का हमारा संपादकीय इसी यात्रा को सलाम करता है। आज से लगभग 200 साल पहले 30 मई 1826 को कलकत्ता की एक तंग गली में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में उदंत मार्तंड का पहला अंक प्रकाशित हुआ था। लेकिन इस सूर्योदय की कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम उन महिलाओं के योगदान को स्वीकार नहीं करते जिन्होंने पितृसत्तात्मक समाज की बेड़ियों को तोड़कर कलम उठाया, पत्रिकाएं निकाली और हिंदी पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया। भारत की पहली महिला पत्रकार के रूप में हेमंत कुमारी देवी चौधरानी का नाम अंकित है। 19वीं सदी के आखिर में जब भारतेंदु हरिश्चंद्र के कलम का चर्चा चारों ओर था, हेमंत कुमारी देवी उनकी समकालीन लेखिका और संपादिका के रूप में सक्रिय थीं। सन 1888 में उन्होंने सुगृहिणी पत्रिका का संपादन किया। सन 1909 में प्रयाग से स्त्री दर्पण पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसकी संपादिका थी रामेश्वरी देवी नेहरू और प्रबंधक थी कमला देवी नेहरू। ये महज एक पत्रिका नहीं थी, भारतीय नारी की सामूहिक चेतना का प्रथम मुद्रित स्वर था। इस पत्रिका ने बाल विवाह, विधवाओं की दयनीय स्थिति, स्त्री शिक्षा के अभाव और पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को अपने पैने कलम का निशाना बनाया। आधुनिक हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का नाम यदि केवल कविता तक सीमित रखा जाए तो ये उनके साथ अन्याय होगा। फ्रांसीसी लेखिका सिमोन दी बोवार की प्रसिद्ध पुस्तक द सेकंड सेक्स आने से कई वर्ष पहले ही महादेवी वर्मा ने 1930 के दशक में चांद जैसी पत्रिकाओं के लिए महिलाओं के उत्पीड़न पर शक्तिशाली निबंधों की एक श्रृंखला लिखी थी। ये निबंध केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति नहीं थे, सामाजिक पत्रकारिता के उत्कृष्ट उदाहरण भी थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौर में हिंदी पत्रकारिता ने राष्ट्रीय चेतना की मशाल थामी। इस मशाल को थामने में महिला पत्रकारों की मुट्ठियां भी लगी थीं। सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी कविता झांसी की रानी आज भी रक्त में उबाल लाती है, उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में अपनी लेखनी से स्वाधीनता की अग्नि को भड़काया। इसी श्रृंखला में प्रताप, अभ्युदय और हिंदुस्तान जैसे पत्रों में महिला लेखिकाओं की सक्रिय भागीदारी रही। स्वतंत्रता के बाद हिंदी पत्रकारिता के विस्तार के साथ महिला पत्रकारों की भूमिका भी बदली। प्रभा दत्त जैसी संपादक ने ये साबित किया कि हिंदी के बड़े समाचार पत्र का नेतृत्व एक महिला भी उतनी ही सक्षमता से कर सकती है या शायद बेहतर कर सकती है। तब से लेकर आज तक प्रखर पत्रकारिता के माध्यम से बढ़कर एक महिला पत्रकार स्वयं को मुख्य धारा की पत्रकारिता में स्थापित करती आ रही हैं, जनता के हक की लड़ाई लड़ती आ रही हैं। आज के डिजिटल युग में महिला पत्रकारों की एक नई पीढ़ी सामने आई है।

0: वेब पोर्टल, यूट्यूब पत्रकारिता, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया पर हजारों महिलाएं उन मुद्दों को उठा रही हैं, जिन्हें मुख्य धारा की पत्रकारिता अनदेखा करती है। ग्रामीण महिला पत्रकारिता में खबर लहरिया जैसे प्रयोग ये सिद्ध करते हैं कि नारी का कलम अब केवल शहर के संपादकीय कक्ष तक सीमित नहीं है। लेकिन श्रोताओं, ये संपादकीय केवल उपलब्धियों का गान नहीं है, ये एक ईमानदार आत्म परीक्षण भी है। 200 सालों के उत्सव के बीच संख्याओं का उपलब्ध आंकड़ा असहज करता है। क्या ये उन महिलाओं की विरासत के साथ न्याय है जिन्होंने लगभग 200 साल पहले समाज की परवाह किए बिना कलम उठाया था? आकाशवाणी, जिसकी आवाज ने दशकों से इस देश के घर घर को जोड़ा है, गांव की चौपाल से लेकर शहर के दफ्तर तक, रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं, एक रिश्ता रहा है। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस अनूठी यात्रा पर आज अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली।
1: मैं पिछले 40 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूं, ऑल इंडिया रेडियो में भी काफी आता रहा हूं। जो पिछले 90 वर्षों का ब्रॉडकास्टिंग का इतिहास है, खास करके जो हिंदी, उर्दू और इलाकाई जबानें हैं उनमें ब्रॉडकास्टिंग का, उसका बड़ा एक गौरवशाली इतिहास रहा है। और आज़ादी के वक्त से लेकर और अब तक, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत देश की आज़ादी से पहले हो गई थी, देश के नवनिर्माण से लेकर के आज तक 80 बरस हो गए हैं देश की आज़ादी को भी, तो उसमें ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही कारगर योगदान है। न सिर्फ ये कि उसने लोगों को खबरें पहुंचाने का काम किया है, बल्कि उन्हें एजुकेट करने का और उनका एंटरटेनमेंट करने का भी काम किया है। ये एक बहुत बड़ा रोल है। और चूंकि एक ज़माना था कि जब सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो ही हुआ करता था, 90 तक मैं समझता हूँ कि ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए रहा है और उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।
0: वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली, उनके अनुभव, उनकी स्मृतियां और उनका विश्लेषण निश्चित ही हमें रेडियो की उस आत्मा तक ले जाएगा जो आज भी धड़क रही है। सच में, जिस माध्यम ने आजादी की आवाज को सहेजा, देश की भावनाओं को बोली दी, वो आकाशवाणी कोई यंत्र नहीं, एक जीवंत परंपरा है।

0: साहित्य जब समाज से कट जाता है तो केवल शब्दों का खेल बन जाता है, लेकिन जब साहित्य की जड़ें जमीन से जुड़ी हों तो वो एक नया अर्थ पा लेता है। आज की हमारी अगली प्रस्तुति में हम एक ऐसी ही जरूरी बातचीत लेकर आए हैं वरिष्ठ साहित्यकार पंकज बिष्ट के साथ। उनसे बातचीत कर रहे हैं प्राध्यापक और साहित्यकर्मी विशाल पांडे। तो सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, साहित्य, समाज और सरोकार।
1: पंकज बिष्ट अपनी कहानियों और संपादन के लिए हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। उनकी कहानियां 15x25, बच्चे गवाह नहीं हो सकते, उपन्यास लेकिन दरवाजा, उस चिड़िया का नाम, पंख वाली नाव, गोलू और भोलू से हिंदी साहित्य हम सभी समृद्ध हुए। मैं जानना चाहूंगा पंकज जी कि लेखन की ओर आपका पहला झुकाव कब और कैसे उत्पन्न हुआ?
2: देखिए, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है कि मैं ये नहीं मान के चलता था कि मैं कहानीकार बनूंगा या उपन्यासकार बनूंगा, लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं लिखने पढ़ने का काम चुनूं और करूं। बहुत संभव है कि अगर मैं पत्रकारिता वगैरह में नहीं आता तो हो सकता था मैं टीचिंग के काम में चला जाता, अध्यापन में जाता, तो जो कि उतना ही बहुत बड़ा होता। चूंकि मैं लिखने के प्रति मेरा जो अनुराग था वो ज्यादा था, तो मैंने जब लिखना शुरू किया और वो इधर उधर उसके

0: ये कोशिश करी तो मुझको ये रास्ते ज्यादा बेहतर दिखाई देगा। तो उसमें ये हुआ कि जैसे मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ एक जर्नलिज्म का स्कूल खुला तो उसमें एडमिशन लिया, उसमें मैंने पढ़ा। वो यहाँ के जर्नलिज्म के भारत में स्कूलों में शुरुआती था, वो बाद में खत्म हो गया। उससे मुझे मेरा एक्सपोजर हुआ और मैं डेली वगैरह में जाने लगा। और जैसे मैं हिंदी में लिखना, नोवेल टाइम्स विशेषकर, उस दौरान के एडिटर उनके, इनका नाम अक्षय कुमार जैन था, वो भी जुड़े हुए थे, तो वहाँ मुझको एंट्री मिल गई। यानी कि मेरे लेख उन्होंने कहा, वो एडिटर वगैरह देख लेते थे। वह फिर वहाँ दो एडिटर रहते थे, उनमें एक महिला थी, रविवारी संस्करण देखती थी, तो वो बेचारी भली भली औरत थी। तो वो मुझसे फिर धीरे धीरे वो जब काम करवाने लगी तो मैं अभी अच्छा काम कर, रिलेटिवली उनको ठीक लगने लगा। तो उससे मैं, मुझे लिखने की और चीज़ों को समझने की और विषय कैसे चुनना चाहिए, इस बात की मेरी समझ थोड़ी बनी। तो ये मुझको फायदा हुआ कि बाद में अपने कैरियर को उसी तरफ बढ़ाने में मुझे उसका मदद मिली।
1: पंकज जी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आपकी पहली कहानी 1967 में साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपी। क्या आपको याद है कि पहली बार अपनी किसी रचना को प्रकाशित देखकर आपने क्या अनुभव किया था?
0: वो जो एक कहानी छपी उसका अनुभव जो है बड़ा बहुत मजेदार है। हुआ ये था कि मैंने उन दिनों एक लेखिका होती थी शची रानी गुल्टू, उन्होंने मेरे ख्याल से आर्ट वर्ल्ड पर बहुत लिखा है, उनका बेटा वो साप्ताहिक हिंदुस्तान में काम करता था। उससे कहीं मेरी मुलाकात हो गई, बातचीत, यंग था वो मेरी जैसा, तो मैं थोड़ा छोटा था। तो उसने बातचीत में कहा, तुम क्या करते हो? मैंने कहा लिखने के। उसने कहा, यार तुम लिख, हमारे यहाँ दिखाओ तुम क्या कहानी लिख, तो मैं देखूँ तुम्हारी कहानी। तो मैं डर के मारे में दिखा लिया, तो बड़ा मैगजीन है, कौन छापेगा, क्या करेगा। तो मैंने वो लिखा हुआ था उसको देखने को दे दी। उसने जी, उसने कहा तुम्हारी कहानी ठीक ठाक है, तुम ऐसा करो हमारे एडिटर को दो, मैं देता हूँ। तो उन दोनों एडिटर कोई सज्जन थे, अब वो याद नहीं आ रहा, पहले भटनागर जी हुआ करते थे, उनके बात पूछते। तो वो उन्होंने वो देखी और उन्होंने मुझे पत्र लिखा। जिंदगी में पहली बार आप हैं और कोई संपादक आपको पत्र लिख रहा है कि आप आगे मिलिए और मैं आपसे चर्चा करता हूँ। मैं बड़ा उत्साहित और रोमांचित कि भाई ये क्या कहने वाले। मैं वहां गया, उन्होंने कहानी की बड़ी तारीफ करी और उसके बाद मुझसे कहा कि देखिए आपकी कहानी इतनी अच्छी है कि हम अपने पत्रिका में हमारे पाठकों के जिससे ऊपर की है, तो इसलिए हम नहीं छापेंगे। तो मैं खैर कहानी लेकर वापस आ गया। सौभाग्य से वो एडिटर जो है बदल गए और वहां मनोहर श्याम जोशी आए। हाँ, उसने मुझसे कहा अब दे दो, फिर से देते हैं। तो मैंने उसको दिया, वही फॉरवर्ड कर देता था। तो फिर मुझे वहां से लेटर आया, मिलने आओ। यार फिर ये क्या तमाशा, पहली बार तो मैंने सोचा कि उन्होंने मुझे बुलाया और कहानी छापी नहीं और अब ये फिर कुछ ऐसे ही होगा। फिर मैं मरे मन से वहां पहुंचा, पहली बार मैं मनोहर श्याम जोशी से मिला। तो जोशी बोले, तुम यार ये क्या कहानी लिखते हो, थोड़ा सा और जो जिंदगी चीजें हैं उसको देखो, ये क्या रोमांटिक कहानी वानी लिख रहे हो तुम। अब मैं समझ गया कि कहानी छापेंगे नहीं। जाते हुए बोले, मैं ये तुम्हारी कहानी तो छाप रहा हूं, लेकिन तुम जो है ना और कुछ चीजें देखो। तो एक तरह से मेरे लिए उत्साह प्रोत्साहन भी हुआ और कहानी छप भी गई। हाँ, मतलब एक चीज ये थी, उसमें एक फोटो भी छपता था, तो फोटो छपने से जो अतिरिक्त आनंद आया तो वो अतिरिक्त था।
1: मैं जानना चाहता हूँ कि आपके लिए साहित्य केवल अभिव्यक्ति है या सामाजिक हस्तक्षेप का माध्यम भी है।
0: असल में मेरे लिए वो दोनों एक से जुड़े हुए हैं, समाज और रचनात्मकता। चूंकि मैं व्यक्ति हूँ, एक मनुष्य हूँ, एक खास समाज में रहता हूँ, उसकी संस्कृति को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं जिस तरह से उसको देखता हूँ, उसकी अच्छाइयों को, बुराइयों को, अपनी निकटता से, वो मेरी रचनाओं में आएंगी आएंगी, वो आती है। और अगर कोई चीज ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, जो लगता है कि समाज को पिछड़े करने में या किसी एक सेक्शन के साथ अन्याय करने में अगर वो दिखाई दे रही है, तो ऐसा है कि एक लेखक के रूप में आप उद्वेलित होते हैं, क्योंकि आप अपने लेखन से आपको चीजों को जो देखने का आपकी जो दृष्टि होती है वो ये बनती है कि वो समझे कि आखिर ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, एक खास तरह का व्यवहार कुछ से साथ हो रहा है, कुछ के साथ नहीं हो रहा, तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है, ये आपको देख। तो लेखक के रूप में ये सब कुछ आप देखते हैं, तभी अगर आप उपन्यास लिखना चाहते हैं और समाज से जुड़ा हुआ लिखना चाहते हैं या आप वास्तविक समस्या को किसी को लेकर लिखना चाहते हैं तो आपको समाज को समझने का दृष्टि तो होनी चाहिए, बिना उसके तो आप फिर नहीं कभी भी ढंग से उससे नहीं लिख पाएंगे। तो अब मैं अपनी रचनाओं में जो कुछ भी वो आ रहा है तो एक तरह से वो रचनात्मकता का हिस्सा है, वो अतिरिक्त तो कुछ नहीं।
1: पंकज जी, आपकी कहानियों को पढ़ते हुए लगता है कि उसमें आम आदमी की पीड़ा,

0: और व्यवस्था के प्रति एक तीखा असंतोष है, ये दृष्टि आपके भीतर कैसे विकसित होती है?
1: देखिए, कारण वही है, जब मैंने चीजों को देखने का और जो स्थितियां हैं उनको समझने का कि आखिर क्यों जो इस असमानता है, जो अन्याय है, जो कुछ लोगों के साथ जो भेदभाव है वो क्यों और है, तो वो क्यों नहीं बदल रहा है अब तक, क्यों उसमें कोई प्रयत्न नहीं दिखाई दे रहा, वो सारी चीजें मुझे प्रेरित करते रहे, देखते रहे। तो मैंने कोशिश करी कि अब एक तरह से, चूंकि मैं जिन स्थितियों में शुरुआत में कुछ दिनों रहने के हुआ पड़ा हमको, तो जो चीजों का ना होना, आपके पास पैसे की कमी होना, आपको एक बेहतर स्थिति में नहीं रहने देना, क्या ना जो अभाव जिसको कहते हैं, अभाव की जो स्थिति है आपने सहा है, तो आप उससे औरों के साथ आइडेंटिफाई करने में आप मदद मिली। तो मतलब एक लेखक के रूप, और एक लेखक के रूप में मेरा ख्याल से एक रचनाकार के रूप में या कलाकार के रूप में ये भी होता है कि जो उसकी संवेदनशीलता है वो उसकी अपनी जो अनुभव है उनके परे भी जाते, वो औरों से भी सीखती है, औरों को भी समझने की कोशिश करती है। तो जो भी मैंने जिस तरह से मैं जिंदगी को देखा है, जो अभिव्यक्त करने की कोशिश करी है, उसमें यही तरीका वो यही है। जो
0: पंकज जी, आपकी रचनाओं में संवेदना और प्रतिरोध दोनों साथ साथ चलते हैं, क्या यह आपके लेखन की सचेत रणनीति है?
1: ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है कि आप चीजों को देखते हैं, जब आप किसी मान लीजिए कोई खास स्थिति को देख रहे हो, कोई अपंग है मान लीजिए, वो नहीं चल सक रहा है, उसको चलने में मदद नहीं मिल रही है और लोग उसकी मदद नहीं कर, ये जब आप देख रहे हैं तो इससे आप जो अर्थ निकाल रहे हैं और जो जिस तरह से उसको आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं या जिस तरह से आप उसको बदलना चाहते हैं, ये सारी प्रतिक्रियाओं को आप एक लेखक के रूप में लिखना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपकी दृष्टि संवेदनशील है, आप अगर मानवीय हैं, तो आपको जो भी तकलीफ दूसरे आदमी की होगी आप उससे जरूर अपने को आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसा नहीं होगा। वैसे मेरे ख्याल से लेखक होना एक अतिरिक्त जिम्मेदारी हो सकती है, मतलब एक आदमी होने के कारण, ह्यूमन बीइंग होने के कारण हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम जो भी हमसे कमजोर हो, जिसको जरूरत हो, उसकी मदद करें।
0: पंकज जी, आज के समय में कहानी और उपन्यास के स्वरूप में आप क्या परिवर्तन महसूस करते हैं इस बदलते हुए समय में?
1: देखिए, हो क्या रहा है कि कहानी का जो महत्व है, वो कहानी चूंकि बहुत छोटे दायरे में चीजों को देखने की कोशिश करती है, तो मेरे ख्याल से ये कहानी की जगह टेलीविजन, रेडियो, जो और जो एंटरटेनमेंट के माध्यम है, उन्होंने ले ली है। अब जो माध्यम बचता है वो बड़े नरेटिव में बचता है, वो उपन्यास है। अब उपन्यास इसलिए शायद मेरे ख्याल से कहानियों में अब उतना लेखन नहीं हो नजर आता है मुझको, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन एक और बात भी है, जो श्रव्य या दृश्य माध्यम है उनकी अपनी सीमा है, उनमें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, और वो जो कह रहा है वो आप पे यथावत, क्योंकि वो दृश्य आपके सामने एक तरह से साकार है, तो वो पूरी तरह आप पे छाए रहते, जो भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी वो बना रहा है उसको, या एक्टर मेरा मतलब जो एक्ट कर। लेकिन जो रचनात्मकता जो लिखना है उसमें यह है कि लेखक जो लेखन के साथ यह है कि आपको जो लिखने में कहा जा रहा है उसको अपने दिमाग में, अपने अपनी चेतना में, अपनी संवेदना में एकाकार करना है, उससे तालमेल बैठाना है और उसको उस तरह से दुनिया को समझने की कोशिश करनी है। तो वो जो है, जो इन्वॉल्वमेंट का लेवल है, सेंसिटिविटी का लेवल है, वो डिफरेंट है, तो वो ज्यादा सक्रिय है, वो एक तरफा नहीं है जी, इसका वही महत्व यह है।
0: बहुत सारी खट्टी मीठी यादों के साथ आकाशवाणी का आपका सफर रहा है पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आकाशवाणी का धन्यवाद।
2: पंकज बिष्ट और विशाल पांडे का ये संवाद हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, क्या वो उस जिंदगी से जुड़ा है जो हमारे आसपास सांस ले रही है। हर दौर में साहित्य को एक नई पीढ़ी, एक नई ऊर्जा की जरूरत होती है, और ये काम आकाशवाणी और साहित्य अकादमी जैसे संस्थान लगातार करते चले आ रहे हैं। हमारी अगली प्रस्तुति सृजन की अगली पंक्ति में सुनते हैं विकास दवे, निदेशक मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से चंद्रशेखर शर्मा की बातचीत।
3: हमारे साथ हैं लब्ध प्रतिष्ठ बाल साहित्यकार, मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर

0: विकास दुबे सर। सर
1: आज बहुत अच्छा लग रहा है और आकाशवाणी के इस पटल पर विशेष करके मुझे इस बात को लेकर के बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही है कि चूंकि आकाशवाणी और साहित्य समाज ये एक ही परिवार के दो हिस्से हैं।
0: सर रेडियो को हम बोलते हैं एक दृष्टिहीन कला, ब्लाइंड आर्ट, और अज्ञेय जी ने कहा है कि रेडियो ने साहित्य में श्रव्य बिंबों की नई दुनिया रची है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या विचार श्रृंखला इस बारे में कहती है।
1: अज्ञेय और मुक्तिबोध दोनों को हमको स्मरण करना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: और लगभग दोनों ने समान धर्मी विचार व्यक्त किए थे, विशेष करके आकाशवाणी के इस माध्यम को लेकर के। उससे पहले तक रंग कर्म और नाटक विधा ये चूंकि दृश्य विधा के अंतर्गत आया करते थे। जब आकाशवाणी का प्रणयन हुआ उसके पश्चात रेडियो रूपक जैसे शब्द समाज ने सुने
0: जी,
1: और रेडियो रूपक ने दरअसल साहित्य क्षेत्र में इन मान्यताओं को एक प्रकार से आश्वस्ति दी कि यदि आप आंखों के सामने दृश्य उपस्थित न भी करें तो भी केवल स्वरों के उतार चढ़ाव से, स्वरों का जो पूरा भाव भंगिमाएं अभिव्यक्त करने का जो सौष्ठव है उसके माध्यम से भी एक पूरे के पूरे नाट्य विधा को आप स्थापित कर सकते हैं।
0: शब्द चित्र
1: अद्भुत, वो शब्द चित्र के ही माध्यम से एक प्रकार से। और सबसे बड़ी बात यह कि आकाशवाणी ने जिस ढंग से भाषा को अपने साथ सहेजने का प्रयत्न किया, भारतीय समाज में जो आक्रांताओं का जो युग था उस औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर आने के लिए और विशेष करके हम सब पर पड़ा हुआ जो भाषाई प्रभाव था किसी शब्द की, वाक्य विन्यास की, व्याकरणगत वाक्य विन्यास की, उसमें निश्चित तौर पर एक वैक्सीन का काम किया है आकाशवाणी ने।
0: साहित्यिक शुचिता बनाए रखते हुए मर्यादित और सुगम्य भाषा के माध्यम से साहित्य को रेडियो ने जन जन तक पहुंचाया है। इस संदर्भ में सर विष्णु प्रभाकर जी को हम याद करते हुए एक बात कहना चाहेंगे कि रेडियो ने साहित्य में संवादात्मक रूप को निखारा है। हम इस संदर्भ में सर आपके विचार जानना।
1: स्वाभाविक रूप से साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का काम आकाशवाणी ने सर्वाधिक किया ही है
0: जी।
1: और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि हमारे यहाँ पर साहित्य क्षेत्र में दो शब्द प्रचलन में आते हैं, लोक और शास्त्र
0: जी,
1: तो शास्त्रीय अवधारणाओं को लोक तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो आकाशवाणी ने किया है। और विशेष करके ये जो साहित्य की जो भिन्न भिन्न विधाएं हैं जिनसे सामान्य जन को परिचित कराने का काम किया
0: जी।
1: इसके साथ साथ मुझे लगता है कि साहित्यकारों को भी परिचय दिलाने का काम आकाशवाणी ने बड़ी मात्रा में किया है। तो ये जो साहित्य जगत को लोक से जोड़ना, लोक को साहित्य से जोड़ना और उन सबके बीच में सेतु का काम करना, और ये सब करते हुए व्याकरण भी सिखा रही है आकाशवाणी, भाव पक्ष भी समझा रही है। आप देखिए, चाहे हम लोगों को कई बार लगता होगा कि वे जब सी रामचंद्र की बात करते हैं, हमारे जो उद्घोषक होते हैं, वो जब कहते हैं कि भरत व्यास ने कैसे कैसे शब्दों का उपयोग किया है, इंदिवर ने इस गीत में ऐसा ऐसा हुआ, या किशोरदा ने गाते समय इस शब्द को इस तरह से गाने की कोशिश की, लेकिन फिर गीतकार वहां उपस्थित थे, उन्होंने कहा नहीं, इस शब्द का उच्चारण भोजपुरी में ऐसा होता है, अवधी में ऐसा होता है, इसलिए आपको इस ढंग से करना है। तो ये जो सिखाने का क्रम था, ये मुझे लगता है कि आकाशवाणी एक प्रशिक्षक की भूमिका में रही है समाज में साहित्य और व्याकरण और भाषा की दृष्टि से
0: जी। अमृतलाल नागर जी का सर एक कोटेशन है कि रेडियो जनमानस तक साहित्य की पहुंच का सबसे सशक्त माध्यम है। क्या आप मानते हैं सर कि रेडियो ने साहित्य को लोकधारा से जोड़ा?
1: तकनीकी रूप से इस बात को हम इस दृष्टि से भी स्वीकार कर सकते हैं कि रेडियो अभिजात्य वर्ग की पहचान तो था ही
0: जी।
1: आज यदि हम अनुभव करते हैं कि आज हमारे ड्राइंग रूम में बड़े बड़े थिएटर्स बना करके लोग बैठे हैं और एक दीवार के आकार के टेलीविजन सेट लगे हुए हैं, कमरे के चारों कोने में स्पीकर लगे हुए हैं, उस स्थिति से निकलने वाले लोगों को शायद ये कल्पना भी नहीं होगी कि आकाशवाणी या रेडियो को सुनने के लिए एक जमाने में लाइसेंस लेना पड़ता था। मैंने आकाशवाणी के 50 वर्ष जब हुए थे तब एक लेख लिखा था और उस लेख में मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि आकाशवाणी की भले ही वह यात्रा इतिहास रही हो, लेकिन आकाशवाणी का आज हमको क्या दिखाता? आज हमको दिखाता है कि खेत में हल जोतता हुआ किसान जो है, वह दोनों बेलों की घंटियों की आवाज के बीच में वो जो दोनों बेलों के कंधे पर जुआ रखा है, उस जुए के सेंटर में रस्सी से बांध करके एक रेडियो लटका करके रखता है, और खेत में अनाज बोते हुए भी, बीज बोते हुए भी वो आकाशवाणी के माध्यम से सुरीले गीत सुन रहा है, देश भर की खबरों से अपने आप को जोड़ रहा है। और इतना ही नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कृषि के क्षेत्र में जिस तरह से जानकारियों का प्रदाय का काम आकाशवाणी ने किया है वो तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंत्योदय की पराकाष्ठा मानता हूं मैं इसको। अब कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा इतने सारे जो शोध कार्य संपन्न होते हैं उन्हें एक अनपढ़ किसान तक पहुंचाने का काम भी अगर कोई कर पाता है तो वो निश्चित तौर पर आकाशवाणी कर रही है।
0: हम आपसे सर जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी के मंच ने किस प्रकार से साहित्यकारों की पहचान और लोकप्रियता में श्रीवृद्धि करने में अपना योगदान दिया है।
1: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हों, महादेवी वर्मा जी हों या सुभद्रा कुमारी चौहान हों, हम देखते हैं कि इन सब रचनाकारों ने जिस ढंग से आकाशवाणी को अत्यंत श्रद्धा के साथ अपनाया
0: जी,
1: और उनकी

0: उन कालजयी रचनाओं को अगर जन सामान्य ने कंठस्थ किया, मुखाग्र किया, तो उसमें निश्चित तौर पर आकाशवाणी का एक बड़ा हाथ था। अमिताभ बच्चन जी चूंकि सदी के महानायक कहलाते हैं और उन्होंने जब पहली बार मधुशाला को अपने स्वर देकर के और एक कंपनी के माध्यम से एक एल्बम तैयार किया था, तब एक पत्रकार ने उनसे पूछा था, तो उन्होंने यही कहा था कि भाई इस काम को आकाशवाणी बहुत पहले कर चुकी है और विशेष करके इसमें मैं आंचलिक साहित्यकारों को पहचान दिलाने के काम में आकाशवाणी का जो अवदान है वो तो अद्भुत है।
1: इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी ने साहित्य की नई विधाओं को भी जन्म दिया है
0: जी।
1: जैसे रेडियो रूपक हुआ, रेडियो नाटक हुआ और आकाशवाणी का एक गर्विला सफर रहा है जिसमें भारत भूषण अग्रवाल, अमृतलाल नागर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और पीएल देशपांडे जैसे ये साहित्यकारों ने काम किया है यहाँ पर और इन नई विधाओं के उन्नयन में अपना योगदान दिया है।
0: चाहे वो कृषि जगत में नंदाजी भेरा जी के माध्यम से कृष्णकांत जी दुबे, नरहरी पटेल जी, स्वतंत्र कुमार जी ओझा को मैं इस समय स्मरण करना चाहता हूँ, ये एक पूरी की पूरी जो पीढ़ियां थी उन पीढ़ियों ने अपने आप को एक प्रकार से होम किया। उन्होंने अपने जीवन का कण कण और क्षण क्षण लगा करके इस आकाशवाणी की विधा को इतना उदात्त स्तर पर पहुंचाया कि लगता है कि सचमुच इन लोगों ने एक तप की तरह इस काम को किया था। और जिन नई विधाओं के संदर्भ में आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आकाशवाणी के माध्यम से नाटक से इतर भी अगर हम चलें तो जिसे कथा कथन की शैली को विकसित करना
1: जी।
0: कहानी लेखन भले ही साहित्य का विषय होगा लेकिन कथा कथन साहित्य का विषय नहीं है, वो एक प्रकार से कला का विषय है। लेकिन साहित्य और कला को सेतु बना करके उन्होंने जिस ढंग से कहानियां पढ़ना प्रारंभ की, मैं इस दिशा में कई बार इस बात का उल्लेख भी करता हूं कि सुबह का जो चिंतन आता है, चिंतन का प्रत्येक एपिसोड जो होता है वो अपने आप में ललित निबंध होता है एक प्रकार का, और इस ललित निबंध को सुनना यानी केवल वो कानों को सुख देता है, मानस को सुख देता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल आत्मा भी उसमें तृप्त हो जाती है
1: जी।
0: मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि इसको लेकर के आकाशवाणी के इस अवदान को लेकर के जितना कहा जाए उतना कम होगा। आकाशवाणी के जो संग्रहालय है, आर्काइव्स है, उनमें इतनी अभूतपूर्व सामग्रियां हैं। अगर मैं चाहूं कि किसी युग में लता जी मुंबई के आकाशवाणी स्टूडियो में बैठ करके केवल अभ्यास कर रही थी और मशीन पर बैठे हुए उस समय के तकनीशियन ने रिकॉर्ड कर लिया उनको, केवल अभ्यास की वाणियों को या आपस की बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और वो सब के सब आज चाहे वो शुभा मुद्गल हों, चाहे हरिप्रसाद चौरसिया जी हों, चाहे छन्नू मिश्रा जी हों, उन सब की सामान्य बातचीत जो कि ऑफिशियली आकाशवाणी पर कभी प्रसारित नहीं हुई लेकिन वो सब चीजें आज भी हमारे पास उस मैग्नेटिक टेप पर रिकॉर्डेड हैं। और मुझे कहते हुए गर्व है कि वर्तमान में प्रसार भारती ने अपने ऐसे सारे संग्रहालयों को एक प्रकार से, चूंकि जो क्लाउड है वो क्लाउड को मैं आधुनिक युग का कालपात्र ही मानता हूं, वो अब अक्षय भंडार हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए जो ओपन फॉर ऑल कर दिया है, मैं तो कई बार उस आर्काइव पर जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं घंटों उससे बाहर ना आऊं, तो मुझे लगता है कि उसका लाभ हम सब लोगों को लेना चाहिए। और विशेष करके साहित्य क्षेत्र के साहित्यकारों से मैं आग्रह करूंगा, केवल नवोदित पीढ़ी से नहीं पुरानी पीढ़ी के साहित्यकारों से भी, कि वे कभी माखन दादा को, वीरेंद्र मिश्र जी को, महादेवी वर्मा जी को, इन सबको उनके मूल स्वर में सुने तो हमारे ध्यान में आता है कि उनकी सोच कितनी उदात्त थी, कितने उदार हृदय से वो साहित्य की समीक्षाएं किया करते थे। आज जिस ढंग से एक दूसरे को प्रशंसित करने का काम हम लोग कर रहे हैं, उस युग में आकाशवाणी हमारे लिए एक अच्छा प्रशिक्षक इस मामले में भी हो सकता है।
2: सृजन की अगली पंक्ति मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक विकास दवे से चंद्रशेखर शर्मा की बातचीत आपने अभी सुनी, सौजन्य आकाशवाणी भोपाल। और अब स्मृति नमन, वो जो चले गए लेकिन अपने शब्दों से, अपनी कृतियों से हमेशा के लिए जी गए। आज हम याद कर रहे हैं ऐसी ही तीन महान विभूतियों को, जन कवि नागार्जुन, जिनकी कविता धरती की तरह थी, ठोस, उर्वर और सच्ची, जो हाशिए के इंसान की आवाज बने। काजी नजरुल इस्लाम, जो बांग्लादेश के राष्ट्र कवि भी हैं, जिनकी विद्रोही कविता ने एक पूरी पीढ़ी को जगाया। मुद्रा राक्षस, हिंदी के वो फक्कड़ रचनाकार जिनके कलम ने कभी सत्ता से समझौता नहीं किया। नाटक, उपन्यास, आलोचना, हर विधा में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। नागार्जुन, काजी नजरुल इस्लाम और मुद्रा राक्षस की ये त्रयी हमें याद दिलाती है कि साहित्यकार मरता नहीं, वो अपनी रचनाओं में बार बार जन्म

में लेता है। इस त्रयी को साहित्य भारती का विनम्र स्मृति नमन। इसी के साथ साहित्य भारती का आज का ये अंक यही संपन्न होता है। अगली बार फिर मिलेंगे नए शब्दों के साथ, नई संवेदनाओं के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, सोचते रहिए। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: कोलैबोरेट क्लोजली टू मेंटेन सिक्योरिटी अलोंग एंड यूनिकली ओपन बॉर्डर।
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है,
4: स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है।
5: ऋषिकेश गांगुर्डे इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड इज स्टेडिली कार्विंग अ निश फॉर हिमसेल्फ एज अ घरानेदार वोकलिस्ट हु ट्राइज टू गिव एक्सप्रेशन टू द ब्यूटी, ग्रैंडर एंड स्वीटनेस ऑफ म्यूजिक सो एज टू टच द ह्यूमन हार्ट एंड दिस इज द हॉलमार्क ऑफ हिज सिंगिंग। Beyond his vocal prowess, he is an accomplished tabla player and has even accompanied his guru Pandit Ullas Kashalkar in various concerts. Currently, he serves as an assistant professor in the School of Performing Arts at Bharati Vidyapit, Pune.
4: आज के कार्यक्रम में ऋषिकेश गांगुर्डे जी को तबले पर संगत कर रहे हैं आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं मकरंद खरवंडीकर। अपने गायन का आरंभ वे कर रहे हैं राग बिहागड़ा से। विलंबित रचना तीन ताल में निबद्ध है। बोल है प्यारी पग होले होले। इसके पश्चात वे तीन ताल में ही दो द्रुति बंदिशें प्रस्तुत करेंगे, निरख छब देखत और रैन दिन कैसे कटेरी।
5: In tonight's program, he is accompanied on the tabla by Shri Ashay Kulkarni and on the harmonium by Shri Makaranda Kharwandikar. Rishikesh begins his vocal recital with Raag Bihagda. The Vilambit composition is set to Teen Taal. This will be followed by Druta compositions in Teen Taal.

0: ये था राग बिहागड़ा।
1: दैट वॉज राग बिहागड़ा।
0: ऋषिकेश गांगुड़े अपने गायन का समापन राग बागेश्री से कर रहे हैं। विलंबित ख्याल तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है, जिसके बोल है लाल मनावे। गायन का समापन वे तीन ताल की द्रुत बंदिश पहरवा घर आओ से करेंगे।
1: नेक्स्ट ऋषिकेश गांगुड़े विल प्रेजेंट राग बागेश्री। द विलंबित ख्याल इज सेट टू तिलवाड़ा ताल। ही कंक्लूड्स द रागा विथ द्रुत कंपोजिशन इन तीन ताल।

0: राग बागेश्री अभी आपने सुना।
1: दैट वॉज राग बागेश्री।
0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप ऋषिकेश गांगुलडे जी का शास्त्रीय गायन सुन रहे थे। उन्हें तबले पर श्री आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर श्री मकरंद खरवंडेकर जी ने संगत की। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी पुणे केंद्र के स्टूडियो में किया गया और यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: You are listening to a classical vocal recital by Rishikesh Gangurde in the National Program of Music. He was accompanied on the tabla by Ashay Kulkarni and on the harmonium by Makaranda Kharvandikar. This program was recorded at the studios of Akashvani Pune and this program was broadcast from Akashvani Delhi.

हम आकाशवाणी के गोरखपुर के इंद्र से बोल रहे हैं। मीटर वेव 330.0 विश्वनी 3 मीटर यानी 900 किलोहर्ट्ज़ एवं FM बैंड 110.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: Collaborate closely to maintain security, our long and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नई युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन